0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।
1: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं। प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे आशिता। नमस्कार आपको।
1: नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सुप्रभात आप सभी लोगों को। सबसे पहले हम स्थानीय स्तर की बात करते हैं। सिंथेटिक ड्रग्स की चपेट में आने वाले युवाओं और किशोरों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे समाज में गंभीर चिंता पैदा हो गई है। नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर विशेषज्ञों ने इस बढ़ते खतरे के प्रति चेतावनी दी है। सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े कानून को और सख्त बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत जुर्माना और जेल की सजा दोनों बढ़ाई जाएंगी। ट्रेड यूनियन जगत ने इस प्रस्ताव पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे श्रमिकों की अभिव्यक्ति और विरोध प्रदर्शन की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। मॉरिशस के अटॉर्नी जनरल गाविन ग्लोवर ने बजट बहस के दौरान वर्ष 2026-2027 के लिए कानूनी सुधारों और संविधान के आधुनिकीकरण की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने शागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने की प्रक्रिया में हुई प्रगति का भी उल्लेख किया और कहा कि अब ब्रिटिश संसद की मंजूरी का इंतजार है। शागोस द्वीप समूह की संप्रभुता का मुद्दा एक बार फिर ब्रिटेन में राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। ग्रेट ब्रिटिश पीएससी ने पूर्व ब्रिटिश मंत्री एल कॉन्स से मॉरिशस को शागो सौंपने से पहले जनमत संग्रह और समझौते की वित्तीय शर्तों पर उनका रुख स्पष्ट करने को कहा। उभरती और दोबारा फैलने वाली बीमारियों के खतरे को देखते हुए हिंद महासागर क्षेत्र के देशों ने स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर दिया है। मॉरिशस में आज क्षेत्रीय कार्यशाला में विशेषज्ञों ने सीमाओं पर निगरानी बढ़ाने और साझा रणनीति अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए नर्सों के प्रशिक्षण के लिए एक कैंपस स्थापित करने की मांग उठी है। वहीं बजट में 2,220 स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती, विदेशी विशेषज्ञों की नियुक्ति और चिकित्सा कर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों की घोषणा भी की गई है। और वित्तीय अपराधों की रोकथाम के क्षेत्र में मॉरिशस ने अपनी विशेषज्ञता अफ्रीकी देशों के साथ साझा की है। अध्ययन दौरे पर आए प्रतिनिधियों ने संपत्ति घोषणा प्रणाली और वित्तीय निगरानी तंत्र का अवलोकन किया है। और इस्लामी नववर्ष 1448 के 10वें दिन मुसलमान यौम

0: यौम अशूरा मना रहे हैं, जो इस्लाम के सबसे पवित्र दिनों में से एक माना जाता है। इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक और ऐतिहासिक घटनाओं को याद करते हुए श्रद्धालु इबादत और दुआओं में शामिल हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेनेजुएला में राजधानी काराकास के निकट आए दो शक्तिशाली भूकंपों में कम से कम 188 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। वहीं कई देशों ने सहायता का आश्वासन दिया है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला, बढ़ते हैं अब हम मौसम के हाल की ओर। मौसम का हाल आम हालत, दक्षिण पूर्व से आने वाले बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। फिलहाल हमारे इलाके पर अस्थिर बादलों का असर है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान किया जाता है पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लेटू वाले इलाकों पर सुबह के समय बादल घिर आएंगे और वर्षा होती रहेगी। कभी कभार बारिश तेज होगी और बादल भी गरजेंगे। चंद इलाकों में कोहरे छाएंगे और दृश्यता कम होगी। दिन के दौरान बारिश कम होगी पर ऊंचाइयों पर रह रहकर वर्षा होती रहेगी। रात के दौरान बादल घिरे रहेंगे और दक्षिण पूर्व तथा सेंट्रल प्लेटू वाले इलाकों पर बारिश होगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और झोंके खुली जगहों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं, विशेषकर बारिश के समय। प्रवाह रेखा के पार समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण की ओर से 3 मीटर की लहरें उठेंगी। खुले समुद्र में विशेषकर दक्षिणी और पूर्वी लगूनों में न निकलने की सख्त सलाह दी जाती है। दिन के दौरान बाद में समुद्र में सुधार आएगा। तापमान, अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान ऊंचाइयों पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच। चंद जरूरी सलाह, जब बादल गरजे जनता को सलाह दी जाती है कि आप घर के अंदर रहें, खुले मैदानों में तथा समुद्र में न निकलें और पेड़ों के नीचे भी पना न लें। आज सूर्योदय सुबह 6:45 पर और सूर्यास्त शाम 5:40 पर। इसके साथ ये पहला फ्लैश न्यूज समाप्त हो चला। आपकी और हमारी मुलाकात पुनः होगी ठीक 6:30।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: प्रणाम और सुप्रभात श्रोतागण, घड़ी मिलाते चलिए इस समय सुबह की 6:05 हो चुके हैं और इस शुक्रवार को साथ निभा रही है पूजा। ये एमबीसी रेडियो मॉरिशस का सीधा प्रसारण है। श्रोताओं, कहा जाता है जैसे सूर्योदय के होते ही अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही मन की प्रसन्नता से सारी बाधाएं शांत हो जाती हैं। आइए इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम का आरंभ करते हैं सुधा वृष्टि से। इसे श्रवण करते हैं हिंदू महासभा की ओर से।
1: हिंदू महासभा द्वारा आइए सुनिए सुधा वृष्टि।
2: हरि ओम तत्सत्।

त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं आरुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्री श्री सीतारामचन्द्राय नमः श्रीरामदूताय नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। आज फ्राइडे 26 जून 2026 के सुधा वृष्टि कार्यक्रम में हिंदू महासभा की ओर से मैं बाबा जी गिरीश शर्मा आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल गुरुवार 25 जून को पवित्र गायत्री जयंती का पर्व पूरे श्रद्धा भक्ति एवं उत्साह के साथ मनाया गया।

इस शुभ अवसर पर भक्तों ने माँ गायत्री की पूजा अर्चना, जप, हवन तथा आध्यात्मिक साधना कर उनके दिव्य आशीर्वाद की कामना की। गायत्री जप के प्रभाव से जीवन श्रेष्ठ बनता है, यह शांति की ओर ले जाता है, सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। वास्तव में कर्म तो सभी करते रहते हैं, बिना कर्म किए हुए कोई भी एक क्षण भी नहीं रह सकता। ऐसा भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में वर्णन करते हैं, ना ही कश्चित क्षणमापि जातु निष्ठया कर्म कृत कार्यते हर्यवश्यः कर्म सर्वः प्रकृतिर जनैर गुणे। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। परंतु प्रत्येक क्षण किए जाने वाले कर्म का फल क्या होता है? कर्म की दशा और दिशा पर फल का आगमन होता है। संसार में सब कर्म करते ही रहते हैं, सबको विभिन्न प्रकार के फल भी मिलते रहते हैं। कोई शांति में रहता है, कोई अशांति में रहता है, कोई तनाव एवं अवसाद में रहता है, कोई सुख संपत्ति से संपन्न होकर रहता है, तो कोई दुख दुर्गति में परा रहता है। ऐसा कर्म की दशा और दिशा इनकी भिन्नता का कारण माना जाता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका सही और सटीक आशय मन में नहीं बन पाते। संसार में अधिकतम लोग या जन संख्या तबाही और बर्बादी का ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसका कारण है उनका अधर्म वाला कर्म। जो नहीं करना चाहिए वह अधर्म है और वे उसी की ओर प्रवृत्त रहता है। जो करना चाहिए वह धर्म है, उस धर्म की ओर प्रवृत्त कम से कम लोग करते हैं। गायत्री मंत्र कहा जाता है, तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो हमारी बुद्धियों को सदमार्ग की ओर प्रेरित करते हैं, उन सविता देवता के वरण करने योग्य, विकार नाशक दिव्यता प्रदान करने वाले तेज को हम ग्रहण करें। सर्व प्रेरक पाप नाशक वरण करने योग्य सूर्यदेव सच्चित आनंद स्वरूप सविता देव के तेज को हम धारण करते हैं और उसी से हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त होते हैं। गायत्री मंत्र तो सभी वेदों में समान स्वरूप है, परंतु उनके शाब्दिक अर्थ में भिन्नता है। फिर भी मूल आशय और अर्थ यही है कि सविता देवता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ और सन्मार्ग पर ले जाएं। आजकल जो सांसारिक जीवन में विनम्रता, विषमता, दुर्भाग्य, तनाव, अशांति ये सब बढ़ रहे हैं, उसका मूल में बुद्धि की श्रेष्ठता और सन्मार्ग से हट जाना है। यदि हम अपनी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर लेके चलते हैं तो स्वाभाविक रूप हमारे जीवन में सत्कर्म बने रहेंगे और यही गायत्री मंत्र का सबसे बड़ा प्रभाव माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवद गीता में कहते हैं कि गायत्री मंत्र का जाप करने से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण अपने आप को गायत्री का विभूति

ही बताते हैं, गायत्री छंदासमहम, यानी छंदों में मैं गायत्री मंत्र हूं। इसलिए अति आवश्यक है कि हम इस परम कल्याणकारी मंत्र को अपने जीवन में उतारें। श्रोताओं, आगामी सोमवार 29 जून को ज्येष्ठ मास पूर्णिमा पर रहे हैं, जो अत्यंत विशेष महत्व का बताया गया है। पूर्णिमा तिथि चंद्रमा की पूर्ण कलाओं का प्रतीक है। यह दिन मन की शुद्धि, आत्मचिंतन, दान पुण्य तथा भगवान के स्मरण के लिए सर्वोत्तम माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि पूर्णिमा के दिन किए गए जप, तप, दान, स्नान, भगवान की पूजा का फल अनेक गुना बढ़ जाते हैं। यह दिन हमें केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि मानव जीवन के लिए सेवा और करुणा का संदेश भी देता है। पूर्णिमा का चंद्रमा हमें यह शिक्षा देता है कि जैसे वह अपनी संपूर्ण कलाओं से जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने जीवन में सद्गुणों, ज्ञान और प्रेम का प्रकाश फैलाना चाहिए। जब हमारा मन भगवान के नाम में स्थिर होता है, तब जीवन की अनेक परेशानियां स्वतः ही हल्का प्रतीत होने लगती है। इसलिए इस पावन अवसर पर हमें अधिक से अधिक भगवान का स्मरण करना चाहिए तथा अपने जीवन को धर्म, सत्य और सदाचार के मार्ग पर आगे बढ़ाना चाहिए। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वट सावित्री भी मनाया जाता है। इस अवसर पर वट यानी बरगद वृक्ष की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। सनातन परंपरा में वट वृक्ष को दीर्घायु, अखंड सौभाग्य तथा त्रिदेवों का प्रतीक माना गया है। विवाहित महिलाएं अपने पति के दीर्घायु एवं स्वास्थ्य के लिए यह व्रत करते हैं और इसी कामना से वट वृक्ष की परिक्रमा कर पूजा करती है तथा व्रत का पालन करती है। वट देव वृक्ष है। वट वृक्ष के मूल में भगवान ब्रह्मा, मध्य में जनार्दन श्री हरि विष्णु तथा अग्रभाग में देवादिदेव भगवान शिव स्थित रहते हैं। देवी सावित्री भी वट वृक्ष में प्रतिष्ठित रहती है। इसी अक्षय वट वृक्ष के पत्र पोटक पर प्रलय के अंतिम चरण में भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप में मार्कंडेय ऋषि को प्रथम दर्शन दिया था। प्रयागराज में गंगा के तट पर वेणी माधव के निकट अक्षय वृत्त प्रतिष्ठित है। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने अक्षय वट को तीर्थराज का चत्र कहा है। संगमु सिंहासनु सुति सोहा, चत्रु अक्षय वटु मुनि मन मोहा। इसी प्रकार तीर्थों में पंचवती का भी विशेष महत्व है। पांच वटों से युक्त स्थान को पंचवती कहा गया है। वहां पर भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल में अपना समय व्यतीत किया है। सो ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा भी कहा गया है। उसी दिन यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा को संत शिरोमणि कबीर दास की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। संत कबीर भारतीय संत परंपरा के ऐसे महान संत थे जिन्होंने समाज को प्रेम, समता, भक्ति और मानवता का संदेश दिया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि ईश्वर केवल सीमित नहीं है, अपितु प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है। सद्गुरु कबीर साहब ने अपने दोहों के माध्यम से समाज की अनेक कुरीतियों पर प्रहार किया तथा लोगों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया। कबीर साहब कहते हैं, पोथी परी परी जगमुआ, पंडित भया न कोई, धाई आखर प्रेम का, परे सो
पंडित होई।

0: केवल पुस्तकों का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। यदि मनुष्य प्रेम, करुणा और मानवता को अपने जीवन में धारण कर लें, तभी वह वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। सो यह आने वाले ज्येष्ठ पूर्णिमा, इनकी महत्व बहुत ही ज्यादा है। वट वृक्ष की पूजा करें तथा सदगुरु कबीर साहब की हम लोग जयंती भी उसी दिन हम लोग मनाते हैं। चलिए हम सब मिलकर के ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत पालन करें और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने की कोशिश करें। जीवन में सत्य, सदाचार, विनम्रता और ईश्वर भक्ति को स्थान दें। उस दिन व्रत के साथ साथ यद्यपि दान पुण्य भी अवश्य करें। आप सबों के जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहे तथा सदगुरु कबीर साहब की आशीर्वाद भी हम सब प्राप्त करें। इस प्रार्थना के साथ आज के इस कार्यक्रम को मैं विराम की ओर लेके चलता हूँ। आपकी ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति ओम। श्री श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद, जय श्री हरि।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदू महासभा द्वारा सुधा वरिष्ठी।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।

मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शम। सम्माननीय श्रोतागण, सादर नमस्ते। आर्य सभा की ओर से प्रस्तुत है एक वक्तव्य जो महर्षि कृत कालजयी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश से लिया गया है। श्रोताओं, आज मैं 36 समुलास पर आधारित कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस समुलास में राजधर्म विषय आया है। महर्षि दयानंद ने बताया है कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 3 सभाओं का होना अनिवार्य है। विद्यार्य सभा, एजुकेशनल असेंबली, धर्मार्य सभा, रिलीजियस असेंबली, राजार्य सभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। त्रीनी राजाना विदथे पुरुनी परिविश्वानी भूषत्तः सदांसी। विद्यार्य सभा में इस समाज के सर्वोच्च विद्वान, वैज्ञानिक और आचार्य शिक्षक सम्मिलित होते हैं। इस सभा का कार्य है शिक्षा के गुणवत्ता को बढ़ाना, बच्चों और युवाओं को उत्तम संस्कार देना, भटके हुए मनुष्य को सही मार्ग दिखाना, इस पूरे राज्य में सत्य ज्ञान का प्रचार प्रसार करना। धर्मार्य सभा, इस सभा में वे लोग शामिल होते हैं जो परम धार्मिक, ज्ञानी, निष्पक्ष और सदाचारी हो। इसका मुख्य कार्य है धर्म, नैतिकता और सदाचार का प्रचार करना। यह सभा समाज को सच्चाई और असत्य, धर्म और अधर्म का सही ज्ञान कराती है। राजार्य सभा, इस सभा के सदस्य न्यायप्रिय, राजनीतिज्ञ, वीर, सूरवीर और अपने कार्यों में पूर्णतः दक्ष यानी कुशल होने चाहिए। इन तीनों सभाओं का गठन

वेदों के प्रमाणों के आधार पर किया गया है, जिससे कोई व्यक्ति, चाहे राजा हो या कोई और, निरंकुश यानि एकतंत्र तानाशाही न हो सके। एक को स्वतंत्र राजा का अधिकार नहीं देना चाहिए। प्रस्तुत मंत्र द्वारा उदाहरण देकर स्वामी जी ने हमें समझाया है, राष्ट्रमेव विषया हन्ति तस्माद् रास्ति विषे ध्यातुकः, विषमेव राष्ट्रा याध्यां करोति तस्माद् रास्ति विषमति न पुष्टं पशुं मन्यत इति। अर्थात जो प्रजा से स्वतंत्र स्वाधीन राजवर्ग रहे तो राज्य में प्रवेश कर प्रजा का नाश किया करे। इस प्रकार मंत्र में आया है कि किसी एक राज्य स्वाधीन न करना चाहिए। स्वतंत्र राजा किसी को भी अपने से अधिक न होने देता है। अथर्ववेद से उदाहरण लेकर स्वामी जी ने बताया है, इंद्रो जयाति न परा जयाता अधिराजो राजसु राजयात, चकृत्य इद्यो वंद्यस्योपसद्यो नमस्यो भविह। हे मनुष्यो, जो इस मनुष्य के समुदाय में परम ऐश्वर्य का कर्ता शत्रुओं को जीत सके, जो शत्रुओं से पराजित न हो, राजाओं में सर्वोपरि विराजमान प्रकाशमान हो, सभापति होने का अत्यंत योग्य प्रशंसनीय गुण कर्म स्वभाव युक्त सत्करणीय सब का माननीय होवे, उसी को सभापति राजा करें। श्रोताओं, इस समुल्लास में महर्षि ने दर्शाया है कि एक राज्य तथा सभा चलाने वालों का गुण कैसा होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए राजा नहीं बन सकता। राजनीति एक विज्ञान है। इसमें वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जिसने इस विषय में निपुणता प्राप्त कर ली है। राजा को समदर्शी होना चाहिए, किसी के साथ वैर नहीं करना चाहिए। जब तक राजा धार्मिक रहते हैं तभी तक राज्य बढ़ता रहता है, और जब दुष्टाचारी होते हैं तब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। श्रोताओं, इस समुल्लास में स्वामी जी ने स्वराज्य शब्द का उद्घोष किया है। आगे इस समुल्लास में आया है, तीन सभाओं की सम्मति से राजनीति के उत्तम नियम और नियमों के अधीन सब बरतें, सबके हितकारक कामों में सम्मति करें, सर्वहित करने के लिए परतंत्र और धर्मयुक्त कामों में अर्थात जो जो नीच के काम हैं उन उनमें स्वतंत्र रहें। राजा के गुण बताते हुए इस समुल्लास में आगे आया है, जो सभेश राजा इंद्र अर्थात विद्युत के समान शीघ्र ऐश्वर्यकर्ता, वायु के समान सबके प्राणवत प्रिय और हृदय की बात जानने वाला, पक्षपात रहित न्यायाधीश के समान वर्तने वाला, सूर्य के समान न्याय धर्म विद्या का प्रकाशक, अविद्या का निरोधक, अग्नि के समान तेज दुष्टों को भस्म करने वाला, प्रजा के धनाद्य आरोग्य खान पान आदि से संपन्न रहने पर राजा की बड़ी उन्नति होती है। प्रजा को अपने संतान के सदृश सुख देवे और प्रजा अपने पिता समान राजा और राजपुरुषों को जाने। श्रोताओं, इस समुल्लास में आगे आया है कि धार्मिक मनुष्य को योग्य है कि सभा में कभी प्रवेश न करें। अगर प्रवेश किया हो तो सत्य ही बोली। जो कोई सभा में अन्याय होते हुए देखकर मौन रहे अथवा सत्य न्याय के विरुद्ध बोले वह महापापी होता है। जिस सभा में अधर्म से धर्म, सत्य से असत्य सब सभा सदों के देखते हुए मारा जाता है, उस सभा में सब मृतक के समान है, अर्थात जीवित होते हुए भी मृतक के समान है, जो अन्याय को देखकर आवाज़ नहीं उठाते हैं। श्रोताओं, आगे इस समुल्लास में राजा के बारे में आया है, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी उसकी प्रजा होती है। इसलिए राजा और राजपुरुषों को अति उचित है कि कभी दुष्टाचार न करें, किंतु धर्म न्याय से सबके सुधार का दृष्टांत बने।

0: अंत में यजुर्वेद का वचन है, वयम प्रजापते प्रजा अभूम, हम प्रजापति अर्थात परमेश्वर की प्रजा और परमात्मा हमारा राजा है। वह कृपा करके अपनी सृष्टि में हमको राज्याधिकारी करे और हमें अपने सत्य न्याय की प्रवृत्ति करावे। श्रोताओं, आप सभी से निवेदन है कि सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की नित्य स्वाध्याय करें। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना, धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।
1: सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घरे मिलाते चलिए, सुबह के ठीक 6:30 बजे हैं।

6:30 बजे के समाचारों में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। 26 जून शुक्रवार का दिन। सबसे पहले आज की सुर्खियां। सिंथेटिक ड्रग्स की चपेट में आने वाले युवाओं और किशोरों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे समाज में गंभीर चिंता पैदा हो गई है। नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर विशेषज्ञों ने इस बढ़ते खतरे के प्रति चेतावनी दी है। सार्वजनिक सभाओं से जुड़े कानून को और सख्त बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत जुर्माना और जेल की सजा दोनों बढ़ाई जाएगी। ट्रेड यूनियन जगत ने इस प्रस्ताव पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे श्रमिकों की अभिव्यक्ति और विरोध प्रदर्शन की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। मॉरिशस के अटॉर्नी जनरल गाविन ग्लोवर ने बजट बहस के दौरान वर्ष 2026-2027 के लिए कानूनी सुधारों और संविधान के आधुनिकीकरण की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने शागुस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने की प्रक्रिया में हुई प्रगति का भी उल्लेख किया और कहा कि अब ब्रिटिश संसद की मंजूरी का इंतजार है। शागोस द्वीप समूह की संप्रभुता का मुद्दा एक बार फिर ब्रिटेन में राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। ग्रेट ब्रिटिश पीएसी ने पूर्व ब्रिटिश मंत्री एलकॉन्स से मॉरिशस को शागोस सौंपने से पहले जनमत संग्रह और समझौते की वित्तीय शर्तों पर उनका रुख स्पष्ट करने को कहा। मॉरिशस के ऊर्जा मंत्री पैट्रिक असियावादेन ने पूर्व सरकार पर पेंशन निधियों के कुप्रबंधन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026-2027 के बजट में घोषित पेंशन सुधार देश की वित्तीय स्थिरता और भावी पीढ़ियों के हित में आवश्यक कदम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेनेजुएला में

0: राजधानी काराकास के निकट आए दो शक्तिशाली भूकंपों में कम से कम 188 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए राहत और बचाव अभियान अभी भी जारी है। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। बात कर रहे थे हम सुर्खियों में ड्रग्स के बारे में। सिंथेटिक ड्रग्स की चपेट में आने वाले युवाओं और किशोरों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे समाज में गंभीर चिंता पैदा हो गई है। नशीली पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर विशेषज्ञों ने इस बढ़ते खतरे के प्रति चेतावनी दी है।
1: ये प्रवृत्ति चिंताजनक है, आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हार्म रिडक्शन यूनिट के अधिकारी डॉक्टर नीतीश राज सुकुल के अनुसार साल 2025 में 173 मामले दर्ज किए गए, जबकि पिछले वर्ष ये संख्या 139 थी। इससे भी ज्यादा चिंता वाली बात ये है कि ड्रग्स के शिकार नौजवानों में से लगभग 10 में से 6 सिंथेटिक ड्रग्स का सेवन करते हैं, जो आज युवाओं के बीच सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। वे बताते हैं, हमारे पास पिछले 5 सालों के आंकड़े हैं। 2021 में स्वास्थ्य संस्थाओं में 117 एडमिशंस, 2022 में 97, 2023 में 126, 2024 में 139 और 2025 में 173 भर्ती किए गए, सभी नौजवान हैं। सबसे ज्यादा सिंथेटिक ड्रग्स के मामले हैं, 25-35% हीरोइन ड्रग्स और बाकी गांजे के मामले हैं। हम उनका साथ देते हैं, खासकर मानसिक और सामाजिक स्तर पर।
0: खबरों को आगे बढ़ाते हैं। आपको हम याद दिला देते हैं कि नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञों ने इस समस्या को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। और आप जैसे सुन पाए, विशेषज्ञों का कहना है कि सिंथेटिक ड्रग्स के बढ़ते प्रचलन को रोकने के लिए जागरूकता, रोकथाम, समय पर उपचार और परिवार तथा समुदाय के सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने युवाओं को इस खतरे से बचाने के लिए सामूहिक प्रयासों पर भी जोर दिया। सार्वजनिक जुटावों से संबंधित नियमों के उल्लंघन पर जल्द ही अधिक कड़ी सजा का प्रावधान लागू हो सकता है। वित्त वर्ष 2026-2027 के बजट में सरकार ने पब्लिक गैदरिंग एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। प्रस्तावित बदलावों के अनुसार सार्वजनिक जुटावों से जुड़े अपराधों के लिए अधिकतम जुर्माना 25,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये किया गया है, जबकि अधिकतम कैद की अवधि, जी हाँ, जुर्माना 25,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये किया जाएगा, जबकि अधिकतम कैद की अवधि 4 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी जाएगी। इस प्रस्ताव ने ट्रेड यूनियन जगत में चिंता पैदा कर दी है। ट्रेड यूनियन नेता नरेंद्रनाथ गोपी का मानना है कि कानून को और सख्त बनाने से यूनियनों की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है तथा विरोध प्रदर्शनों और जन आंदोलनों को हतोत्साहित किया जा सकता है। इस पर पेश है याचना मिश्रा का विवरण।
1: मॉरिशस में वर्तमान कानून पहले ही सार्वजनिक सभाओं और प्रदर्शनों को नियंत्रित करता है। किसी बैठक या मार्च का आयोजन करने के लिए आयोजकों को कम से कम 7 दिन पहले पुलिस कमिश्नर को लिखित रूप में सूचित करना चाहिए। उन्हें स्थान, समय, अवधि, आयोजकों की जानकारी और मार्च के मामले में प्रस्तावित मार्ग या रूट का विवरण देना चाहिए। पुलिस कुछ शर्तें भी लगा सकती है या किसी सभा पर प्रतिबंध भी लगा सकती है यदि उसे लगे कि इससे सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा या समुदाय के जीवन पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। वर्तमान कानूनी ढांचे के बारे में डीएसपी लिडिया लाम बताते हैं।
2: Il fait mention de qui tout rassemblement de 12 personnes ou plus dans l'espace public, excluant certaines conditions qui sont dûment mentionnées dans la loi.
1: किसी भी सार्वजनिक जगह पर 12 या उससे ज्यादा लोगों वाले जुटाव अवैध हैं, बशर्ते कानून में मौजूद शर्तों का पालन किया जाए। किसी भी जुटाव का आयु

0: आयोजन करने से पहले कमिश्नर ऑफ पुलिस को लिखित अर्जी भेजनी चाहिए जुटाव के 7 दिन पहले ही। पुलिस कुछ शर्तें रख सकती हैं और यदि पुलिस को लगे कि सुरक्षा को लेकर कोई भी खतरा हो तो पुलिस को इस जुटाव को रद्द करने का पूरा अधिकार है। लेकिन बजट में घोषित संशोधन के साथ दंडों को और अधिक कड़ा कर दिया गया है। अधिकतम जुर्माना 25,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर दिया गया है। वहीं अधिकतम कारावास यानी जेल की सजा 4 वर्षों से बढ़ाकर 5 वर्षों का कर दिया जाएगा। नरेंद्रनाथ गोपी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ये उपाय एक गलत संदेश देता है। उनके अनुसार इससे ट्रेड यूनियन की गतिविधियों और आंदोलनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वे बताते हैं, उन्होंने ऐसा करके श्रमिक संघों की गतिविधियों पर ही रोक लगा दी क्योंकि वे ऐसे जुटावों का आयोजन करते रहते हैं। अब तो ऐसा करने के लिए सेना और पुलिस का समर्थन भी प्राप्त होगा। इस प्रकार सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और प्रदर्शन करने के अधिकार के सम्मान के बीच बहस शुरू हो चुकी है।
1: मॉरिशस के अटॉर्नी जनरल गॉविन ग्लोवर ने कल बजट पर जारी बहस में भाग लेते हुए अटॉर्नी जनरल कार्यालय की उपलब्धियों और वर्ष 2026-2027 के बजट में घोषित प्रमुख कानूनी उपायों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष के दौरान 20 से अधिक विधेयकों का मसौदा तैयार किया गया है। इनमें लॉ रिफॉर्म कमीशन एक्ट और सर्टिफिकेट ऑफ करेक्टर एक्ट भी प्रमुख हैं। गॉविन ग्लोवर ने कहा कि सरकार ने संविधान के आधुनिकीकरण का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही संसद में पेश किए जाने वाले क्रिमिनल कोड बिल में वैवाहिक बलात्कार और महिलाओं की हत्या फेमिसाइड को भी कानूनी प्रावधानों में शामिल किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने ब्रिटेन द्वारा शागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया। उन्होंने इस समझौते तक पहुंचने की प्रमुख घटनाओं का ब्यौरा देते हुए कहा कि अब केवल ब्रिटिश संसद में इस समझौते की पुष्टि के लिए आवश्यक विधेयक पर विचार होना बाकी है। हालांकि ब्रिटेन में इस विधेयक पर बहस की तिथि अभी तय नहीं की गई है। उन्हें सुनते हैं।
2: मैडम स्पीकर, दिस इज नॉट अ मैटर टू बी सेटल्ड बाय लकी यू क्विक ड्रॉ स्ट्राइक्स but by patience and diplomacy. The bill did not feature in the King's speech a few weeks ago for the next parliamentary session, but it remained listed on the UK Parliament website with a date for debate to be confirmed. The proof of the pudding is, they say, in the eating. Only yesterday, the Attorney General, Lord Hermer, addressing the House of Commons Justice Select Committee, came out strongly in favour of the ratification of this treaty. And later his office issued a statement, and I quote, "The Attorney General was reflecting on the government's long-standing position, which is that the government remains committed to the agreement with Mauritius as the best way to safeguard the long-term future of the base, and continues to work closely with the US and Mauritius on the next steps. The government will bring the bill back to Parliament to be ratified as soon as practicable. And for now, we continue to operate as normal," end of quote. The question, therefore, Madam Speaker, as you usually put to us, the question, therefore, is no longer whether, but it is when.
1: शागोस द्वीप समूह की संप्रभुता का मुद्दा ब्रिटेन में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रेट ब्रिटिश पॉलिटिकल एक्शन कमिटी PAC की चीफ एग्जीक्यूटिव क्लेयर ब्लीवॉन ने पूर्व ब्रिटिश मंत्री एलकॉन्स को पत्र लिखकर शागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव पर उनका पक्ष जानने की मांग की है। एलकॉन्स ने हाल ही में ब्रिटेन के सशस्त्र बल मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। गत 13 जून को द टेलीग्राफ में प्रकाशित एक लेख में एलकॉन्स ने कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाने के लिए ब्रिटेन को अपनी शासन व्यवस्था की समीक्षा करनी चाहिए। क्लेयर ने अपने पत्र में ये भी पूछा है कि शागोस द्वीप समूह की संप्रभुता के किसी भी हस्तांतरण से पहले क्या शागोस वासियों को जनमत संग्रह का अधिकार दिया जाना चाहिए। उन्होंने समझौते के तहत प्रस्तावित वित्तीय प्रावधानों की उपयुक्तता पर भी सवाल उठाया है। साथ ही उन्होंने ये जानना चाहा कि शागोस और ब्रिटेन की संप्रभुता समाप्त करने का निर्णय क्या वास्तव में देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत कर

0: तरीका। मॉरिशस के शागोस द्वीप समूह के ही मुद्दे पर रहते हैं। शागोस द्वीप समूह की संप्रभुता का मुद्दा ब्रिटेन में, जैसे मैंने आपको कहा कि टेलीग्राम की ये चर्चा का विषय बना हुआ है और इस पर बहस जारी है। खबरों को आगे बढ़ाते हैं। बात करें अब हम मॉरिशस की ऊर्जा के बारे में, सीबी के बारे में। मॉरिशस के ऊर्जा मंत्री पातिकासिया वादेन ने पूर्व सरकार पर पेंशन निधियों के कुप्रबंधन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026-2027 के बजट में घोषित पेंशन सुधार देश की वित्तीय स्थिरता और प्रभावी पीढ़ियों के हित में आवश्यक कदम है।
1: Nous devons avoir également le courage de reconnaître une réalité qui s'impose à nous.
2: हम में अपनी समक्ष खड़ी सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए। नॉन कंट्रीब्यूटेबल पेंशन प्रणाली आज ऐसे मोड़ पर है जब उसके अस्तित्व, उसकी कारगरता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यदि हम इसी प्रणाली पर अड़े रहे, बिना बदलाव, बिना सुधार, तो आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ जाएंगे? डॉक्टर नवीन राम गुलाम हमारे या हमारे बच्चों के लिए कदम नहीं उठा रहे हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का सोच रहे हैं। इसी कारण मैं कहता हूं कि देश की बागडोर संभालना आसान काम नहीं।
1: C'est pour cette raison que je dis que gouverner c'est pas facile.
0: स्वास्थ्य संबंधी खतरों से सुरक्षा के लिए सीमाएं रक्षा की पहली पंक्ति मानी जाती हैं। क्षेत्र में उभरती और पुनः फैलने वाली बीमारियों के बढ़ते जोखिम को देखते हुए प्रवेश बिंदुओं पर निगरानी को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी उद्देश्य से 22 से 25 जून तक मॉरिशस में हिंद महासागर आयोग द्वारा आयोजित एक क्षेत्रीय कार्यशाला में विशेषज्ञों, स्वास्थ्य अधिकारियों और सीमा नियंत्रण सेवाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान स्वास्थ्य जोखिमों की रोकथाम, समय रहते पहचान और प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की गई। हिंद महासागर आयोग के महासचिव डॉ. इब्राहिम नोबेया ने कहा कि एबोला, चिकुनगुनिया और हंटा वायरस जैसी बीमारियां आयोग के सभी सदस्य देशों के लिए चिंता का विषय हैं। उन्होंने इन स्वास्थ्य चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करने और रोकथाम के लिए साझा क्षेत्रीय रणनीति अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। आश्री बेचू की रिपोर्ट पर सुनते हैं डॉ. इब्राहिम नोबेया को, जिनसे उनसे आशी बाचू ने बात की। विवरण याचना मिश्रा का है।
3: या सर्टेन मालादी की ने कोनेस पा ले फ्रंटियर डोंक नू डेवों नू प्रेमिनिर।
2: कुछ बीमारियां सीमाएं नहीं देखती हैं, बचाव जरूरी है। ऐसी बीमारियों का संबंध सभी सदस्य देशों से है। हमने अनुभव बांटा और साथ मिलकर सोच विचार किया कि कैसे इन बीमारियों से बचा जाए।
3: Comment on peut aborder, comment on peut se prémunir contre ces maladies?
0: सतर्कता केवल यात्रियों तक ही सीमित नहीं है, पशु और पशु उत्पाद भी बीमारियों का प्रसार कर सकते हैं। महामारी विज्ञानी निगरानी और प्रतिक्रिया विशेषज्ञ डॉक्टर लोवना विगाप्पा मांगू के अनुसार पशु स्वास्थ्य और पशु उत्पादों से संबंधित जोखिमों की मजबूत निगरानी की कमी खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है और महत्वपूर्ण आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है। उनको सुनते हैं।
2: कुछ मवेशी लाए जाते हैं और यदि एक बीमार हो तो सभी मवेशी संक्रमित हो सकते हैं। कई फार्म तक ये फैल सकती हैं, कई जगहों तक ये बीमारी फैल सकती हैं। उन्हें मारना पड़ता है जिससे आर्थिक नुकसान होता है और खाद्य सुरक्षा कम होती है। इसी कारण सीमाओं पर निगरानी बढ़ाना ज्यादा जरूरी है।
0: नर्सिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधि राम नौजादिक का कहना है कि नर्सों के प्रशिक्षण के लिए एक समर्पित कैंपस की स्थापना अब समय की आवश्यकता बन गई है। उनके अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र में भविष्य की जरूरतों को पूरा करने और प्रशिक्षण मानव संसाधन तैयार करने के लिए ये कदम बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टरों को सरकारी स्वास्थ्य सेवा में बनाए रखने के लिए बेहतर कार्य परिस्थितियां और सुविधाएं उपलब्ध करानी जानी चाहिए। ये मांग ऐसे समय में सामने आई है जब बजट में सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए 2,220 स्वास्थ्य पेशेवरों की भर्ती का प्रावधान किया गया है। सरकार ने यह भी

घोषणा की है कि जिन क्षेत्रों में विशेषज्ञता की कमी है वहां विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाएंगी। इसके साथ ही चिकित्सा और नर्सिंग अफसरों के लिए अधिक विशेषीकृत प्रशिक्षण यानी स्पेशलाइज्ड

0: करना चाहिए था, सभी फैकल्टीज के साथ प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए था। क्या एक डॉक्टर को एक सीनियर चीफ एग्जीक्यूटिव से कम पगार मिलना चाहिए? हम आय की सीमा को नहीं देख सकते हैं। एक स्वास्थ्य आयोग का गठन किया जाना चाहिए। एक व्यक्ति को डॉक्टर बनाने के लिए कितना खर्च करना पड़ता है, खासकर पढ़ाई में। अब डॉक्टर को 50 से 60 हजार रुपए तक का ही पगार मिलता है। दो नर्स 50 मरीजों को संभाल रहे हैं, उसी उपकरण, उसी पलंग पर जो पुरानी हो चुकी है। एरिया हेल्थ सेंटर में डॉक्टर आधे दिन के लिए ही आते हैं। प्रशिक्षण जरूरी है, डॉक्टर को इंसेंटिव्स दिया जाना चाहिए अस्पताल में काम करने के लिए। एक स्वास्थ्य आयोग का गठन किया जाना चाहिए। पगार का स्केल बढ़ाना चाहिए ताकि डॉक्टर भी ये काम करने के लिए प्रोत्साहित हो, खासकर सार्वजनिक क्षेत्र में।
1: कमीशन ला सांते कि सेला पेय एन लुट ला पेय कि अटिरे प्लस दे रेंट डन ले सर्विस पब्लिक।
2: मॉरिशस ने संपत्ति घोषणा और वित्तीय अपराधों की रोकथाम के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता अफ्रीकी देशों के साथ साझा की है। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने बुधवार 24 जून को अपने रिजवी के मुख्यालय में अफ्रीका के कई देशों के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के एक प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। इस प्रतिनिधिमंडल में बुर्किना फासो, माली, कोमोरो, मडागास्कर, केप वर्डी और कोंगो लोकतंत्र गणराज्य के प्रतिनिधि शामिल थे, जो अध्ययन दौरे के तहत मॉरिशस की प्रणाली का अनुभव प्राप्त करने पहुंचे हैं। प्रतिनिधि मंडल मॉरिशस की उन विभिन्न संस्थाओं का भी दौरा करेगा जो वित्तीय अपराधों के खिलाफ कार्रवाई और निगरानी में सक्रिय भूमिका निभाती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सहयोग से आयोजित इस पहल के माध्यम से प्रतिनिधियों को मॉरिशस में संपत्ति घोषणा से संबंधित कानूनी ढांचे तथा निगरानी और नियंत्रण तंत्र को बेहतर ढंग से समझने का अवसर मिला। ये दौरा एफसीसी के लिए वित्तीय अपराधों की रोकथाम के क्षेत्र में मॉरिशस के अनुभव साझा करने और इस दिशा में कार्यरत अफ्रीकी संस्थानों के बीच सहयोग को मजबूत करने का भी महत्वपूर्ण अवसर साबित हुआ। इस संबंध में एफसीसी की डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स की एक्टिंग हेड अश्विना रंगासामी पसुआमेन ने विस्तृत जानकारी दी।
0: मॉरिशस ने कानून में बदलाव, डिजिटलाइजेशन, विरासत के डिक्लेरेशन में पारदर्शिता आदि के माध्यम से अपनी प्रणाली कैसे मजबूत की, इस पर हमने अपना अनुभव साझा किया। अन्य देशों ने अपनी प्रणालियां कैसे ठोस की, इस पर भी हमने सीखा। इस फोरम में हमने एफसीसी के प्रति अपनी कटिबद्धता दोहराई। साथ में हमने समावेश, ट्रांसपेरेंसी, भ्रष्टाचार तथा अन्य वित्तीय अपराधों के खिलाफ संघर्ष को लेकर भी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
3: La transparence et surtout la lutte contre la corruption et tout man crime financier.
2: मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर के चार सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। इस्लामी नववर्ष 1448 के 10वें दिन दुनिया भर के मुसलमान यौम अशूरा मना रहे हैं। अशूरा का दिन इस्लाम के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। माना जाता है कि इस दिन कई महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक घटनाएं घटी थी जिन्हें श्रद्धालु श्रद्धा और सम्मान के साथ स्मरण करते हैं। इस अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोग इबादत, दुआ और धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेती हैं। हमारी टीम पोर्टलिस के सुबाची परिवार से मिला और अशूरा के महत्व तथा उससे जुड़ी परंपराओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। सुमेरा अकबरी की ये रिपोर्ट।
4: खानदान की दीगर मेंबरान इस अहम तारीख की नियामतों से मुस्तफीद हो रही है। मुहर्रम के इस 10वें दिन को यौमे आशुरा कहा जाता है। शमीमा फजर से पहले उठी हैं और रोजे से हैं।
5: मेरी ज़िंदगी में यौमे आशुरा की बहुत बड़ी अहमियत है। सिर्फ ये एक कहानी नहीं है, एक चीज़ जो हो चुका है ये सिर्फ नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा सबक है मेरे स्पेशल मेरी ज़िंदगी में। इन दिनों में मैं सबसे पहले एजुकेशन को फैलाती हूँ, औरतों में मैसेज को फैलाती हूँ जो मैसेज कुरान का है, हदीस का है, और दूसरा यह है कि मैं रोज़ा रखती हूँ। तो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं रोज़ा रखती हूँ, कुरान के रिसिटेशन करती हूँ और ज़िक्र करती हूँ, फैमिली के साथ बैठकर हम अज़कार करते हैं।
4: हज़रत मोहम्मद की हदीस के हवाले से ये रोज़ کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جیت کا عکاس ہے۔
6: موسیٰ علیہ السلام، موئیز، avec ce peuple.

0: सेंटर डी डॉक्यूमेंटेशन सुर इस्लाम के सदर यूसुफ जुमान बताते हैं, सामने समुंदर था, बीच में मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल और उनके पीछे फिरौन और उसकी फौज थी, हजारों फौजी थे। ये देखकर बनी इसराइल के लोगों ने मूसा से कहा कि अब उनका कुछ नहीं हो सकता, वो नहीं बच पाएंगे।
1: Coincé, mais Moussa dit une phrase qui finit rester dans l'histoire. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah, mon Rab avec moi et il pour guide moi.
0: Hazrat Moussa ne kaha ki mera Rab mere saath hai aur wo meri rehnumai karega. Allah ne unse kaha ki tum apni laathi se samundar ko chho lo. Unhone Rab ke farman par aisa hi kiya aur samundar ke do tukde hue. Unke guzarne ke baad jab Firaun aur uski fauj aa rahe the to wo sab gharq ho gaye. दुनिया भर के मुसलमान यौम आशुरा पर हजरत मूसा की याद में दो या तीन रोजे रखते हैं।
2: बात करें हम फुटबॉल विश्व कप 2026 के बारे में, आपको कल रात 12 बजे यानी कि रात 12 बजे के खेले गए मैचों के बारे में थोड़ा बात करें, उनके स्कोर के बारे में बात करें। ग्रुप ई में एक अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिला। 12 बजे रात को खेले गए मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को बुरी तरह हराया यानी कि 2-1 के स्कोर से, और आइवरी कोस्ट ने क्यूरासाव को हराया 2-0 यानी कि 2-0 के स्कोर से। और इसी ग्रुप में जो पहला क्वालिफाई टीम हुआ है वो है जर्मनी और फिर है आइवरी कोस्ट, और बेस्ट थर्ड श्रेणी में इक्वाडोर भी राउंड 16 के लिए क्वालिफाई हो गया है। सुबह 3 बजे खेले गए मैच में ग्रुप एफ में नेदरलैंड ने चुनीजिया को 3-1 के स्कोर से हराया है। जापान और स्वीडन ने ड्रॉ किया और इसमें राउंड 16 के लिए नेदरलैंड पहला, दूसरा जापान और बेस्ट थर्ड के लिए स्वीडन क्वालिफाई हुआ है। अभी जो मैच जारी है ग्रुप डी में पैराग्वे अभी खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और फिलहाल स्कोर 0 है, और चुनीजिया ने यूएसए को हराया 2-1 के स्कोर से। याद रखें इसमें राउंड 16 के लिए यूएसए पहले से ही क्वालिफाई हो चुका है। और बात करें हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर में, दक्षिण अमरीकी देश वेनेजुएला में आए शक्तिशाली भूकंपों में व्यापक तबाही मचाई है। अब तक कम से कम 188 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि राहत एवं बचाव दल ढही हुई इमारतों के मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटी हुई है। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार पहला भूकंप रिक्टर पैमाने पर 7.2 तीव्रता का था। इसके एक मिनट से भी कम समय बाद 7.5 तीव्रता का दूसरा शक्तिशाली झटका महसूस किया गया। ये भूकंप USGS के भूकंप अभिलेखों के अनुसार वर्ष 1900 में वेनेजुएला के तट के निकट 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसे सैन नोसिनो भूकंप के नाम से जाना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि हालिया भूकंपों में से एक वर्ष 1900 के बाद देश में दर्ज सबसे शक्तिशाली भूकंपों में शामिल है। अधिकारियों के अनुसार कई इमारतें क्षतिग्रस्त या ध्वस्त हो गई हैं, जिससे जनहानि बढ़ने की आशंका हुई है, और राहत एजेंसियां प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और सहायता कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा रही हैं। पढ़ते हैं मौसम के हाल की ओर। आम हालत, दक्षिण पूर्व से आने वाले बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। हमारे इलाके पर अस्थिर बादलों का असर है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है सुबह के समय पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लेटों वाले इलाकों पर विशेषकर बारिश होगी। कभी कभार बारिश तेज होगी और बादल भी गरजेंगे। चंद इलाकों में कोहरा छाया रहेगा और दृश्यता कम होगी। दिन के दौरान वर्षा थोड़ी थम जाएगी पर रह रहकर ऊंचाइयों पर बारिश होती रहेगी। रात के दौरान बादल घिरे रहेंगे और पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लेटों पर बारिश होगी। हवा पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और झोंके खुली जगहों पर बारिश के समय 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। समुद्र प्रवाह रेखा के पार खराब रहेगा तथा दक्षिण की ओर से जुआर उठेंगे जो 3 मीटर के होंगे। खुले समुद्र में विशेषकर दक्षिणी और पूर्वी लगूनों में न निकलने की सलाह दी जाती है।

बाद में दिन के दौरान समुद्र लगूनों में उसकी स्थिति सामान्य हो जाएगी। तापमान, अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच, न्यूनतम तापमान ऊंचाइयों पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहिली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच। चंद जरूरी सलाह, जब बादल गरजे तो जनता को सलाह दी जाती है कि आप घर के अंदर रहें, खुले मैदानों में, समुद्र में तथा पेड़ों के नीचे आप पना न लें। आज सूर्योदय सुबह 6:45 पर और सूर्यास्त शाम 5:40 पर।

0: इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरी समाचार डेस्क का सहयोग प्राप्त हुआ है और कंसल पर हमारे सहयोगी कादर का भी। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, सुन पाएंगे शुभ समाचार।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

शुभ समाचार सुनिए। नेहरू रोड पुचिराफ्री में, नेहरू रोड पुचिराफ्री में 72 साल की 72 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती आनंदनी दर्शन, श्रीमती आनंदनी दर्शन जिन्हें पैदाश नाम कालिका, जिन्हें आनंदनी के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके पति गिरजानंद दर्शन के घर पुचिराफ्री से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोमास्काल पुचिराफ्री की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। अविनय जॉन कैनेडी वाकुआ में, अविनय जॉन कैनेडी वाकुआ में 83 साल की 83 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती पर्वदी बेसे पैदाश नाम एनान, और जिन्हें सरोत के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 11 बजे उनके घर वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थॉमा मैल की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। महात्मा गांधी रोड लेस्पेरेंस ट्रेबुशे में, महात्मा गांधी रोड लेस्पेरेंस ट्रेबुशे में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड के श्री रमेश चुरामन जिन्हें पोलसन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 12:30 बजे उनके घर लेस्पेरेंस ट्रेबुशे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:30 PM। मेलिश स्ट्रीट फॉरेस्ट साइड में 71 साल के 71 ईयर्स ओल्ड के श्री सतीश लाल बिहारी जिन्हें सीताराम दास के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज उठाई जाएगी और अंतिम संस्कार के लिए बिगाक शमशान भूमि ले जाएगी उनके बेटे मनवीर सिंह लाल बिहारी के घर से। समय के बारे में बाद में जानकारी दी जाएगी। अकेथलेन बारामिया रोजबेल में 70 साल के 70 ईयर्स ओल्ड के श्री राजी सिंह सिबा जिन्हें राजेश ताइयो के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके भाई जयराज सिबा के घर रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेनमानियों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। टागोर रोड न्यू वियामिल ट्रियोली में 70 साल के 70 ईयर्स ओल्ड के जनाब मंसूर अफजल उलियो इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज 10:00 AM इनके भाई अहमद उलियो के मकान न्यू वियामिल ट्रियोली से उठाकर दफनाने के लिए प्रंदीप पपाय का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। मेफ्लावर स्ट्रीट ग्रैंड पॉइंट ऑफ पिमा में 75 साल की 75 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती देवयानी तिलकधारी पैदाशाम सिगन, और जिन्हें देवयानी के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 12 बजे उनके बेटे अनूप तिलकधारी के घर ग्रैंड पॉइंट ऑफ पिमा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पॉइंट ऑफ बीच की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:00 PM। रायरोड डीप रिवर में 93 साल के 93 ईयर्स ओल्ड के श्री बेवसेन अपा जिन्हें भीम अपा के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 10:00 AM उनके बेटे रत्नाजी अपा के घर डीप रिवर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्वाजिलो ओलिविया की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। ऋषि दयानंद लेन मौलाशो में 76 साल के 76 ईयर्स ओल्ड के श्री सुलेश गोकुलक जिन्हें सुलेश के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, और जो SSR अस्पताल में अटेंडेंट थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी उनकी पत्नी माला गोकुलक के घर मौलाशो से उठाकर इस दौर की शमशान भूमि ले जाएगी। समय

0: और दिन के बारे में बाद में जानकारी दी जाएगी। ला रू कुवां क्यूपिप में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड के श्री पंसामी रासेन जिन्हें कुमारन के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 9 बजे उनके घर क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाड़ शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 9 AM। राम सुंदर लेन सोलफेरिनो नंबर तीन वाकुआ में 53 साल की 53 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती ईश्वरी जालिम पैदाश नाम आगाची और जिन्हें गीता के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी आज सुबह 11 बजे उनके पति राजेश जालिम के घर सोलफेरिनो वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बैलेंस सोलफेरिनो नंबर 5 वाकुआ की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। विक्टोरिया लेन रोशनो में 57 साल के 57 ईयर्स ओल्ड के श्री संजीव ओरिसिंकाला अपादू जिन्हें संजीव के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 11 बजे उनकी माँ राधिका अपादू के घर रोशनों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। 58 साल के 58 ईयर्स ओल्ड के श्री दीपनाथ अलोल जिन्हें शैलेश के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे मूगा फ्यूनरल पुचित रिवियर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए यूनियन पार्क की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। चतरगुन लेन लिस्कालिये में 67 साल की 67 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सांताबाई कुसनिया गणेश पैदाश नाम कुसनिया और जिन्हें सांता के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 11 बजे उनके बेटे मोहन गणेश के घर लिस्काली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बासेकारांग लिस्काली की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। तमिल टेम्पल रोड लाग्रेमेंट सेंट पियर में 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सारादम्बाल मुथिया पैदाश नाम मुथिया और जिन्हें देवी के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 9 बजे उनके बेटे सदासिवेन मुथिया सिवेन के घर लाग्रेमेंट सेंट पियर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेकोंसा सेंट पियर की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 9 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: 819 किलोहर्ट्ज ये है रेडियो मॉरिशस।
2: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
3: सत्यार्थ प्रकाश मास के उपलक्ष्य में आर्य सभा मॉरिशस शुक्रवार 26 जून को थुदुदुस आर्य समाज में शाम के 3:30 बजे एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें भारत से आए हुए प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री सत्यार्थ प्रकाश पर प्रवचन देंगे। सत्यार प्रकाश प्रचार मास के संदर्भ में आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में मौसलमों सतौंद्रे आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा शाखा नंबर 39 शुक्रवार 26 जून को शाम 4:30 बजे यज और प्रवचन का आयोजन कर रहा है। सत्यार प्रकाश प्रचार मास के संदर्भ में आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में टोमासे क्रेवकर आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा शाखा नंबर 27 शुक्रवार 26 जून को शाम 6 बजे से रात्रि के 8 बजे तक यज और प्रवचन का आयोजन कर रहा है।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।
4: सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भरा नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के नॉकआउट राउंड में 32 टीमें होंगी, 32 टीम्स। कल नेदरलैंड्स, जापान और स्वीडन एक ही ग्रुप से तीनों क्वालिफाई हुए। जर्मनी और आइवरी कोस्ट भी लास्ट 32 में, इक्वाडो भी जा सकता है। ग्रुप ई में कुआसाओ को 2-0 से हराया आइवरी कोस्ट ने। जियोमांडे और संगारे का एक गोल, कुआसाओ को अलविदा।

इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराया। फिर भी जर्मनी अपने ग्रुप में टॉप आया। इक्वाडोर के पास 4 अंक हैं जो क्वालिफिकेशन के लिए काफी हो सकता है। अगर इंग्लैंड अपने ग्रुप में पहला स्थान लेता है तो नॉकआउट राउंड में उसका सामना इक्वाडोर से होगा। ग्रुप एफ में भी 3 टीमें क्वालिफाई हुई। नेदरलैंड्स ने ट्यूनिजिया को 3-1 से हराया। एक ऑन गोल फील ब्रोबेक का एक गोल वन हेके ने भी स्कोर किया नेदरलैंड्स के लिए। इसी ग्रुप में जापान और स्वीडन के बीच मैच ड्रॉ गया 1-1। स्वीडन का गोल इलांगा ने स्कोर किया ग्योकोरेस के पास पर। जापान और स्वीडन दोनों नॉकआउट राउंड में पहुंचे। इस प्रकार राउंड ऑफ 32 16 दे फिनाल में जापान का मुकाबला ब्राजील से होगा। मोरक्को खेलेगा नेदरलैंड्स के खिलाफ। अगर स्कॉटलैंड क्वालिफाई हुआ तो उसका सामना मेक्सिको से होगा। और फ्रांस वर्सेस स्वीडन, अगर फ्रांस अपना ग्रुप टॉप करेगा तो। ग्रुप डी में इसी समय मैच चल रहा है पाराग्वे और ऑस्ट्रेलिया के बीच। मैच ड्रॉ है 0-0 और टर्की यूएसए को 2-1 से हरा रहा है। इस मैच को अभी इसका फाइनल रिजल्ट आपको 7:30 देंगे RM2 पर। आज ग्रुप आई के मैच खेले जाएंगे रात के 11:00। नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से, सेनेगल वर्सेस इराक। नॉर्वे फ्रांस, इस मैच के बाद पता चलेगा कि इस ग्रुप में कौन पहले स्थान पे आएगा। इन दोनों मैचों पर प्रीव्यू आपको देंगे स्पेशल वर्ल्ड कप मैगजीन में, जो RM2 पर आएगा 8:30। और कल सुबह 4:00 ग्रुप एच में केप वर्दे वर्सेस सऊदी अरेबिया और यूरुग्वे वर्सेस स्पेन। कल सुबह 7:00 ग्रुप जी में इजिप्ट वर्सेस ईरान और न्यूजीलैंड का मुकाबला बेल्जियम से होगा। ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच कल रात क्रोएशिया वर्सेस गाना, पनामा वर्सेस इंग्लैंड और संडे सुबह कोलंबिया वर्सेस पोर्टुगल। जॉर्डन का मुकाबला अर्जेंटीना से। संडे को ही लास्ट 32 मतलब नॉकआउट राउंड शुरू, साउथ अफ्रीका वर्सेस कनाडा ये 11:00 और सोमवार को ब्राजील जापान 9:00। फ्रांसो न्यूज, एलियट एंडरसन मैनचेस्टर सिटी में जा रहा है। सिटी और नॉटिंगहम फॉरेस्ट के बीच 116 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर सौदा हुआ, पर खबर है दाम 130 मिलियन तक जा सकता है, जो एक ब्रिटिश रिकॉर्ड होगा। आर्सेनल की नजर न्यूकासल यूनाइटेड के मिडफील्डर ब्रूनो गुमारेस पर है और सांड्रो टोनाली के लिए न्यूकासल यूनाइटेड 100 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग मांग रहा है। टोटनहम हॉटस्पर से दूसरा बिड भी ठुकरा दिया गया। लिवरपूल आइवरी कोस्ट के स्टार खिलाड़ी जियो मांडे के लिए 100 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग दे रहा है, पर आरबी लाइप्ज़िग इससे ज्यादा मांग रहा है। आइवरी कोस्ट के साथ बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ साथ जियो मांडे का दाम डायमंड की तरह बढ़ता जा रहा है। क्रिकेट, विमेन्स T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने कल बांग्लादेश की टीम को हराया 5 विकेट की जीत और टीम इंडिया सेमीफाइनल क्वालिफिकेशन के लिए करीब है। भारतीय टीम का अगला मैच इस संडे को ऑस्ट्रेलिया से होगा। अभी भारतीय विमेन टीम बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका से 2 अंक आगे है। ग्रुप में केवल 2 टीमें क्वालिफाई होंगी। और इंग्लैंड में छोटे बच्चों और बड़ों में के ड्रेसिंग रूम और चेंजिंग रूम में जाना मना है, मतलब छोटे बच्चे ड्रेसिंग रूम में नहीं जा सकते जहां पर बड़े लोग होते हैं। ऐसे में भारतीय क्रिकेट सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी, जो केवल 15 साल का है, उसके लिए आयरलैंड और इंग्लैंड टूर के दौरान अलग प्रबंध किया गया है। आज या संडे को वैभव सूर्यवंशी पहली बार के लिए टीम इंडिया के लिए खेलेगा। वो यंगेस्ट इंटरनेशनल खिलाड़ी बनेगा, लेजेंड सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड अपने नाम करेगा। सो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही। हमारी मुलाकात फिर से होगी 7:40 पर RM2 पर। और भूलिएगा नहीं, RM2 पर ही 8:30 वर्ल्ड कप मैगजीन जरूर सुनिएगा। नमस्कार, आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।

0: नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। घड़ी मिलाते चलिए, इस समय 7:14 हो चुके हैं। सुबह का नजराना कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत करती है पूजा। नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है और कोई और नहीं, आप ही है। जी हाँ, आप ही रेडियो मॉर्शस के हमारे प्यारे श्रोतांगन, जो हर सुबह अपने परिवार का हिस्सा बनकर हमारे साथ जुड़ जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की जो सुबह है, आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान और दिल में नई उम्मीद लेकर आई होगी। जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वो लोग होते हैं जो हर सुबह आपको याद करते हैं प्यारी प्यारी मैसेजेस के साथ और फोन कॉल्स के साथ। और सच कहूं, हमारी सुबह तब तक पूरी नहीं होती जब तक आप हमारे साथ अपनी चाय की प्याली चुस्के, अपनी मुस्कान और अपना थोड़ा सा समय साझा नहीं करते। तो चलिए, इसे प्यार और अपनेपन से हम चले आते हैं साथ निभाने के लिए सुबह सुबह सुबह का नजराना कार्यक्रम में। तो चलिए, कार्यक्रम आरंभ करते हैं चिंतन से। आइए इसे श्रवण करते हैं श्रीमती डॉक्टर शांति महाबीर जी की प्रस्तुति में।
1: मूल्य, सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: दूसरों को नीचा वही दिखाता है जिसमें अहंकार होता है, क्योंकि जिसमें संस्कार होता है वह दूसरों का सम्मान करता है।

0: तो चलिए एक नज़र डालते हैं आज के रेडियो कार्यक्रमों पर। और अभी आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना कार्यक्रम और 7:30 बजे चंद पॉपुलर गीत आप सभी के नाम। 8 बजे आप भोजपुरी में समाचार सुन पाएंगे समाचारों के उस पार। गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम और 8:50 पर आप हमारी धरोहर कार्यक्रम सुन पाएंगे किरण जानकी जी द्वारा। फिर आप सभी के नाम एक भोजपुरी गीत चलाएंगे। 9 बजे फिर से समाचार होंगे समाचारों के उस पार आज की चर्चा कार्यक्रम 9:10 पर। और 10 बजे फिर से समाचार होंगे 10:03 पर भक्ति धारा कार्यक्रम रोशनी की प्रस्तुति में। और 11 बजे आप फिर से समाचार सुन पाएंगे समाचारों के उस पार 11:03 पर उर्दू कार्यक्रम सायदा की तरफ से। 12 बजे आप तेलुगु भाषा में कृतिका द्वारा कार्यक्रम सुनेंगे। दिन के 1 बजे आरसी द्वारा तमिल कार्यक्रम रंगारंग कार्यक्रम गुजराती भाषा में प्रस्तुति करेगी प्रस्तुति रत्ना जी। दिन के 1:45 पर और 2 बजे आप हॉन्ग हॉन्ग के साथ कार्यक्रम सुन पाएंगे। और 2:30 बजे आपकी पसंद कार्यक्रम 4028085 पर 4285 पर आप अपना जो रिक्वेस्ट है या फिर फरमाइश है हम तक पहुंचा सकते हैं आपकी पसंद कार्यक्रम। और सुपहर के 3 बजे समाचार होंगे समाचारों के उस पार 3:10 पर आपकी पसंद कार्यक्रम जारी रहेगा। और 3:45 से लेकर 4:40 तक उर्दू कार्यक्रम अनवर की तरफ से। शाम के 5 बजे गीत और गजल कार्यक्रम रत्ना द्वारा। और शाम के 6 बजे समाचार बुलेटिन आप सुन पाएंगे। और 6:20 पर चंद फिल्मी गीत आप सभी के नाम वीडियो मॉरिशस के लहरों पर। और 6:30 बजे आप चाइनीज कार्यक्रम सुन पाएंगे जिन की तरफ से। रात के 7 बजे तमिल कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। 7:30 बजे तेलुगु भाषा में विश्वा जी द्वारा आप कार्यक्रम सुन पाएंगे। 7:50 पर गीत गंगा कार्यक्रम मराठी भाषा में बापू की ओर से। भजले प्रभु का नाम भक्ति कार्यक्रम अलका जी द्वारा रात के 8:10 पर 8:40 पर। शमे गरीबान कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। और रात के 9 बजे 9:10 पर भोजपुरी तड़का कार्यक्रम कुछ छतर की दार भोजपुरी गीत सुरेखा जी की प्रस्तुति में और पुराने दौर के गीत लेकर आएगी गणेशा रात के 11 बजे। और 12 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक चंद प्यारे फिल्मी गीत आप सभी के नाम।
1: रेडियो मॉरिशस झलकियां
2: झलकियां
3: रेडियो मॉरिशस।
0: जी हाँ रेडियो मॉरिशस पर कुछ पुराने गीत आप सभी के नाम। और सुनते रहिए गुनगुनाते रहिए हमारे साथ। यूं ही हम नहीं कहते ओल्ड इज गोल्ड। चलिए मेरे साथ आप भी इस सुबह की शुरुआत करते हैं इन प्यारे पुराने नगमों के साथ। मेरा जूदा है जापानी मुकेश जी की आवाज में आप सभी के नाम। गीता बाई जी है न्यूएल फॉन्स से, अनीता जी है फिगा फ्लैग से, माला सुमारू जी हैं साथ में है, नीता खिदनी जी, शैला जी हैं ग्रैंड रिविया सुडे से, शांति जी हैं, आप सभी का दिल से स्वागत करती हैं पूजा।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: भाई पुराने दौर के गीत केवल गीत ही नहीं, उनके बोलों में जीवन की सीख छुपा है। कहा जाता है हर किसी के जीवन में

उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, पर आवश्यक ये है कि हम चलना चलते रहें और जीवन के हर पड़ाव को पूरी हिम्मत के साथ, सकारात्मक सोच के साथ आप पार करें। जीवन जीने का नाम है, संघर्ष तो है पर गुजर जाएगा, समय ही तो है। साथ दे रही है अनीता जी मौदालबिया से, माला जी हैं बोबासा से, सूरज शर्मा सजादा जी हैं त्रियोली से, लक्ष्मी जी हैं बॉम्बू से, आप सभी का स्वागत है।

0: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर।
1: टेंशन किसको नहीं है, सुबह सुबह की हड़बड़ी में हम कभी कभी गड़बड़ी कर जाते हैं, पर इस गड़बड़ी में भी मजा आता है, क्योंकि गड़बड़ करने के बाद ही हमें पता चलता है कि अरे इसमें सुधार कैसे लाएं। इसीलिए हर मिस्टेक मिस्टेक नहीं होता, कभी कभी गड़बड़ करना पड़ता है, इससे भी सीख मिलती है कि आगे जाकर ये काम फिर से नहीं करना चाहिए। ये जीवन जो है ना, अपने आप में एक मिस्ट्री है। और

इसमें तजुर्बे भी बहुत मिलते हैं। तो चलिए अभी एक मजेदार गीत आप सभी के नाम किशोर दा जी की आवाज में आराधना फिल्म से। सादी री हैं उषा जी हाइलैंड से, लीला जी हैं बुआशेरी से। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आइए आप सभी के नाम

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: किसी ने सच ही कहा है कि अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, पर लाखों दिलों को खरीदने की क्षमता रखता है। जब दिल में प्यार हो, अपनों में आप जब प्यार बांटते हो, मीठा बोली बोलते हो, तो अवश्य दिल तक आप पहुंच ही जाते हो। चलिए अब हम बढ़ते हैं कुछ 90s के गीत, कुछ पॉपुलर गीत आप सभी के नाम मान। जुड़िए हमारे साथ, गुनगुनाते रहिए। सफर कर रहे हैं और काम के लिए निकले हैं, आपको कहेंगे वो खास।
3: तू है आसमां में,
2: हिम्मत है,
3: ये जमीन,
2: जुनून है,
3: जो है,
2: तो इसी जुनून को बरकरार रखिए, मंजिल तक आप पहुंच ही जाएंगे। ट्रैफिक में फंसे हो, कोई बात नहीं, ये भी गुजर जाएगा। चिल कीजिए, लाइफ है जनाब,
3: तू जो है, तो
2: कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाएगा।

जीवन में कभी किसी से अपना तुलना मत कीजिए। आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर की हर रचना अपने आप में सबसे उत्तम है, अद्भुत है। बस हर किसी का जो सफर है, हर किसी का सफर अलग है। सफर को एंजॉय कीजिए।

भैया अभी आप सुन रही हैं सुबह का नजराना कार्यक्रम और साथ रहिए 8 बजे आप भोजपुरी में समाचार सुन पाएंगे। समाचारों के उस पार गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम के लिए तैयार हो जाएं। भाई ये एक बहुत ही सुंदर सा गीत था के साथ हम समाप्त करने वाले हैं। भाई किसी ने सच्चे कहा है कि जीवन में अगर दोस्त हो तो मान लीजिए सब कुछ है। दोस्त जो है परमात्मा का ही एक दूत है, मैसेंजर है, जो आते हैं एक एंजल के समान और आपके जीवन में खुशियां लेकर आती हैं। चाहे कुछ भी हो वो आपकी रक्षा प्रोटेक्ट तो अवश्य करती है। तो चलिए ये मेरा सा गीत अनीशा के नाम और उनकी प्यारी मामा के लिए, और साथ में है श्री गोविंद जी क्लेफो वाकुआ से। तो चलिए अभी आप सभी के नाम ये प्यारा सा गीत

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घनीमीलाल जा फजीर के 8 बजे तक। आठ बजे के समाचार में आप सब लोग के स्वागत करल जाता। सब लोग के नमस्ते आप प्रणाम। सबसे आगे देश के बारे में बतियाओ। अब जा सिंथेटिक ड्रग्स के खतरा लगातार बढ़त जाता। एक चपेट में आई होला युवा और छोटा छोटा लड़का लोग के संख्या चिंताजनक रूप से बढ़ते जाता। हर एगो आंकड़ा के पाछे एगो परेशान लैका, संघर्ष करत एगो परिवार, जोखिम में परत एगो भविष्य छिपल बाटे। नशीला पदार्थ के लत नहीं खाली एगो एक जना के स्वास्थ्य के प्रभावित करेला, बल्कि समाज आर पारिवारिक जीवन पर भी एकर बहुत गंभीर असर पड़ेला। नशीला पदार्थ के दुरुपयोग आर अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञ इस समस्या के लेके गंभीर चिंता व्यक्त कर ले हवन जा। सार्वजनिक जुटाव से संबंधित नियम के उल्लंघन पर बहुत हाली जस्ती कड़ा सजा के प्रावधान लागू होई। वित्त बरिस 2026-2027 के बजट में सरकार पब्लिक गैदरिंग एक्ट में संशोधन के प्रस्ताव रखले बाटे। प्रस्तावित बदलाव के चलत सार्वजनिक जुटाव से जुड़ल अपराध खातिर सबसे जस्ती जुर्माना 25,000 रुपया से बढ़ा के ओकरा 1,00,000 रुपया यानी कि 100,000 करल जाए, जबकि सबसे जस्ती कैद के सजा के जो अवधि रहल 4 बरिस से बढ़ा के ओके 5 बरिस करल जाए। ई प्रस्ताव ट्रेड यूनियन जगत में चिंता पैदा कर ले बाटे। काहे कि ट्रेड यूनियन नेता नरेंद्र नाथ गोपी मानेलन कि कानून के आर सख्त बनैला से यूनियन के स्वतंत्रता प्रभावित हो सकी आर विरोध प्रदर्शन आर जन आंदोलन के हतोत्साहित यानी कि जे कोई ई आंदोलन करे खोजी या प्रदर्शन करे खोजी उ लोग के निराश होय के परी ई सब जुर्माना आर कैद के अवधि बढ़ला के बाद। मॉरिशस के अटॉर्नी जनरल गाविन ग्लोवर काल बजट पर जारी बहस में भाग लेलन। अटॉर्नी जनरल कार्यालय की उपलब्धि पर उ बतैलन आर बरिस 2026-2027 के बजट में घोषित प्रमुख कानून उपाय पर भी प्रकाश डालन। उ बोलन कि समाप्त भयल वित्तीय बरिस के दौरान 20 से जस्ती विधेयक पर के मसौदा तैयार कर गल रहल। ई में लॉ रिफॉर्म कमीशन एक्ट आ सर्टिफिकेट ऑफ करैक्टर एक्ट भी शामिल रहल जुन प्रमुख रहल। गाविन ग्लोवर ई भी बोलन कि सरकार संविधान के आधुनिकीकरण करे के निर्णय लेले बाटे। ई भी बोलन कि बहुत हाली संसद में पर पेश करल जाए होला क्रिमिनल कोड बिल में वैवाहिक बलात्कार आर महिला लोग संगे हत्या के जुन कांड होवेला ओ के कानूनी प्रावधान में शामिल करल जाए। बजट पर बहस आज दिन के यानी कि आज सांझ के 3 बजे फिनो से शुरू होई। बहस पूरा होइला के बाद कमिटी ऑफ सप्लाई के कार्य के काम शुरू होई। शागोस द्वीप समूह के संप्रभुता के मुद्दा ब्रिटेन में लगातार चर्चा के विषय बनल बाटे। ग्रेट ब्रिटिश यानी कि पॉलिटिकल एक्शन कमिटी PAC के एग्जीक्यूटिव चीफ क्लेयर बुलिवान पूर्व ब्रिटिश मंत्री एलकॉन के एगो पत्र लिखले रहल जेकर में शागोस द्वीप समूह के संप्रभुता मॉरिशस के सौंपे

के प्रस्ताव पर उनका पक्ष जाने के मांग कर गल एलकॉन हाल में ब्रिटेन के सशस्त्र बल मंत्री के पद से अपन इस्तीफा दे हवन गल 13 जून के द टेलीग्राफ में निकलल एगो लेख में एलकॉल बोलन की राष्ट्रीय सुरक्षा के सुदृढ़ बनाए खातिर ब्रिटेन के अपन शासन व्यवस्था की समीक्षा करे के पड़ी। क्लेयर बुलिवान अपन चिट्ठी में ई भी पूछलन कि शागोस द्वीप समूह के संप्रभुता कोनो हस्तांतरण से आगे का शागोस वासी लोग के जनमत संग्रह के अधिकार दे के चाही। उलोग समझौता के चलत प्रस्तावित वित्तीय प्रावधान के उपयुक्तता पर भी सवाल उठैलन जा एक संगे उ ई भी माने जाने खोजलन कि शागोस पर ब्रिटेन के संप्रभुता समाप्त करे के निर्णय का वास्तव में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा के मजबूत करी कि नहीं। बात अब सीबी के बारे में मॉरिशस के ऊर्जा मंत्री पत्रिका सियावादेन ई आरोप लगैली हवन कि आगे के सरकार के कार्यकाल में देश के पेंशन निधि आर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पेंशन कोष के कुप्रबंधन करेगा यानी के निमन से ओकर उपयोग नहीं करेगा। राष्ट्रीय सभा में काल बजट पर भयल बहस के बखत उ बोलन कि सीबी के दोनों पेंशन कोष घाटा में बाटे। उ बतैलन कि सीबी स्टाफ पेंशन फंड में 121 मिलियन मॉरिशन रुपया और सीबी मैनुअल वर्कर्स पेंशन फंड में 64 मिलियन रुपया के कमी दर्ज करेगल बाटे यानी कि पैसा कमती बाटे उ दोनों फंड में। पत्रिका सेवादेन बरिस 2026-2027 के बजट में घोषित पेंशन सुधार के बचाव करत ई भी बोलन कि प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम देश के हित में पेंशन व्यवस्था के समीक्षा के साहसी निर्णय लेली हवन। उनकर अनुसार भावी पीढ़ी खातिर पेंशन प्रणाली के वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करे खातिर ई उद्देश्य ई सुधार के लागू करे के आवश्यक है यानी कि ई उद्देश्य से ई सुधार करे के आवश्यक है। अब नर्सिंग के बारे में बताया जाए नर्सिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधि राम नौजा देख बोलन कि नर्स लोग के प्रशिक्षण खातिर एगो समर्पित कैंपस की स्थापना करे के बखत चलाल बाटे। उनका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र में भविष्य के जरूरत के पूरा करे के और प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करे खातिर ई कदम बहुत जरूरी बाटे। वो आगे ई भी बोलन कि डॉक्टर लोग के सरकारी स्वास्थ्य सेवा में बना के रखे खातिर बेहतर कार्य परिस्थिति और सुविधा उपलब्ध कराए के चाहिए। ई मांग एगो ऐसा बखत पर आलबटे जब बजट में सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था में कम करवा लोग के कमी दूर करे खातिर 2220 गो स्वास्थ्य पेशेवर के भर्ती करल जाए उ लोग के काम पर रखल जाए। सरकार ई भी घोषणा कर ले बाटे कि जोन जोन क्षेत्र में विशेषज्ञ लोग की कमी बा हुआ परी विदेशी विशेषज्ञ लोग के काम पर रखल जाए। एक संगे चिकित्सा और नर्सिंग अफसर लोग खातिर जस्ती स्पेशलाइज प्रशिक्षण यानी के विशेषीकृत प्रशिक्षण ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू करल जाए। दूसरे देश के समाचार देने बढ़े से आगे आप लोगन के याद दिला देवी लाजा कि मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर के 4 गो में से एगो पवित्र महीना मानल जाला और एकर चलत इस्लामी नववर्ष 1448 के 10वां दिन पर दुनिया भर के मुसलमान यौमे अशूरा मनावत हवन जा और ई दिन इबादत और दुआ खातिर रखल जाला। एकर बहुत बड़ा अहमियत बाटे और ई दिन महत्वपूर्ण है कहे कि ई दिन धार्मिक और ऐतिहासिक घटना घटल रहल और ई अवसर पर मुस्लिम कौम के जो आदमी हवन जा श्रद्धालु हवन जा उ लोग इबादत दुआ और धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेवे लन जा। दूसरा देश के समाचार देने बढ़ब जा वेनेजुएला के राजधानी काराकास में आल 2 गो शक्तिशाली भूकंप के चलत बचाव काम अभी जारी बाटे और हुआ परी बचाव काम के चलत 188 जना के मौत के जानकारी दर्ज कर गल बाटे जबकि 1500 से जस्ती आदमी के घाव लगल बा। काराकास आर तटीय शहर में ढहल सब इमारत के मलबा के नीचे फसल आदमी लोग के मदद पहुंचावल जाता। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार पहला 7.2 तीव्रता के भूकंप आल जेकर बाद कुछ ही सेकंड में 7.5 तीव्रता के एगो दूसर भूकंप आल बाटे। फुटबॉल के बारे में बतियाला जा फुटबॉल विश्व कप जोन रात 12 बजे जोन टीम खेलल गा ग्रुप ई में एगो अद्भुत प्रदर्शन लौकल। इक्वाडोर जर्मनी के हरैलक पूरा से यानी कि ओके बहुत ही

0: गोल दाल के हराइलग डू एक से आइवरी कोस जोन बाटे ओ क्यूरासाओ के हराइलग डू जीरो से और एक चलत जोन क्वालिफाई टीम बाटे आइवरी कोस जर्मनी आगे और आइवरी कोस पहला इक्वाडोर जोन बाटे ओ बेस्ट थर्ड यानी के जोन तीसर का सबसे बेहतरीन टीम है ओकर श्रेणी में आल बाटे यह राउंड ऑफ 16 का तीर फजीर आज 3 बजे ग्रुप एफ में नेदरलैंड चुनिजिया के हराइलक 3-1 के स्कोर से जापान और स्वीडन ड्रॉ कर लन जा और राउंड ऑफ 16 का तीर नेदरलैंड आगे फिर दूसर का स्थान पर जापान और फिर स्वीडन आल बाटे और आपकी याद दिला दिला जा कि तुर्की और यूएसए जोन बाटे ओ 2-1 के स्को कर लक याद रखिये कि ई में राउंड ऑफ 16 खाते यूएसए जोन बाटे ओ अगते से क्वालिफाई हो गल बाटे तही संगे ई भोजपुरी में समाचार समाप्त भय ध्यान से साथ दे लो का खाते धन्यवाद संगे रह अभी सुन अब जा मरनी की समाचार
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

मंडे के समाचार सुना प्रोविडेंस रोड पोस्ट दे फ्लाक में, प्रोविडेंस रोड पोस्ट दे फ्लाक में 50 परिस के श्री वसुदेव बुधू, श्री वसुदेव बुधू जिनका सुमन के नाम से बेदमी जिस जहां जाके मृत्यु होकर बैठे, इनका अर्थ ही आज 11 बजे इनका बेटा मयूर बुधू के घर पोस्ट दे फ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार खातिर मेजिन कौदमास के शमशान भूमि ले जावा जाए कमीशन टू डी 11 AM। तामिल टेम्पल रोड लाग्रमो सैंपिया में 74 बरिस के 3 करोड़ 14 बरिस के श्रीमती सारा दम्बल मुचिया पैदाश नाम मुचिया जिनकरा देवी के नाम से बेदमी जिस जहां जा के मृत्यु होकर बैठे, इनका अर्थ ही आज फजीर 9 बजे इनकर बेटा सदा सिवैन मुचिया सिवैन के घरे लाग्रमो सैंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार खातिर सैकों सौ सैपिया के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टूडी 9 AM। चतुर्गुण लेन अलिस्कालिये में 67 बरिस के 3 करोड़ 7 बरिस के श्रीमती सांताबाई कुसनिया गणेश, श्रीमती सांताबाई कुसनिया गणेश पैदाशनम कुसनिया जिनकरा संता के नाम से भी आदमी जिस जहां जाके मृत्यु होकर बैठे, इनकर अर्थी आज फजीर के 11 बजे इनकर बेटा मोहन गणेश के घर लिस्काली से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बासें कांग लिस्काली के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टूडी 11 AM। 58 बरिस के दुकरी अठारह बरिस के श्री दीपनाथ अरलोल, श्री दीपनाथ अरलोल जिनकरा शैलेश के नाम से भी आदमी जैसे जानथन जैकेट मृत्यु होकर बाटे, इनकर अर्थी आज 1 बजे दिन के मुआ फ्यूनरल पिचरिया से उठा के अंतिम संस्कार खाती यूनियन पॉक के शमशान भूमि ले जावल जाए कमीशन टी डी 1 PM। विक्टोरिया लेन रोशनों में 57 बरिस के 2 करोड़ 17 बरिस के श्री संजीव ओरी सिंकाला अपादू, श्री संजीव ओरी सिंकाला अपादू जिनकरा संजीव के नाम से भी आदमी जिस जहां जाके मृत्यु होगा बेटे, इनकर अर्थी आज 11 बजे इनकर माँ राधिका अपादू के घरे रोशनों से उठा के अंतिम संस्कार खातिर पीतों के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टूडी 11 AM। राम सुंदर लेन सुल्फिरिनो नंबर तीन वाकुआ में 53 बरिस के 2 करोड़ 13 बरिस के श्रीमती ईश्वरी जालिम पैदाश नाम अगाचियो जिनकरा गीता के नाम से भी आदमी जिस जहां जाके मृत्यु होगा बाटे, इनकर अर्थी आज दिन के 11 बजे इनकर फजीर के 11 बजे इनकर पति राजेश जालिम के घरे सुल्फिकनो नंबर 3 नवाकवा से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बैलेंस सुल्फिकनो नंबर 5 के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टूडे 11 AM। लारुकुवान क्यूपिप में 68 बरिस सके 68 ईयर्स ओल्ड के 3 करोड़ 8 बरिस के श्री पोनसामी रासन जिनकरा कुमारन के नाम से भी जिस जहां जाके मृत्यु होगल बाटी, इनकर अर्थी आज फजीर के 9 बजे इनका घर एक क्यूबिप से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बीघा के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टूडी 9 AM। ऋषि दयानंद लेन मौलाशो में 76 ईयर्स ओल्ड के 76 बरिस के 3 करोड़ 16 बरिस के श्री सुलेश गोकुलक जिनकरा सुलेश के नाम से भी जिस जहां जा जन आगे SSO अस्पताल में अटेंडेंट के काम करत हलन के मृत्यु होगल बाटे, इनकर अर्थी बाद में उठावल जाल इनकर पत्नी माला गोकुलक के घरे मौलाशो से आर अंतिम संस्कार खातिर इस दो रोज के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन ऑफ्टर वर्ड्स। रॉय रोड डीप रिवर में 93 ईयर्स ओल्ड की 93 बरिस के 4 करोड़ 13 बरिस के श्री बेवसेन अपा जिनकरा भीम अपा के नाम से भी आदमी जैसे जहां जाके मृत्यु होकर पाटे, इनकर अति आज फजीर के 10 बजे इनकर बेटा रत्नाजी अपा के घरे डीप रिवर से उठा के अंतिम संस्कार खातिर त्वाजिलो ओलिविया के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टूडी 10 AM।

0: Mayflower Street a grand pointe au piment mais Mayflower Street a grand pointe au piment mais 75 baris ke 3 kori 12 baris ke 3 kori 15 baris ke Ashimati Devyani Tilakdhari Ashimati Devyani Tilakdhari Pedasham Sigana Jinkara Devyani ke naam se bhi aadmi jaise jante hain jake mrityu ho gaye but inkar arthi aaj din ke 12 baje inkar beta Anup Tilakdhari ke ghar e grand pointe au piment se utha ke antim sanskar khatir pointe au bish ke shamshan bhumi le jaaval jaye ke mission today at noon Tagore Road 9e Mitriolme Tagore Road 9e Mitriolme 70 बरिस के 70 ईयर्स ओल्ड की 3 कोरी 10 बरिस के जनाब मंसूर अफजल ओलिया जनाब मंसूर अफजल ओलिया इंतकाल कर गल हवन इनका जनाजा आज फजीर के 10 बजे कर भाई अहमद ओलिया के घरे निव्या मिल लथियोली से उठा के दफनाए खातिर पेंदी पापाई के कब्रस्तान ले जावल जाए फ्यूनरल टुडे एट 10 एएम अकेतलीन बागामिया रोजबेल में अकेतलीन बागामिया रोजबेल में 70 बरिस की 70 ईयर्स ओल्ड की 3 कोरी 10 बरिस के श्री राजी सिंह सिबा श्री राजी सिंह सिबा जिनकरा राजेश ताइया के नाम से वेदी जस जानतन जा के मृत्यु हो गल बाटिन कर अर्थी आज दिन के 1 बजे कर भाई जयराज सिबा के घरे बागामिया रोजबेल से उठा के अंतिम संस्कार खातिर प्लान मानियों के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टू डी एट 1 पी एम मेलिशियस स्ट्रीट फॉरेस्ट साइड में मेलिशियस स्ट्रीट फॉरेस्ट साइड में 71 बरिस की 3 कोरी 11 बरिस के 71 ईयर्स ओल्ड के श्री सतीश लाल बिहारी जिनकरा सीताराम दास के नाम से भी जान थल जाके मृत्यु हो गल बाटी इनकर अर्थी आज इनकर बेटा मनवीर सिंह लाल बिहारी के घरे फॉरेस्ट साइड से उठा के बीकाना के शमशान भूमि ले जावल जाए समय के बारे में बाद में बतावल जाए क्रीमेशन ऑफ द वर्ड्स महात्मा गांधी रोड लिस्पेरेंस त्रिबुशे में महात्मा गांधी रोड लिस्पेरेंस त्रिबुशे में 80 बरिस के 4 कोरी बरिस के श्री रमेश चौहान जिनकरा पोलसन के नाम से भी आदमी जैसे जानते हैं जाके मृत्यु हो गल बाटी इनकर अर्थी आज दिन के 12 बजे इनकर घरे लिस्पेरेंस त्रिबुशे से उठा के अंतिम संस्कार खातिर हुए के शमशान भूमि ले जावल जाए के मिशन टू डी एट हाफ पास नोन एवेन्यू जॉन कैनेडी वाकवा में एवेन्यू जॉन कैनेडी वाकवा में 83 बरिस के 4 कोड़ी 3 बरिस के 83 ईयर्स ओल्ड के श्रीमती पर्वदी बेसे पैदाश्रम एनाना जिनकरा सरवती के नाम से भी अदमी जिस जाके मृत्यु होकर बाटी इनकर अर्थी आज फजीर के 11 बजे इनकर घर वाकवा से उठा के अंतिम संस्कार खातिर तोमा मेल की शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टूडे एट 11 एम नेहरू रोड पचीराफे में 72 बरिस के 3 कोड़ी 12 बरिस के 72 ईयर्स ओल्ड के श्रीमती आनंदनी दर्शन पैदाशनम कालिका जिनकरा आनंदनी के नाम से वेदी जस जाते हैं जाके मृत्यु होकर बाटी इनकर अर्थी आज दिन के 1 बजे इनकर पति श्री गिरजानंद दर्शन के घर पुचराफे से उठा के अंतिम संस्कार का तीर मोमास्काल पुचराफे के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टू डी एट 1 पी एम शोक आज दुख में डूबल इस सब परिवार के संगे हमने के दिली हमदर्दी बाटी
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

सभी को पूजा का एक बार फिर से नमस्कार। आप सभी का स्वागत है गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में, जहाँ पर सवाल हम करते हैं, प्रश्न हम करते हैं और जवाब आप देते हो। और नंबर तो वही है 4028085 पर का सौंदर्य कैथोवैंक पर, या फिर 5251700 पर आप हमें मैसेज भी भेज सकते हैं। तो आइए प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं, ध्यान से सुने। वह क्या है जो हाथ से निकल गया तो दुनिया की किसी भी ताकत उसे वापस नहीं ला सकती? वह क्या है जो हाथ से निकल गया तो दुनिया की किसी भी ताकत उसे वापस नहीं ला सकती? 4028085 पर।

0: तो चलिए लाइन पर एक श्रोता है, उनको सुनते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्ते बहन जी।
0: नमस्ते धनेश्वर जी, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आपकी वाणी से सब घर आंगन पवित्र हो गया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका स्वागत मैं करती हूँ गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में। और वैसे एक प्रश्न तो हो गया मेरा, आपके पास क्या जवाब है उसके लिए?
1: तो मेरा जवाब है समय।
0: आपका जवाब है समय, सही जवाब दिया है आपने। और ये समय ही है जो वापस नहीं आता, एक बार चला गया नहीं आता, है ना?
1: धन्यवाद बहन।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, और शुभ दिन आपको।
1: धन्यवाद।

चलिए एक और प्रश्न है आप सभी के नाम। तीन ऐसे शब्द बनाइए जो पट से समाप्त होते हैं। तीन ऐसे शब्द जो पट से समाप्त होते हैं। चार 4028585 तीन ऐसे शब्द बनाइए जो पट से समाप्त होते हैं।

0: भाई कौन ले जाएगा आज का जो पट है, इससे आप तीन शब्द बनाइए जहां पर ये समाप्त होता है पट से। तो लाइन पर एक श्रोता है, उनसे हम मिलते हैं कि उनके पास क्या जवाब है। हेलो,
1: हेलो पूजा जी, नमस्कार।
0: नमस्कार बीना जी, कैसी हैं आप? आपका हार्दिक

0: स्वागत है गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसी है? मैं तो ठीक हूँ। बहुत बरसात हो रही है, बहुत अरसे के बाद अभी इस तरह की रात्रि से बहुत बरसात चलती हो।
0: ये तो है, सुबह से
1: हाँ
0: ही बरसात है।
1: जी, बहुत है और जरूरी भी था ना। देखो, जलाशय में पानी की बहुत कमी हो गई है, तो बरसात की तो आवश्यकता है ही।
0: हाँ वो तो है जी।
1: तो बस मैं यही जवाब देना चाहती हूँ आपकी मजेदार प्रश्न का। सोचती
0: जी
1: हूँ, अभी मैं किचन ही में हूँ, रेडियो के पास हूँ, तो सोचा थोड़ा मैं भी सम्मिलित हो जाऊँ इसमें। तो मेरा जवाब है खटपट,
0: खटपट, ओके,
1: झंझट,
0: झंझट,
1: हाँ, और तीसरा है लंपट।
0: लंपट। फिर से बोलिए
1: जी,
0: आप। खटपट,
1: खटपट,
0: लंपट,
1: लंपट, झंझट।
0: झंझट, और मैं आखिरी कहूंगी शामपट। सही जवाब दिया आपने, और इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको।
1: धन्यवाद आपको, और शुभ दिन,
0: आपको भी
1: और
0: शुभ।
1: खुश रहिए।
0: बहुत बहुत
1: ओके,
0: धन्यवाद वीना जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।
0: चलिए, गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम जारी है, और करते
2: गर्मा गर्म नाश्ता।
0: हैं तीसरे सवाल की ओर, प्रश्न की ओर। वीना जी बोल रही है कि इतनी भारी वर्षा हो रही है, और क्यों ना इस गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम का जो है मजा लेते हैं। नाश्ता गरम गरम हो, ठंड का समय है, और ऊपर से ये बारिश। चलिए एक और श्रोता, एक और प्रश्न जो है आप सभी के नाम ध्यान से सुने। तीन ऐसे नदियों के नाम बताइए जो पुरुष के नाम हो। तीन ऐसे नदियों के नाम बताइए जो पुरुष के नाम हो।

0: बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और मैंने कहा पुरुष के नाम से शुरू होता है ना कि नारी से। तो ये हैं तीन ऐसे नदियों के नाम बताइए जो पुरुष के नाम से हो। आइए लाइन पर एक श्रोता है, उनको सुनते हैं। हेलो। हाँ जी नमस्ते, एक बार फिर से आपका स्वागत है वीना जी।
1: जी जी,
0: आपके पास क्या जवाब?
1: हाँ, ये बहुत मुश्किल सवाल है।
0: हाँ,
1: अक्सर हमने नदियों का नाम स्त्रियों के नाम से लगी हुई सुनी है।
0: हाँ,
1: जितने भी तीर्थ यात्रा है, जितनी भी हम पूजा आदि करते हैं, तो सभी नाम ये थोड़ा एकदम दुर्लभ है
0: जी।
1: अगर पढ़ते पढ़ते कहीं बुक में मिल जाता है तो तभी दिमाग में रहता है, नहीं तो सभी तो स्त्री के नाम से है। तो मैं बोलने का प्रयास कर रही हूँ।
0: हाँ?
1: हाँ, तो पहला नदी का नाम है जो पुरुष के नाम से, वो है पुष्कर।
0: ओके।
1: और एक है सोम नदी।
0: हाँ?
1: और तीसरा है शायद दामोदर नदी।
0: दामोदर नदी, आपने सही जवाब दिया है वीना जी, और आपको मैं फिर से बधाई कहती हूँ भाग लेने के लिए। बहुत बहुत
1: आपको भी, आपने दोबारा मुझे मौका दिया।
0: हाँ हाँ,
1: उत्तर देने के लिए मैं बहुत खुश हूँ। शुभ दिन आपको।
0: शुभ दिन आपको भी। आपको भी धन्यवाद।

आवारा मत बनिए, क्योंकि अभी एक और रिफ्रेश आप सभी के नाम है। तो चलिए, किस शब्द की अपेक्षा करने से, किस शब्द की उपेक्षा करने से, क्षमा कीजिए, हम जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। किस शब्द की उपेक्षा करने से हम जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे।

0: नाम?
1: मैं इंदिरा मेबर्ग से।
0: मेबर्ग से इंदिरा जी, आपका स्वागत है गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में। और आपके पास क्या जवाब?
1: हमारी आशाएं, हमारी उम्मीदें, हमारी भरोसा, हमारी संभव।
0: सही जवाब दिया आपने इंदिरा जी, और आपको कहेंगे बधाई हो।
1: थैंक यू। शुभ दिन।
0: शुभ दिन आपको भी।
1: बाय
0: बाय। बाय।
2: हो नजारे हंसी चांदनी हो नदी के।
0: जी हाँ, जीवन में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो सकारात्मक सोच के साथ अगर आप बढ़ेंगे तो कोई भी काम आसान हो ही जाएगा। चलिए इसी के साथ हम गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम के अंत तक आ पहुँचे हैं।
3: गर्मा गर्म नाश्ता।
0: जिन जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिए उन सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम बढ़ेंगे हमारी धरोहर कार्यक्रम की ओर, प्रस्तुति किरण जानकी जी की ओर से। और आप सभी के नाम एक भोजपुरी गीत चलाएंगे। साथ रहिए, 9 बजे आप समाचार सुन पाएंगे, समाचारों के उस पार आज की चर्चा कार्यक्रम। इसी के साथ पूजा को अनुमति दीजिए। मेरी ओर से सभी को नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और शुभ दिन आपको।
4: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
5: नमस्ते, हमारी धरोहर में तोहर स्वागत बा। आज हमने इंटरनेशनल ट्रॉपिक्स डे पर बात करब जा। अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉपिक्स डे हर 29 जून के मनावल जाला। ई अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स के मकसद है ट्रॉपिकल देश लोग के अनोखा चुनौती और अनगिनत अवसर पर ध्यान देवे के, और जन समृद्ध भंडार बा इस सब ट्रॉपिकल देश में ओकर पर जस्ती से जस्ती ध्यान देवे के। ट्रॉपिक्स पृथ्वी के वो इलाका है जन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच पावल जाला। भले ही भौगोलिक दृष्टि से और टोपोग्राफी जैसन दूसर कारण से जलवायु में इधर उधर थोड़ा फेर बदल होता, फिर भी ट्रॉपिकल देश गर्म देश हवन सा और हर दिन तापमान घटेला या फिर बढ़ेला। इक्वेटर से जस्ती भीरी देश में नमी और पानी के जस्ती संभावना है, और इक्वेटर से दूर ट्रॉपिकल देश में एकर कमती संभावना है। भले ही ट्रॉपिकल देश के समृद्धि जस्ती है पर ओकर चुनौती भी सबसे गंभीर है। ट्रॉपिकल इलाका क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन, डिफॉरेस्टेशन यानी जंगल के काटे के, लकड़ी के इस्तेमाल करेंगे, अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण और डेमोग्राफी यानी जनसंख्या में परिवर्तन इस सब के सामना करेला। और इस वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि टिकाऊ विकास खातिर चाहिए इस सब इलाका में विशेष ध्यान देवे के। जोन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स बा ओकर अनुसार 2050 तक ई सब इलाका में दुनिया भर के सबसे जस्ती आबादी रही, और 2/3 लड़का लोग हिये रहन सा। इस सब इलाका में गरीबी के सबसे ऊंचा दर रही, और यहाँ पर अंडर नरिशमेंट यानी खाए पिए के कमी के सामना जनता लोग जस्ती करी विश्व के दूसर देश के तुलना में। अब ट्रॉपिकल इलाका के गुण पर ध्यान दे जा और देखी जा काहे इस दुनिया खातिर एगो वरदान है। दुनिया के 95% मैंग्रोव जंगल ट्रॉपिक्स में ही है, और यहाँ दुनिया के मैंग्रोव के 99% के किस्म पावल जाला। भले ही ट्रॉपिकल देश के आधा आबादी पानी के कमी के सामना करेला पर हिये पर दुनिया के आधा आबादी बा। दुनिया के सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी जीव जंतु वनस्पति ट्रॉपिक्स में ही पावल जाला, पर ई बायोडायवर्सिटी सबसे जस्ती खतरा के सामना करता। जोन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 तक हासिल करे के बा, और उमे ट्रॉपिकल देश के जोन भूमिका बा वो ट्रॉपिकल जोन के महत्व पर बहुत जस्ती बा। और ई दिन दुनिया भर के जनता के ई बात पर जागरूक करे के है कि हमनी के जोन ट्रॉपिकल इलाका बा ओकर जोन मजबूती बा उका हा और उ कितना हद तक नाजुक भी बा। कार्यक्रम के ध्यान से सुनना, बहुत धन्यवाद, फिर मिलब जाले।

धुआं निकलने लगी तो तेल डालने से क्या होगा। जब असर के भूत सर से उतर गया तो अरे गुनी बुलाने से क्या होगा। जब देवता देवी आसन छोड़ दिया तो खीर पूरी चढ़ाने से क्या होगा। आ भर पेट जब भात खा लिया तो अब खुदी चुनने से क्या होगा। अरे गंदे पानी पीकर

अरे रिश्ता जोड़ने से क्या होगा, अपने घर के कुत्ता जब काट दिया तो पुलिस को बताने से क्या होगा। अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा, जब घर की चौखट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से

0: आपकी है।
1: गाविन ग्लोवर ने कहा कि सरकार ने संविधान के आधुनिकीकरण का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही संसद में पेश किए जाने वाली क्रिमिनल कोड बिल में वैवाहिक बलात्कार और महिलाओं की हत्या यानी फेमिसाइड को भी कानूनी प्रावधानों में शामिल किया जाएगा। बजट पर बहस आज दोपहर 3 बजे फिर शुरू होगी। बहस पूरी होने के बाद कमेटी ऑफ सप्लाई की कार्रवाई आरम्भ की जाएगी। और इसी सिलसिले में हम आपको याद दिला देते हैं कि 9 बजे के समाचारों के बाद आज की चर्चा कार्यक्रम में मुख्य मेहमान होंगी दूरदर्शिनी रूप सुधा बसगीत। और आज वेदिता जो है आज की चर्चा कार्यक्रम में घरेलू हिंसा विषय पर चर्चा करेंगी। और आपको बता देते हैं कि दूरदर्शिनी रूप सुधा बसगीत वकील हैं, तो इसी सिलसिले में आप ये प्रोग्राम सुन पाएंगे। खबरों को आगे बढ़ाती है। नर्सिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधि राम नौजादी का कहना है कि नर्सों के प्रशिक्षण के लिए एक समर्पित कैंपस की स्थापना अब समय के आवश्यकता बन गई है। उनके अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र में भविष्य की जरूरतों को पूरा करने और प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने के लिए ये कदम बेहद महत्वपूर्ण है। ये मांग ऐसे समय में सामने आई है जब बजट में सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए 2,220 पेशेवरों की भर्ती का प्रावधान किया गया है। मॉरिशस के ऊर्जा मंत्री पत्रिक सेवादेन ने आरोप लगाया है कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में देश की पेंशन निधियों तथा सेंट्रल एलएसटी बोर्ड के पेंशन कोषों का कुप्रबंधन किया गया। राष्ट्रसभा में कल बजट पर हुई बहस के दौरान उन्होंने कहा कि सीबी के दोनों पेंशन कोष घाटे में हैं। उन्होंने बताया कि सीबी स्टाफ पेंशन फंड में 131 मिलियन रुपये मॉरिशन रुपये और सीबी मैनुअल वर्कर्स पेंशन फंड में 64 मिलियन रुपए की कमी दर्ज की गई है। उनके अनुसार भावी पीढ़ियों के लिए पेंशन प्रणाली की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जो सुधार लाया गया है वो लागू करना आवश्यक है। और मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर के 4 सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। इस्लामी नववर्ष 1448 के 10वें दिन दुनिया भर के मुसलमान यौम अशूरा मना रहे हैं और इस अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोग इबादत, दुआ और धार्मिक कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। बात करते हैं हम फुटबॉल के बारे में। कल रात खेली गई मैचों के बारे में, ग्रुप ई में कल 12 बजे अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिला। इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 के स्कोर से हराया। आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को हराया है 2-0 के स्कोर से। और इस ग्रुप में जो क्वालिफाई हुआ है राउंड ऑफ 16 के लिए, सबसे पहले जर्मनी है, फिर आइवरी कोस्ट और फिर इक्वाडोर जो कि थर्ड बेस्ट की श्रेणी में है। 3 बजे खेली गई मैच में ग्रुप एफ में नेदरलैंड्स ने ट्यूनीजिया को हराया है 3-1 के स्कोर से। जापान और स्वीडन ने ड्रॉ किया है और राउंड 16 के लिए सबसे पहले नेदरलैंड, फिर जापान और फिर थर्ड बेस्ट जो है वो स्वीडन है। और जो सुबह खेले गए मैच रहे उसमें 6 बजे खेले गए मैच में ग्रुप डी में पैराग्वे ने ऑस्ट्रेलिया के साथ ये गेम खेला और स्कोर रहा ड्रॉ। तुर्की ने यूएसए को हराया 3-2 के स्कोर से। और राउंड 16 के लिए हम

0: याद दिला देती है कि यूएसए ऑलरेडी जो है वो पहले से ही क्वालिफाई हो चुके हैं और आज रात खेले जाने वाले मैच जो हैं वो 11 बजे सेनेगाल खेलेगा इराक के खिलाफ, फ्रांस जो है वो भी मैदान पर उतरने वाला है नॉर्वे के खिलाफ। और हम आपको याद दिला देते हैं कि फ्रांस और नॉर्वे जो हैं वो ऑलरेडी जो हैं वो पहले से ही राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेनेजुएला की राजधानी कराकास के निकट आए दो शक्तिशाली भूकंपों के बाद राहत और बचाव दल मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक कम से कम 188 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 1500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: आज की चर्चा।
1: सभी श्रोताओं को विदिता की ओर से एक बार फिर नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे आज के कार्यक्रम में जो कि आज की चर्चा। श्रोताओं, आप जानते हैं कि हर शुक्रवार को हम एक नए विषय के साथ आते हैं और आज का हमारा जो विषय है वो है घरेलू हिंसा। और हमारा ये कार्यक्रम जो है इसमें आज हम महिलाओं के ऊपर हुए जो कहते हैं ना वायलेंस, जो हिंसा है, उसके बारे में बात करेंगे। और आज की हमारे जो मेहमान हैं हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं, स्वागत करती हैं हम हमारी आज के कार्यक्रम में हमारी वकील साहिबा दूरदर्शनी रूप सुधा। सुधा जी का नमस्ते।
2: नमस्ते विदिता जी,
1: कार्यक्रम में स्वागत है आपका एक बार फिर से।
2: धन्यवाद।
1: तो आज हम घरेलू हिंसा के बारे में बात करने जा रहे हैं और जब हम घरेलू हिंसा के बारे में बात करते हैं तो हम जाहिर सी बात है कि ज़्यादातर महिलाएँ जो होती हैं वो इसका शिकार होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ बच्चे भी होते हैं। कभी कभी तो हम कहते हैं ना कि जो पुरुष हैं वो भी इसका शिकार होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो महिलाएं होती हैं वो इसमें आप देखेंगे कि ज़्यादातर उन पे ज़्यादा जुल्म होता है। तो जब हम घरेलू हिंसा के बारे में बात करते हैं तो वो किसके बारे में हम बात करते हैं?
2: आपने सही कहा, जब हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं तो कई बार ये महिलाएं के लोग सोचते हैं ओ डोमेस्टिक वायलेंस तो ये एक वुमन अब्यूज है, महिलाओं के साथ इनजस्टिस हो रहा है। लेकिन कई बार जो होता है वो पति भी होता है, पुरुष भी होता है और बच्चे भी इसमें आते हैं
1: जी।
2: हाँ, तो ये जैसे हमने कहा डोमेस्टिक तो ये घर में होता है, तो जैसे कि जो कानून इसका रिस्पॉन्सिबल है वो प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। तो इसमें इसके अंदर ये डिफाइन होता है ये डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है। कभी कभी कोई लोग सोचते हैं डोमेस्टिक वायलेंस तो सिर्फ मारना होता है, फिजिकल होता है, लेकिन नहीं, इस एक्ट के अंदर ये आपको बताता है कि इमोशनल भी होता है और साइकोलॉजिकल भी होता है, फ्रेटनिंग भी होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन होता है जो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर में आता है।
1: तो आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा और हत्या के मामले बढ़ते नज़र आ रहे हैं, और अगर हम कानून की नज़र से देखें तो ये जो हिंसा आजकल चल रहा है, जैसे आप बता रही हैं कि उनके लिए कानून रखा गया है, तो कानून क्या करता है?
2: तो डिफरेंट सिचुएशन होता है, जैसे कि अगर एक महिला उसका पति उसको मारता है एवरी डे, तो वो क्या कर सकती हैं? तो पुलिस स्टेशन जा सकती हैं और एक प्रोटेक्शन ऑर्डर कोर्ट भी जा सकते हैं। कानून ऑर्डर्स हैं जो उसको कहता है कि तुम्हें ये मारना नहीं है, ये गलत करना है। अगर कोई बच्चा है उसका सेफ्टी क्वेश्चन, जैसे कोई मुश्किल है उस बच्चे के लिए, तो उस सिचुएशन के अंदर भी वो महिला वो एप्लीकेशन कर सकती हैं। लेकिन क्या होता है, कई बार ऐसे महिलाएं वो आगे नहीं बढ़ती हैं क्योंकि बाद में कहेंगे ये मेरा पति है, मैंने उसको माफ़ कर दिया। तो डेस्पाइट आप देखेंगे कितने केसेस हैं लेटली डोमेस्टिक वायलेंस में, लेकिन बहुत ऐसे सारे केसेस जो हैं जो हमें पता ही नहीं होता है जब तक उसका उस औरत ला उसका हत्या हो जाती है। लेटली हमने सुना कितने महिलाओं के साथ की जान गई है, लेकिन कितने बार हमने सुना कि एक पत्नी ने उसके पति को जान से मारा, ये हम नहीं सुनते हैं।
1: हाँ,
2: तो इसलिए लोग सोचते हैं कि सिर्फ औरत के साथ होता है,
1: लेकिन
2: तो
1: सबसे पहले के साथ भी होता है।
2: सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक्शन लेना है, आपको आवाज़

0: खाना है, जब तक आप नहीं बताएंगे किसी को पता नहीं होगा और आपको भी नहीं पता होगा कि मुझे कौन सी मदद चाहिए, मुझे कहाँ जाना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, पुलिस के पास जाना है, कोर्ट जाना है, वकील को देखना है, तो ये सिचुएशन पर निर्भर होगा।
1: क्योंकि बहुत से बार क्या होता है कि जो पुरुष होता है वो हमेशा से लाइक अपर हैंड होता है उनका, और महिलाएं जो होती हैं वो अपना घर, जैसे शादी होती है तो अपना घर छोड़ के पति के साथ आती हैं, उसके घर पे आती हैं, और वहाँ पे भी उसको सेफ फील नहीं होता, उसको भी लगता है कि अगर यहाँ से निकल गई तो मैं कहाँ जाऊँगी, क्योंकि माता पिता के घर तो वापस नहीं जाऊँगी।
0: ये भी एक सिचुएशन होता है।
1: हाँ, ये एक ऐसा है कि हर एक लड़की शादी करने के बाद अपने पति के घर पे जाती है, वहाँ पे नई फैमिली होती है, नए रिश्ते बनते हैं, उनको कहा जाता है कि ये अब से तुम्हारा घर है, कुछ भी हो तुम्हें इस घर को नहीं छोड़ना, तुम्हें वहीं पे रहना है। तो महिलाएं जो हैं उनके दिमाग में ये बिठा दी जाती है बात कि ये घर आज से आपका है और आपको यहीं से आपकी अर्थी निकलेगी। तो जब उन पे मारपीट होता है तो वो आगे बढ़ने से डरती हैं, बोलने से डरती हैं कि भाई अगर मैंने कुछ बोल दिया तो मुझे घर से निकाल देंगे, घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी। तो ये पहला होता है। ज्यादातर जो वर्किंग लेडीज होती हैं, जो महिलाएं काम करती हैं, उनके लिए क्या है ना कि वो ओपन अप हो जाती हैं, लोगों से मिलती हैं, उनको लॉ के बारे में पता होता है, लेकिन जो घर पे रहती है उनको सिर्फ घर का काम काज, बच्चा, परिवार, उनको बस
0: यही उनकी दुनिया होती है,
1: वो दब के रह जाते हैं। उनको पता है कि भाई हम काम नहीं करते तो हमें स्लेव बनना है, हमें यहीं पे काम करना है, नौकर बन के, कभी नर्स बन के सेवा करना है, और खाना बनाना, कुक बनना है, खाना बनाना है, उनके दिमाग में ये होता है, जो कि बहुत गलत बात है। लेकिन आजकल जब हम देखते हैं तो जो हमारी आज की पीढ़ी है वो उनकी सोच अलग है, उनकी सोच अलग है। आजकल के जो नौजवान हैं उसमें हम देखेंगे कि जो लड़के हैं वो भी घर का कामकाज, क्योंकि वो हॉस्टल में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए,
0: और
1: हाँ माता पिता काम कर रहे हैं, तो बच्चे जो हैं घर पे वो सीख रहे हैं कि घर का कामकाज करना, खाना बनाना, उनको पता है इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, तो ये अलग बात है। लेकिन हम जब अभी बात करें केसेस के बारे में, ये रिलेट करते हैं उन महिलाओं के तरफ जिन्होंने सालों से सहा है। तो ऐसा होता है कि अगर उन्होंने मुंह खोला तो बस
0: और जो झापड़ मिलेगा।
1: हाँ, और जब हम बात करते हैं पुरुष की, अगर आपको कहीं दिखता है कि किसी पुरुष को मार दिया, पुरुष का इसलिए नहीं आता है ना क्योंकि हमेशा से वो पुरुष है, वो हमेशा कहते हैं अपर हैंड। हाँ, तो अगर उनको उनकी बीवी मार रही है तो अगर उन्होंने किसी बाहर वाले को बता दिया कि हाँ मैंने केस कर दिया, मेरी बीवी मुझे मारती है, तो उनके लिए एक शर्म की बात हो जाती है,
0: जैसे हम कहते हैं,
1: तो उनके लिए एक शर्म की बात हो जाती है ना, तो इसीलिए वो बताते नहीं है। लेकिन आप जब हम बात करते हैं अभी लॉ के बारे में, हम कानून के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो कानून है महिलाओं के लिए वो पुरुष के लिए भी है।
0: हाँ, क्योंकि वो यूनिसेक्स है, ये कानून है, अगर आप पुरुष हैं या पत्नी हैं, ये कानून सबके लिए बना है,
1: तो
0: ये
1: डिस्क्रिमिनेशन चाहते हैं कि नहीं आप है। उन पुरुष के लिए भी कुछ बताएं कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, जान जाने से अच्छा है कि आप जाकर अपने बारे में बता दें।
0: एग्जैक्टली,
1: है ना?
0: जैसे आपने कहा शुरुआत में कि जब लड़कियों की शादी होती है तो माता पिता कहते हैं जब तक तुम्हारा चिता नहीं उठेगा वहां से तुम नहीं आना, तो ये पुराने जमाने में होता था क्योंकि महिलाएं इंडिपेंडेंट नहीं थी फाइनेंशियली, एजुकेशन, फाइनेंस, ये सब प्रॉपर्टी नहीं था,
1: इंडिपेंडेंट हो गई है अभी।
0: लेकिन ये जो डिफरेंस है पहले ज़माने और अभी के ज़माने में, अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो आप थोड़ा से एजुकेटेड होते हैं, या अगर एजुकेशन नहीं है तो एक बिजनेस भी कर सकते हैं। तो इस बदलाव के आने के बाद आप देखेंगे स्टैटिस्टिकली हमारे देश में डिवोर्स, तलाक जो है वो बढ़ गया है, और 90% या 80% एप्लीकेशन महिलाएं करती हैं, क्योंकि ये आप देखते हैं एक चेंज है, क्योंकि मैं अब नहीं सहूंगी, क्योंकि मेरी माँ बाप ने मुझे बहुत प्यार नाजुक से पाला है, तो मैं क्यों एक आदमी को मुझे मारने, तो ये एक बदलाव आया है। लेकिन ऐसे भी महिलाएं अभी तक हैं जो आवाज़ नहीं निकालते हैं, किसी को बताते नहीं
1: है,
0: या वो मदर इन लोगों के साथ, सासू माँ के साथ अत्याचार हो रहा है, या पति के साथ अत्याचार हो रहा है। तो आपने कहा इन लोगों को ज्ञान नहीं है कि मुझे क्या करना, कानून पता नहीं। हाँ, तो इसीलिए
1: वो पता है, जब कोई कानून के बारे में नहीं जानते, अपने राइट्स के बारे में नहीं जानते, तब वो मुंह खोलने से डरते हैं। उनको पता नहीं है कि अगर आप जब तक बताएंगे नहीं

0: तक आगे वो कहते हैं हाँ मुझे वकील के पास जाना पड़ेगा, मुझे पैसे देने पड़ेंगे, मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे किसी को ढूंढना पड़ेगा, उनको पता नहीं क्या करना है। तो अगर कोई महिला, मान लीजिए कोई महिला है जो ये घरेलू हिंसा से गुजर रही है, उनके उनके साथ ये अत्याचार हो रहा है, तो आप एक वकील हैं, आप उनको क्या सलाह देंगी, क्या बोलेंगी, क्या करना है सबसे पहले?
1: अगर आपको पता नहीं है तो आजकल बहुत सारे उपाय हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, हॉटलाइंस हैं, इंटरनेट है, आप थोड़ा सा सर्च कर सकते हैं मेरे साथ ये हो रहा है।
0: यूज करना नहीं आता उनको, कुछ करना नहीं, पढ़े लिखे नहीं।
1: अगर ऐसे कोई आदमी है तो सबसे पहले ईजीएस्ट, सबसे आसान तरीका है पुलिस स्टेशन जाना।
0: जी,
1: पुलिस स्टेशन जाना और कहना कि देखो मेरा पति मुझे मार रहा है, तो मुझे एक केस करना है, डिक्लेरेशन करना है। अगर आपको वहाँ कोई मुश्किल हो रहा है पुलिस स्टेशन में, तो आपको एक वकील को हायर करना है। तो वकील आपके साथ जाएगा या जाएगी और आपको असिस्ट करेगा डिक्लेरेशन देने के लिए। और सबसे ज़रूरी बात, आपको एविडेंस रखना चाहिए। अगर आपको सीरियसली बहुत गंभीर से मारपीट हुआ है तो फोटोज़ निकालिए, एविडेंस रखिए। अगर उसने आपको फ्रेट किया मैसेज पर तो वो मैसेज सेव कीजिए, ये सब इकट्ठा कीजिए। फिर आपको, अगर आप पुलिस स्टेशन पहले जाएंगे, फिर उसके बाद एक केस होगा। तो जब हम कोर्ट जाएंगे तो एफिडेविट स्वेयर करना पड़ता है, अगर आप एक प्रोटेक्शन ऑर्डर मांगते हैं। तो सबसे पहले एक क्रिमिनल केस हो सकता है, जैसे कि असोल्ट या हरासमेंट, जो भी है। फिर साइड बाय साइड आपको एक सिविल केस भी कर सकते हैं, जैसे प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस आपके अंदर तीन ऑर्डर्स होते हैं, प्रोटेक्शन ऑर्डर, ऑक्यूपेशन ऑर्डर, टेनेंसी ऑर्डर। तो ये सब ऑर्डर क्या होता है, आपको एफिडेविट स्वे करना पड़ता है। तो आपको सब बताना होता है कि क्या हुआ, मैंने क्या किया, मैं हॉस्पिटल गई, मैंने फॉर्म सेकॉन्ट्रीट लिया। तो फिर आप कोर्ट जाएंगे, तो कई महिलाएं जो होती हैं वो ये भी नहीं कर सकती,
0: कोर्ट जाने से डरते
1: हैं, पुलिस स्टेशन जाने से डरते हैं। तो शायद आपको एक दूसरी मदद चाहिए, जैसे मे बी एक साइकोलॉजिस्ट जो आपको ये हिम्मत देगा या सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा। तब आपको जाके आप अपने लीगल हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना है तो मेरे पास आ सकते हैं, या कोई भी वकील या अटोर्नी के पास जा सकते हैं।
0: उनको लगता है कि, उनको लगता होगा शायद कि हम घर से निकलेंगे, जाएंगे, किसी ने देख लिया तो फिर पिटाई होगी।
1: हाँ, ये भी हो सकता है,
0: ये भी हो सकता है कि उनको ये भी नहीं पता कि पता नहीं हमारी आवाज़ उन तक पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी।
1: या नहीं, लेकिन अगर आप किसी के पास जाएंगे मदद के लिए तो आपको ज़रूर मदद मिलेगी, पुलिस हो या वकील हो या कोर्ट हो।
0: लेकिन पहला ऑप्शन पुलिस स्टेशन, अगर आप
1: सबसे इमीडिएट, इजी, क्विक, क्विकेस्ट, अगर आपकी जान को खतरा है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि पुलिस नहीं आ रहा है, मैं फ़ोन कर रही हूँ, सिचुएशन बहुत गंभीर हो गया है, तो आप अपने आप को उस सिचुएशन से निकालिए। अगर आपके पास बच्चे हैं तो आप अपने बच्चे को के साथ लेकर एक दूसरी जगह जा सकती हैं, अपनी माँ के साथ के पास या नेबर के पास।
0: तो
1: अगर आपके पास कोई जगह नहीं है तो आप पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। ये हम वेरी गंभीर और सीरियस सिचुएशन के बारे में बात कर रही हैं। लेकिन ऐसे भी कोई औरत हैं जो, या मर्द भी हैं जो अभी हमें सुन रही हैं, जो एवरी डे इस टॉर्चर में जी रही हैं और कुछ नहीं कर रही हैं, तो ये मैसेज आपके लिए है कि आप आवाज़ उठाइए। आप देखेंगे कितने बड़े, कितने मदद हैं लीगली, कितने लोग हैं आपको आपकी मदद करने के लिए। लेकिन आपको सबसे पहले ये अवेयरनेस लाना होगा कि ये गलत है, मुझे ये सहना नहीं है।
0: तो ये जो डोमेस्टिक वायलेंस और मर्डर के बीच संबंध को, आप इसको, इसको आप कैसे देखते हैं?
1: सबसे पहले
0: है ना, क्योंकि जब वायलेंस होता है, होता है, हो सकता है कि किसी को पता भी नहीं होता कि जो महिला है उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, अचानक से आपको लगता है कि मार दिया, कैसे मार दिया,
1: कैसे मार, क्यों मार दिया, कब से हो रहा है।
0: और कभी कभी इसको छुपाया भी नहीं, उसका पति तो बहुत अच्छा है क्योंकि महिला ने तो कभी कंप्लेन भी नहीं किया।
1: तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही। मेरे जो एक्सपीरियंस और केसेस जो मैंने किया है, 90% जो पुरुष जो अपनी पत्नी को मारते हैं वो पब्लिक प्लेस में बहुत अच्छे लोग दिखते हैं, बहुत मदद करते हैं, बहुत स्वीट लगते हैं, लेकिन घर में अपने पत्नियों को मारते हैं। तो अगर आप एक दूर से देखेंगे इस कहानी को, आपको आश्चर्य होगा कि ओ, ये अपनी पत्नी को मारता है। तो डिफरेंस क्या होता है, डोमेस्टिक वायलेंस ये शुरुआत होता है और मर्डर अंत होता है, और ये दो डिफरेंट

0: क्राइम्स होते हैं, मर्डर क्रिमिनल कोड के अंदर होता है, और डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर होता है. तो अगर किसी महिला को डोमेस्टिक वायलेंस, अगर वो जिंदा है तो वो प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर जाएगा, या एनी अदर क्रिमिनल ऑफेंस अगर उसके साथ हो रहा है. मर्डर तो वो आदमी या औरत अपनी जिंदगी से
1: हाथ धो बैठे
0: तो ऑब्वियसली ये मर्डर होगा. तो ये सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन शुरुआत होता है डोमेस्टिक वायलेंस के साथ, एक थप्पड़.
1: यानी कि जिस दिन आपको एक थप्पड़ मिला, एक मूवी आई थी,
0: हाँ,
1: थप्पड़,
0: yeah,
1: एक मूवी आई थी
0: enough.
1: जिसमें वो सब कुछ करती है, बस वो एक थप्पड़ होता है
0: जो वो तलाक लेती है,
1: जो हाँ फिर वो डिवोर्स की कुछ लोग कहते हैं कि एक थप्पड़ ही तो दिया.
0: तो यही प्रॉब्लम है, एक थप्पड़ ही तो दिया, लेकिन आपको अपने आप को इतना चाहना है कि किसी को भी अलाउ नहीं करना कि वो आपको नीचा दिखाए या हाथ उठाए. तो ये आप पर निर्भर होता है,
1: यानी कि ये जो एक थप्पड़ है वायलेंस यहीं से शुरू होता है,
0: यहीं से शुरू होता है, फिर दूसरी बार होगा, हाँ, फिर तीसरी बार होगा.
1: लेकिन यहाँ पर आपने अगर उनका एक थप्पड़ माफ कर दिया तो कल आप उनको और एक थप्पड़ माफ करेंगी, फिर exactly. उसके बाद अब आपकी जान चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा. मान लो कि अगर कोई महिला जो है शादीशुदा है, शादी हो गई, घर पर है, जिस दिन उनको उसके पति ने एक थप्पड़ मारा, तो एक थप्पड़ के लिए वो पुलिस स्टेशन तो नहीं जाएगी ना. ये सोचने वाली बात है हमारे और
0: अगर
1: आपके बीच
0: में. पुलिस स्टेशन के पास नहीं जा रहे हैं, आपको सिचुएशन देखना है. अगर आपको अपने पति को या पत्नी को माफ करना है तो आपको बैठकर बात करनी चाहिए, कम्युनिकेशन ये बहुत जरूरी है. लेकिन ये फिर से नहीं होगा अगर आपको पुलिस स्टेशन के पास नहीं जाना. ऐसे मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो एक थप्पड़ के लिए भी कोर्ट जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, पुलिस स्टेशन जाएंगे, लेकिन आप पर निर्भर होता है आपको क्या करना है. लेकिन आपको पुलिस स्टेशन के पास नहीं जाना है तो बैठकर बात करना है कि ये जो तुमने किया ये अच्छा नहीं है और मैं ये नहीं सहूंगी, अगर ये फिर से हुआ तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी. लेकिन प्रॉब्लम जो होता है, बहुत सारे लोग इस समस्या में रहते हैं सालों तक.
1: इसका मतलब ये है कि जिस दिन आपको वो एक थप्पड़ मिला उस दिन आप उनको बिठा के बात करो कि सुनो अभी बता रही हूँ, अभी मारा, माफ़ी मांग लो, मैं माफ़ कर दूंगी, लेकिन इस थप्पड़ को मैं भूलूंगी नहीं. और याद रखना कि मैं नोट कर रही हूँ सब कुछ, तुम्हारा पहला थप्पड़ तुमने मुझे मारा है, फिर अगर तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया तो मैं सीधे पुलिस स्टेशन जाऊँगी. अगर ये धमकी दे दिया तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग हैं मारते हैं किसी अपनी महिला को, अपनी बीवी को मारते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर आपने उनके दिल में ये डर बिठा दिया तो वो दूसरी बार अफोर्ड नहीं करेंगे उनको थप्पड़ मारने के लिए, मारने के लिए.
0: ये भी हो सकता है और रिवर्स भी हो सकता है, आपको दो चार थप्पड़ और भी हो सकता है. लेकिन क्या होता है, यू नो, इमोशनली ये जो पत्नी या पति है वो उस पौतने के चुंगल में होती है, के इन्फ्लुएंस में होती है.
1: ज्यादातर जो पत्नी होती है वो बड़ी इमोशनल होती है.
0: एग्जैक्टली,
1: क्योंकि महिलाएं जो हैं
0: वो आप माफ कर देंगे, ये मेरा पति है.
1: रिश्ते में महिलाएं कभी भी दिमाग इस्तेमाल नहीं करती.
0: दिल कहेंगे कि महिलाएं आपको सुन रही है,
1: दिल इस्तेमाल नहीं, दिल इस्तेमाल करती है. वो हमेशा सब कुछ दिल से करती है, वो अपना घर भी दिल दिल, यानी कि जो भी शादीशुदा महिला जब भी अपने घर का कुछ भी हो उसमें वो अपनी इमोशंस डाल देती है. इसीलिए उनको थोड़ा सा जैसे बेवकूफ बनाना आसान होता है. अगर मान लो पति ने एक थप्पड़ मार दिया, पत्नी बोला मैं जा रही हूँ पुलिस स्टेशन रिपोर्ट दिखाने, तो वो घुटनों के बल आ जाएंगे, आंसू रोने लगेंगे, हाँ तुम्हारी शादी हुई तुम भूल गए, मेरे गुस्से में था, मैंने मार दिया, ये किया,
0: दूसरी बार होगा,
1: दूसरी बार फिर होगा, है ना. तो ऐसे तो चलता रहेगा.
0: लेकिन ये आप पर निर्भर होता है अगर आपको ये सहना है. लेकिन कई लोग जो है, क्या होता है, पहले इमोशनल अब्यूज होता है, इमोशनली जैसे वो गुस्सा करेंगे, आप कुछ नहीं कहेंगे अगर वो गुस्सा कर रहे हैं. इसीलिए कानून में ये लिखा गया है, ये सिर्फ फिजिकल नहीं होता है डोमेस्टिक वायलेंस, इमोशनली भी होता है. अगर आप किसी को धमकी दे रही हैं, किसी को नहीं, स्पाउस, चाइल्ड ऑफ द स्पाउस जैसे कानून में लिखा गया है, या अनदर पर्सन जो सेम रूफ में रहते हैं, तो क्या है, जैसे कि आप जानते हुए किसी को धमकी दे रहे हैं, या किस अपने स्पाउस को कह रहे हैं मैं तुम्हें मारूंगा,

0: या मैं तुम्हें जैसे कि इंटिमिडेशन होता है, हरासमेंट होता है, स्टॉकिंग होता है, जैसे कई लोग इंटरनेट का यूज़ करके मैसेज भेजते हैं, हरास करते हैं, तो ये सब इसके अंदर आती है। तो क्यों कानून बदला? क्योंकि पहले सिर्फ फिजिकली था, तो इसके वजह क्या है कि रियलिटी में ये सब होता है, ये सब एक आदमी के सेल्फ कॉन्फिडेंस को हिला देता है। तो इसीलिए ये सब जैसे ऐसे भी एक एग्जांपल है, जैसे अगर आप किसी को अपने स्पाउस को फ्रेट कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे प्रॉपर्टी को डैमेज करूंगा या करूंगी, ये भी होता है। तो इस सब डर के वजह से कितने महिलाएं जो आगे नहीं बढ़ती हैं, क्योंकि इमोशनली उसने आपको ये इन्फ्लुएंस कर लिया है, हिप्नोटाइज कर लिया है।
1: और ये भी होता है कि हमेशा से क्या होता है कि मान लो कि पति का अफेयर चल रहा है किसी के साथ, पत्नी को पता चल गया है ना, पत्नी को अगर पता चल गया और फिर उसके बाद पति जो है बार बार धमकी देता है कि अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, ये नहीं किया तो डिवोर्स दे दूंगा। यहाँ तक मान लो सोशल मीडिया पे उसने अपने पति के साथ कोई फोटो डाल दिया तो कहता है कि 10 मिनट में फोटो निकालो वरना मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। तो ये भी कहीं ना कहीं ये इमोशनली वो उस महिला को अफेक्ट कर रहे हैं।
0: लेकिन सबसे पहले अगर आपके पति आपको कह रहा है कि अगर तुमने मेरे फोटो को नहीं निकाला मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, उस पत्नी को ही उसको डिवोर्स देना होगा, क्योंकि आप ऐसे इंसान को के पास कैसे रह सकते हैं जो आपको अपना पब्लिकली नहीं कह सकते हैं, आपको फ्रेट कर रहा है। कई महिलाएं सोचे मैं बच्चों के लिए नहीं जाऊंगी।
1: एक्चुअली यही होता है, ज़्यादातर जो महिलाएं होती हैं उनके बच्चों के लिए उनको सब कुछ सहना पड़ता है। यहाँ तक कई बार ये भी देखा गया है कि पति जो है उसका 8-8 साल उसका अफेयर चल रहा है, बाहर में है, बाहर में उनका चल रहा है, लेकिन पत्नी घर में है अपने बच्चों के लिए वो रह रही है। ये भी होता है कई बार,
0: ये बहुत ही गलत बात होता है, क्योंकि क्या होता है एक बच्चा अगर उसकी माँ या पिताजी खुश नहीं है तो ये महसूस करते हैं। मैंने कई बार देखा है अपने कई केसेस में कि ये सब बच्चे इमोशनली अफेक्ट होते हैं, फिर क्या होते हैं इन बच्चों के अच्छे रिजल्ट नहीं होता है स्कूल में, या वो खुद बुली बन जाते हैं स्कूल में, वो खुद मारपीट करते हैं या दूसरे बच्चे उनके साथ मारपीट करते हैं, ये मैंने कई बार देखा है। तो बच्चे के साथ अच्छा नहीं होता क्योंकि वो इस एनवायरमेंट में जी रहा है, वो सुबह उठ रहा है उसका पिताजी उसके माताजी को मार रहा है, ये ऐसे ही तो ये सेम चीज करेगा, सेम बिहेवियर करेगा एक दिन अगर उसने शादी कर लिया तो, ये अच्छा नहीं होता है।
1: ये जो नार्सिसिस्ट होते हैं नॉर्मली ये इनका कहना कुछ होता है करना कुछ होता है। तो जब हम बात करते हैं कि कोई महिला अगर इससे बाहर निकलना चाहती है, क्योंकि कई सारी महिलाएं हैं जो क्या करती हैं वो झुक जाती हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनका उनके परिवार पे मान लीजिए उनके परिवार के कहीं कोई धब्बा ना आ जाए कि हाँ डिवोर्स कर लिया, ये हो गया वो हो गया, तो चुप रहती है। हाँ ये सवाल है, लोग क्या कहेंगे, वो कहते हैं ना चार लोग, लेकिन ये चार लोग कौन है आज तक पता नहीं चला। तो इसीलिए महिलाओं से हम यही कहेंगे कि जब आप घरेलू हिंसा से गुजर रही हैं, जब आपको टॉर्चर किया जा रहा है, जैसा मैंने बताया ना कि आपको कि कभी कभी होता है कि महिला को पता होता है कि पति का अफेयर चल रहा है
0: और वो चुप रहती,
1: फिर भी वो चुप रहती अपने घर में रहती, तो ये यहाँ पे क्या होता है कि इमोशनली वो कहीं ना कहीं इमोशनली वो टूट रही है और ऐसे में वो कई बार होता है कि वो गलत कदम भी उठा लेती है।
0: सबसे पहले ये आपने सही कहा कि वो चुप रहती है, सहम जाती है, क्यों? क्योंकि ये सब जो एक्शंस आपके, आपने एक बार इस इंसान से बहुत प्यार किया होगा
1: जी,
0: बहुत ट्रस्ट करते हैं, तो आपको ये लगता है कि ये मेरे साथ कर रहा है तो शायद मैं ही गलत हूँ, ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को अटैक करता है। इसलिए आप किसी की, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई भी चीज़ आपकी मदद नहीं कर पाएगा, तो आपको अपने आप पर काम करना होगा। कितने जैसे हम मूवीज देखते हैं, क्यों होता है ये
1: मूवीज
0: इंस्पिरेशनल कि आप आवाज उठाएं, जैसे ये पिंक मूवी था अमिताभ बच्चन जो था, जो कहता है अगर एक महिला ने ना नहीं कहा तो ये एक सेंटेंस है अपने आप में
1: जी।
0: तो अपने आप को इस सिचुएशन को बाहर निकालिए, मदद मांगिए, अगर आपके पास बच्चे हैं जो इस हालात में जी रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए बहुत ही निगेटिव होगा। या हेल्प होगा इमोशनली।

0: या एजुकेशन आप देखेंगे कि ये बच्चा स्कूल में ठीक काम नहीं कर रहा है, तो क्यों रहना है इस एनवायरनमेंट में, इस हिंसा के सिचुएशन घर में? क्योंकि आपका घर क्या है? आप एक दिन भर काम करके एक आपकी सेफ जगह है, लेकिन अगर ये आपके सेफ जगह नहीं है तो आपको वहाँ से निकलना है, आपको लेकर और आपके बच्चे को लेकर.
1: और ये भी है ना कि कभी कभी क्या होता है कि मर्डर जो है वो प्लान भी होता है कभी कभी. अगर आपको लगता है कि महिलाएं जो हैं कभी कभी देखते हैं कि वो सुसाइड कर लेती हैं, है ना, अभी तो हम बात कर रहे हैं कि जो घरेलू हिंसा होते हैं, कभी कभी पत्नी को मार दिया जाता है, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि इतना सब कुछ होने के बाद जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो महिलाएं सुसाइड कर लेती हैं. लेकिन कहीं देखो तो वो जानबूझ कर अपना जान नहीं देती हैं. ये जो उनको फोर्स किया जाता है कि अब उनके लिए कुछ नहीं, उनको इतना उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिराया जाता है, उनके पास आगे कोई रास्ता नहीं होता, फिर वो क्या करती हैं, वो खुद की जान ले लेती हैं. लेकिन अगर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये भी एक मर्डर होता है.
0: नहीं, ये मर्डर नहीं होता है, एक फोर्स सुसाइड होता है. इंडिया में एक कानून है सुसाइड के लिए, मॉरिशस में ये कानून नहीं है. लेकिन जैसे हमने एक एमिशन में ये बात किया था कि ये मर्डर नहीं है, ये डोमेस्टिक वायलेंस. अगर आपने सुसाइड किया, अगर आपके पास एविडेंस है, केस पर निर्भर होगा, लेकिन सबसे पहले आपको अपने आप की मदद करनी होगी. जिंदगी में आपको बहुत सारी मुश्किलें होगी, कोई भी एज हो या कोई भी फेज हो, ऐसा नहीं होगा कि परफेक्ट लाइफ होता है, लेकिन आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा.
1: हाँ, लेकिन ये तब होता है ना जब उनको कानून के बारे में पता चले, कानून उनके लिए क्या कर रहा है, उनकी सुरक्षा के लिए क्या क्या क्या इंतज़ाम किया गया है. महिला तभी जाकर सुसाइड करती हैं, तभी अपनी जान देती हैं, जब उनको लगता है कि अब बर्दाश्त से बाहर है, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है. लेकिन उनको बताना जरूरी है. अभी कितनी सारी महिलाएं हैं जो इस समय हमारे इस कार्यक्रम को सुन रही होंगी, हो सकता है कि वो घरेलू हिंसा से गुजर रही हैं और उनको लगता है कि भाई अब हम जिंदगी से उब गए हैं, अब हमें जीना ही नहीं है क्योंकि अब बहुत हो गया. बहुत नहीं हुआ है, आपके पास अभी भी रास्ता है. अगर आपको लगता है कि घर में आपको इज्जत नहीं दी जा रही है, आपको मारा पीटा जा रहा है, आपको दर्जा नहीं दिया जा रहा है पत्नी का, अगर आप काम करती हैं, आपके जितने भी पैसे हैं आपका पति वो आपसे छीन लेता है, क्योंकि किसी का हक नहीं होता कि आपकी कमाई पे वो आपके पैसे ले. क्योंकि बहुत बारी होता है जब पति पत्नी का जॉइंट अकाउंट होता है तो पति क्या करता है, पत्नी का पैसा ले लेता, कहता है हाँ ये किया वो किया वो किया, सारे पैसे खर्चे कर देते हैं, लोन लेकर किसी और को देगा, फिर उसके साथ पैसे लेगा, तो बहुत कुछ होता है ऐसे. पत्नी को लगता है पति ने लोन लिया है तो वो कंट्रीब्यूट कर रही है, जबकि पति क्या करता है, वो पैसा कहीं और लगा रहा है, अलग अकाउंट में उसके अलग से पैसे जा रहे हैं, वो अलग अलग चीजें कर रहा है जो कि आपको नहीं पता. एक रिश्ते में जहाँ पर पति पत्नी हो तो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए. मेरे पास ये बैंक अकाउंट है, मेरे पास इतना पैसा है, तुम्हारे पास ये है तो इतना पैसा है. अगर नहीं है तो नहीं, अगर दोनों एक दूसरों के बारे में नहीं. लेकिन कभी कभी पैसों के चलते भी महिलाओं का खून हो जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है पैसे को लेकर, है ना. तो ऐसे में
0: जैसे ड्रग्स होते हैं आजकल, तो बहुत सारे लोग इसके इन्फ्लुएंस में आकर घर के सारी चीज़ें बेच देते हैं पैसे के लिए.
1: जी,
0: तो ये भी ये एक दूसरा सोसाइटल प्रॉब्लम है.
1: तो जब एक महिला बार बार डोमेस्टिक वायलेंस जो है ना, यानी कि जो हिंसा का शिकार होती है, तो कानून जो है उनकी सुरक्षा के लिए, अभी उन्होंने जैसे आपने बताया कि आप पुलिस स्टेशन जा सकते हो, किसी वकील से मिल सकते हो, लेकिन मान लिया जाए एक महिला है, अभी उनके पति ने उनको मारा, ठीक है, तो वो निकलकर पुलिस स्टेशन जाती है, तो वहाँ पे जो क्या कहते हैं, वहाँ पे जो फॉलोअप होता है, मान लो पुलिस स्टेशन गए, शिकायत करती, तो पुलिस वाले घर पे जाते हैं, पति से मिलते
0: तो
1: हैं,
0: पुलिस वाले क्या कहते हैं, वो पति को ढूंढेंगे, फिर उसको कहेंगे आपके खिलाफ एक डिक्लारेशन है, तो आपको आपके डिफेंस में क्या कहना है, फिर पुलिस देखेंगे अगर इसके पास 10 सारे केसेस हैं प्रीवियसली, तो ये डिफरेंट सिचुएशन हो सकता है, तो उसको जेल भी हो सकता है, उसको बेल पर निकालना पड़ेगा, लेकिन डिपेंडिंग अगर उसके पास प्रीवियस कन्विक्शंस हैं या नहीं, तो फिर क्या होता है, डिक्लारेशन

0: के बाद कहाँ जाएगा, वापस घर पे जाएगा, पत्नी उसको देखेगा हाँ, और वो और गुस्सा हो जाएगा,
1: एक ही घर में रह रहे
0: हैं। तो ये क्रिमिनल केस होता है। सिविल केस जो होता है वो आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर, क्या होता है वो प्रोटेक्शन ऑर्डर, कि आपको अपने पत्नी को मारना नहीं है, आपको उसके साथ दूर रहना है, ये सब कंडीशंस हो सकते हैं अटैच ऑर्डर के पास। अगर वो काम करती हैं या विनर्स या ट्रिबेका या बागातेल, आपको वहाँ नहीं जाना होगा, 50 मीटर्स उसके पास दूर रहना होगा। तो ये सब कोर्ट कहता है, आपके पास पेपर भी होता है, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा है कई बार कितने महिलाएं जिसकी जिनकी हत्या हुई है उनके पास प्रोटेक्शन ऑर्डर था। प्रोटेक्शन ऑर्डर एक कागज है, एक जज या मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया, तो आपको फिर सोचना है कि आप इस आदमी के साथ रहना है, अगर फिर भी वो आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं मेरे पास एक केस ऐसा था, एक महिला जो उसके पति पीने के बाद घर में सब कुछ मारपीट करता था और उसको पीटती थी, तो वो भाग गई घर से। फिर जैसे आपने कहा, अगर आप मुश्किल में हैं तो आपके पास आंसर्स आएंगे, अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके पास आंसर्स आएंगे, क्योंकि वो महिला मुझे देखने के लिए आई थी, मैंने उसको डिफेंड किया, फिर वो दूसरे घर पे रह रही थी अनोनिमसली, पति को पता नहीं था। ये बहुत एक्सट्रीम केसेस होते हैं,
1: क्योंकि पति मार उसको मारना ही था।
0: हाँ, वो उसको आपका कोई भी कानून डालेंगे, कितने भी सजा डालेंगे, वो रोज पीता है, उसको कानून के कुछ नहीं लेना देना है। अगर एक दिन होता है जैसे कि अगर उसको उसने अपनी पत्नी को हत्या कर लिया, तो वो ये सब कानून के बारे नहीं सोचेगा, क्योंकि क्या होता है, ये पैशनेट क्राइम्स होते हैं। जैसे आप देखेंगे किसी ने किसी को 20 बार
1: चाकू
0: से मारा, तो ये एक बार ही ख़त्म हो गया था, तो क्यों 20 बार होता है, क्योंकि उनके पास भी एक मेंटल या इमोशनल इशू होता है जो उनके काबू में नहीं होता है। तो फिर उसके बाद जब पुलिस आएंगे, जेल जाएंगे, तब वो ओ मैंने ये क्या कह दिया, तो ये बहुत देर हो जाती है। जैसे मैंने कहा, एक पैशनेट क्राइम होता है, जैसे भी आप शुरुआत में ही अपने जितने भी रेड फ्लैग्स देखे हैं, तो प्लीज़ उन पर एक्शन लीजिए, उन पर सोचिए कि उसके इसके बाद अगर मैंने इस इंसान के साथ शादी किया, मेरे कितने डिवोर्स क्लाइंट होते हैं, जब मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ तो वो पहले मारता था, पहले वो सिर्फ गुस्सा करता था, फिर एक बार एक थप्पड़ मारा, तो ये एक बार हुआ था, शादी के बाद ये और वर्स हो जाता है।
1: यानी कि शादी से पहले ही अगर आपको थप्पड़ मिलने लगे, आपको जलील किया जाने लगे, अगर आप को जैसे कहते हैं ना कभी कभी
0: इंटिमिडेटेड होते हैं या
1: लोगों के सामने बेइज्जती कर देते हैं आपकी,
0: या आपका बॉयफ्रेंड आपसे कह रहा है या आपका फियांसे आपसे कह रहा है मेरा फोटो सोशल मीडिया पर मत डालो,
1: ये
0: सब रेड फ्लैग्स होते हैं। क्यों, अगर आप एक इंसान के साथ सच्चाई में जा रहे हैं रिश्ते में, तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो आप सोचिए, अगर आप एक महिला हैं या एक पुरुष हैं, ये आप दोनों पर लागू होता है। आपको अगर ये कोई भी बिहेवियर हो रहा है जो आपके आप जानेंगे कि ये गलत है, एक फ्रेंड एक दोस्त के पास जाइए, अपने माता पिताजी से बात कीजिए, फ्रेंड के पास जाइए, किसी ना किसी को आपको मदद मिलेगी, लेकिन आपको कानूनी मदद भी लेनी चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे कि मैंने अपने आप के लिए खड़ा किया। हम रोज़ फ्रेंड्स के लिए बोलते हैं, नेबर्स के लिए मदद करते हैं, लेकिन अपने आप को आप हमेशा प्रायोरिटी में रखिए और हिचकिचाइए नहीं मदद मांगने के लिए।
1: तो जब हम बात कर ही रहे हैं अभी महिलाओं के बारे में, तो आपके पास पुरुष के लिए भी केसेस आए होंगे?
0: हाँ,
1: कौन क्या कैसे, होता कैसे,
0: है जैसे
1: कैसे,
0: आपने कहा था शुरुआत में कि पुरुष क्या होता है, हमारे जो सोसाइटी है मॉरिशस में, पुरुष जब हम कहेंगे तो पुरुष स्ट्रांग होता है,
1: कहते ना बी अ मैन,
0: या बी अ मैन, पुरुष इमोशनल नहीं होता है, पुरुष रोता नहीं है, तो ये सब जो होता है, बड़े होकर एक आदमी बन गए हैं, अगर आप अभी आपके पत्नी आपको मार रही है तो आप क्या करेंगे, दोस्त से कहेंगे वो आपको पर हंसेंगे, पुलिस स्टेशन जाएंगे कहते हैं ओ मैं ये यहाँ पर काम करता हूँ, मैं मैनेजर हूँ या सीईओ हूँ, मैं कैसे कहूँगी, मैं कैसे कहूँगा कि मेरे पत्नी मुझे मार रहा है। तो ये एक टाबू सब्जेक्ट

0: जैसे हैं, लेकिन आपको इसके बारे में सोचना ही नहीं है। आपको सोचना है कि मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ अपनी ज़िंदगी में, मेरे माँ बाप ने कितनी सैक्रिफाइस किया है, मैंने कितनी सैक्रिफाइस किया है, तो क्यों एक एक आदमी या एक पर्सन के लिए ये सब बर्बाद करना। नहीं, आपको सबसे पहले अपने आप के बारे में सोचना चाहिए, फिर अपने पिताजी माताजी के बारे में सोचना चाहिए, फिर लीगली आप अपने आप के लिए फाइट कर रहे हैं। जो ऐसा एक क्लाइंट था मेरा, जो उसकी पत्नी ये जो प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का मिसयूज़ करती थी, तो फॉल्स एलिगेशन कि मेरे पति ने मुझे मारा,
1: हाँ,
0: या मुझ पर चिल्लाया, जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, सिर्फ फिजिकल नहीं होता है। तो फिर केस डाला, फिर पहली बार उसने वकील नहीं लिया था, तो प्रोटेक्शन ऑर्डर मिल गया 6 महीने। फिर वो क्या करती हैं, 6 महीने कंप्लीट होने से पहले ऑन द 5th month शी विल लॉज अ ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर, कि आपने कहा था ये मुझे मार नहीं सकता, ये उसने मुझे मारा। फिर दूसरा केस होता है, फिर तीसरा केस होता है, फिर उसको अपने जैसे जहाँ वो काम करता था वहाँ पर तुम बहुत छुट्टी ले रहे हो, सिर्फ कोर्ट जा रहे हो। तो मैंने उसको डिफेंड किया क्योंकि उस औरत के पास कोई एविडेंस नहीं था। आपको कोर्ट पे जाकर आपको बताना है जितने आपने डाला अपने एफिडेविट में, वो सेम टू सेम कोर्ट में आपको बोलना चाहिए। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आप भी सुनिए, क्योंकि ये भी एक ऑफेंस होता है। वो आपके जो अदर स्पाउस हैं वो आप पर केस कर सकता
1: तो
0: है, मजिस्ट्रेट आप पर चिल्ला सकता है कि आपने क्यों ये झूठा केस लगाया।
1: तो जो लोग झूठा केस करते हैं फिर उनको सजा मिलती है।
0: आपको एक केस करना होगा, एक डिक्लेरेशन तो करना होगा, तब उसके बाद कानूनी।
1: उस पति ने किया अपने पत्नी पर?
0: नहीं, हम केस जीत गए।
1: हाँ।
0: तो फिर जैसे मैंने कहा था, प्रोटेक्शन ऑर्डर होता है, ऑक्यूपेशन ऑर्डर होता है। तो ऑक्यूपेशन ऑर्डर क्या होता है, मैं वो एप्लीकेंट जो होता है मजिस्ट्रेट से पूछेगा कि इसको इस घर से निकालिए। तो अगर आपका घर है लेकिन आप अपने पत्नी को मार रही हैं, तो कोर्ट कहेगा तो आप इस घर को छोड़कर चले जाएं, सिर्फ पत्नी और बच्चे रहेंगे। तो ये भी एक ऑर्डर होता है, और टेनेंसी ऑर्डर भी होता है। टेनेंसी ऑर्डर क्या होता है, अगर आपके पास घर नहीं है तो आपको एक घर रेंट, यू हैव टू पे द रेंट फॉर योर वाइफ अगर आप उसको मार रही हैं, तो ये भी एक ऑर्डर होता है प्रोटेक्शन ऑर्डर के अंडर।
1: चलिए, तो अगर किसी महिला को मान लिया जाए, उनको लगे कि उनको उनकी जान का खतरा है, तो वो क्या, उनका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? मान लो उनका पति मारता है उसको, और उसने पुलिस में कंप्लेन कर दिया, पुलिस वाले ने बात की कि पत्नी ने आपके खिलाफ कंप्लेन किया है, तो उनको ये प्रोटेक्शन ऑर्डर मिलता है।
0: हाँ।
1: उसके खिलाफ भी अगर, उसके अलावा भी अगर पत्नी को लगता है कि अभी मेरी जान को खतरा है, क्योंकि
0: तो वो ऑक्यूपेशन ऑर्डर कर सकती है। ऑक्यूपेशन ऑर्डर क्या होता है, वो जो मारता है उसको घर छोड़कर जाना होगा। मारता है
1: आपने
0: या मारती है, कैन बी एनीवन।
1: तो जो मारता है उसको घर छोड़ के जाना पड़ता
0: exactly.
1: है। फिर महिला और अगर उसके पीछे, अभी जैसे बताया ना कि उसके पीछे पीछे मान लो उसको थ्रेटन कर रहा है कि तुझे मार दूंगा, भले
0: तो ये आप पुलिस स्टेशन के पास जा सकते हैं, पुलिस के पास, और एक डिक्लेरेशन दे सकते हैं, फिर पुलिस उनको वार्न करेंगे। लेकिन पुलिस के भी एक सीमित होती है, वो हर आदमी को के पीछे नहीं जा सकता है। जैसे एक बार किया कि आपके पास एक कंप्लेंट आया है, आपको या उसको जेल में डालेंगे या डिक्लेरेशन लेंगे, लेकिन उसके बाद पुलिस वाले उसको सर्वेलेंस नहीं कर सकते हैं ना। तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा, कि जैसे वो आप दूसरे घर में जा सकती हैं या ऑक्यूपेशन ऑर्डर ले सकती हैं। अगर आप वो आपको मैसेजेस में फ्रेट कर रहा है, तो ये एक ब्रीच ऑफ इक्ता होता है, ये भी आप पुलिस के पास जा सकते हैं। या सोशल मीडिया जैसे देखते हैं बहुत सारे लोग, उसका मिसयूज होता है। तो ये सब आपको एविडेंस रखना होगा, जब आप कोर्ट में जाएंगे या पुलिस स्टेशन में जाएंगे आपके पास एविडेंस होगा।
1: ओके, अभी तो हम बात कर रहे हैं कि पति पत्नी के बारे में, कभी कभी ये भी होता है कि जो इन लॉज होते हैं वो भी बहू पे जुर्म करते हैं, है ना। हो सकता है कि उन बड़े स्ट्रिक्ट होना, जैसे कि मान लो कोई सुबह काम करने जा रहा है, फिर उसके बाद शाम को काम पे आ रहा है, तो उनको जैसे कि सब कुछ उसी को करना पड़ता है, जैसे कपड़े धोना, खाना बनाना, कहीं

0: कहीं ये भी, क्योंकि वो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे सो रहा है ना, तो उसको काम भी करना है, बाहर घर का काम भी करना है, और उसको गालियाँ भी पड़ती होगी, तो ऐसे में वो क्या करे? मान लिया जाए पति कुछ नहीं बोल रहा है
1: सासुमा के खिलाफ,
0: हाँ तो ये भी होता है, कई ऐसे केसेस आए हैं आपके पास?
1: सबसे पहले ये जो आपने एग्जाम्पल दिया,

0: फेस कर सकती हैं, लेकिन वो प्रोटेक्शन ऑर्डर के अंदर नहीं होगा. लेकिन अगर एक वो सेम घर में रहते हैं, एक बच्चे जैसे मदर इन लॉ मारते भी हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, तो आप इसके अंदर एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन वो क्रिमिनल केस होगा, जैसे कि हरासमेंट हो सकता है. लेकिन क्या होगा, आपको इस घर में रहना होगा ना, आपने पुलिस केस किया, फिर आप सासुमा के घर में रहेंगे, तो क्या होता है, ये और वर्स हो जाता है. सबसे बेस्ट एडवाइस होगा कि आप सासुमा के साथ ना रहे, क्योंकि अगर आपके पास वो हिंसा कर रही है ना, हरासमेंट हो रहा है. लेकिन अगर आपको रहना है, अगर आपको पुलिस केस करना है, तो आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना होगा.
1: बापरे. चलो ठीक है. और
0: लेकिन अगर एक कोर्ट ऑर्डर देने से पहले ये बहुत सारे क्राइटेरिया होता है, जैसे मेरे पास है, वो देखेंगे अगर कोई बच्चा के साथ जुल्म हो रहा है या लाइकली टू हैपन. अगर आपने एक फ्रेट किया कि मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा या एक झापर मारूंगा, तो ये सब कोर्ट देखेंगे. तो कोर्ट कैसे देखेंगे, आपको एविडेंस लाना होगा ना, मैसेज, टेक्स्ट मैसेज.
1: लेकिन बच्चे भी तो ऐसे हैं ना, कि बच्चे अगर बच्चे को अगर आपने डरा धमका के बड़ा किया है, और किसी दिन अगर आपने बच्चे को मार दिया, बच्चा तो डर जाएगा. फिर बच्चा जब बोलेगा अगर तुम पुलिस के पास गए तो सोच लो तुम्हें इसी घर में रहना है.
0: हाँ, तो लेकिन अगर आप बच्चा वो डिक्लारेशन नहीं देगा, आपको देना होगा. अगर आप एक माँ हैं या पिताजी हैं, अगर आपके बच्चे के साथ ये हो रहा है, तो बहुत सारे ऐसे एसोसिएशन हैं, ऑथोरिटीज़ हैं मॉरिशस में, जैसे CDU, चाइल्ड डेवलपमेंट यूनिट, फैमिली प्रोटेक्शन यूनिट, आप इनके पास भी जा सकते हैं अगर आपको पुलिस स्टेशन नहीं जाना है. तो क्योंकि उनके पास एक ड्यूटी है आपको सुनने के लिए, आपके लिए एप्लीकेशन भी कर सकते हैं. तो अगर बच्चा है, चाहे अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, तो ये सब आप कर सकते हैं.
1: यानी कि महिलाओं के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बस उनको पता नहीं कि उनको कहाँ जाना है.
0: वकील के पास जाइए, फैमिली प्रोटेक्शन के पास जाइए, CDU के पास जाइए, एटलीस्ट आपको पता होगा कि मुझे क्या करना है. अगर आप इस मिशन को सुन रहे हैं, तो आपको पता हो गया कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए.
1: अगर आपने अभी कदम नहीं उठाया, तो बाद में बहुत देर भी हो सकती है, आप अपनी जान से भी जा सकते हैं. और ये भी है ना कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं आजकल, वो अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये भी एक प्रॉब्लम है. जब पत्नी अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है, मान लो 20 साल की शादी है, पति पत्नी साथ में है, पत्नी जो है उसको नौकरी में उसका ओहदा बढ़ गया है,
0: होता है कई बार.
1: हाँ, ये भी होता है कि इसके चलते पति जो है अपने आप को छोटा फील करने लगता है, फिर घर में झगड़े होने लगते हैं, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से हिंसा शुरू हो जाती है, गाली गलौज होना शुरू हो जाता है, मारना पीटना हो जाता है, क्योंकि उसको बताना है कि तुम हमेशा मेरे
0: औरत हो, तुम मेरे नीचे हो. तो ऐसे भी केसेस होते हैं, जैसे कि अगर महिलाएं एक CEO है या डायरेक्टर है या मैनेजर है, तो वो क्या कहती है, बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाती है, लेकिन घर में मारपीट हो रही है, और वो केसेस नहीं करती है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे.
1: एग्जैक्टली, बात यही
0: आती है. लेकिन ये बहुत ही गलत बात होती है. आपके पास सिर्फ एक ही जिंदगी है. अगर आप अपने आप को नहीं चाहेंगे, अपने आप पर भरोसा नहीं करेंगे, तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा. यू नो, कानून भी नहीं, वकील भी नहीं, पुलिस भी नहीं.
1: आपको अपने लिए कदम उठाना चाहिए.
0: एग्जैक्टली.
1: और जब हम एक बार फिर, हमारी जो बहनें सुन रही हैं हमें, और हमारे भाई
0: और
1: भी जो सुन
0: भी
1: रहे हैं, जो माता पिता हैं, अपने बच्चों को आपको यही सिखाना है कि जब शादी करो, अगर पति ने थप्पड़ मारा, तो फिर चुप मत रहना, बताना कि पति ने थप्पड़ मारा, और आपको बिठा के अपने, कभी कभी होता है ना, माता पिता उसमें शामिल नहीं होना चाहते, तो हमें लगता है कि अगर कभी किसी पति ने अपने पत्नी को थप्पड़ मारा, तो उनको बिठाकर लड़की के जो माता पिता हैं,
0: बैठकर बात करनी
1: देखो,
0: चाहिए.
1: अभी थप्पड़ मारा
0: और हम ये नहीं सहेंगे.
1: हाँ, हो सकता है आज आपने एक थप्पड़ मारा, कल दो मार सकते हो, किसी दिन मेरी बच्ची की जान भी ले सकते हो. इसीलिए हम अभी आपको बता रहे हैं कि एक बार मार दिया, ठीक है, हम माफ़ कर रहे हैं, लेकिन अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ, तो इसका अंजाम पुलिस के पास
0: जाएंगे। हाँ,
1: अगर ये बातें हो गई, मुझे तो लगता है शादी से पहले ही अगर आपने लड़के को बता दिया या लड़की को बता दिया तो वो कुछ भी करने से पहले डरेंगे।
0: सबसे जरूरी यही है।
1: आपको लगता है
0: आजकल के जो कपल्स हैं वो बात नहीं करते हैं।

0: काउंसलिंग नहीं होती है ना,
1: काउंसलिंग नहीं होती है, आप उसको पता नहीं शादी क्या होती है. शादी कॉम्प्रोमाइज होता है, जैसे कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है. लेकिन आपको सारे रूल्स, आपको जैसे मारपीट पसंद नहीं है, चीटिंग पसंद नहीं है, आपको कहना चाहिए मुझे ये सब पसंद नहीं है, अगर तुम ऐसे इंसान हो तो हम आगे जा सकते हैं. कई बार लोग झूठ भी बोलते हैं, लेकिन आपके जो गट फीलिंग होगा, आप जैसे देख रहे हैं वो कैसे बिहेव कर रहा है या कर रही है, आपको यू नो थिंक अगर मुझे ये शादी करनी है या नहीं करनी है.
0: ये भी होता है ना कि कभी कभी मान लो कोई खूबसूरत लड़की है, तो लड़का को लड़की चाहिए,
1: हाँ,
0: तो उसका बैकग्राउंड चेक नहीं करते. और कभी कभी लड़की अगर किसी लड़के को देख लिया, हाँ, तो लड़के का बैकग्राउंड चेक नहीं करते कि
1: कभी
0: कैसा
1: कभी बैकग्राउंड भी चेक करते हैं. जैसे मैंने कहा, कहीं भी कितने भी जो डोमेस्टिक वायलेंस केसेस होते हैं, वो पुरुष बाहर में बहुत सबसे स्वीटेस्ट पर्सन होगा. ये एक साइकोलॉजिकल या चाइल्डहुड ट्रोमा जैसे भी कहेंगे उसके अंदर है. सिर्फ उसके पत्नी या उसके पति को पता होगा कि वो कैसे इंसान है. जब तक आप किसी के साथ नहीं रहेंगे, आपको पता नहीं होगा.
0: वो कहते हैं ना कि कैसे है, वो ना कहते हैं ना कि जूते में कील कहाँ चुभ रहा है, पहनने वाले को पता चलेगा.
1: आपको पता नहीं होगा, लेकिन बाहर से जूता बहुत
0: सुंदर है, महंगा है, लेकिन उनको पता नहीं चलेगा. जैसे हम कहते हैं ना, आजकल की जो शादियां होती हैं, शादी जब हम कहते हैं तो शादी होती है डिजाइनर लहंगा,
1: डेस्टिनेशन
0: वेडिंग, डेकोरेशन कैसा होगा, खाने में क्या होगा,
1: कितना बड़ा होगा,
0: कौन सा मेकअप आर्टिस्ट आएगा मेकअप करने. उनको लगते हैं शादी ये है, उनको नहीं पता कि शादी क्या होता है. तो शादी से पहले अगर काउंसलिंग कर लें, बैठ के बात कर लें, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा. और स्पेशली ये भी है कि अगर कोई डिवोर्स्ड, यानी कि किसी का डिवोर्स हो गया है, तो आपको पहले जानना चाहिए कि डिवोर्स क्यों हुआ. क्योंकि कभी कभी महिलाएं क्या होती हैं कि उनको लगता है कि हाँ, लड़के ने बोला कि हाँ मेरी पत्नी तो ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने छोड़ दिया, अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी कर रहा हूँ, तो उसी में घुस जाती है. और वो करेगा भी, फूल लेके जाएगा, तोहफे लेके जाएगा, पटाएगा, शादी करेगा, जबकि उसको पता नहीं है कि लड़की के पास इतना इतना जमीन है, इतना जायदाद है.
1: ये भी होता है,
0: ये भी होता है. लड़की भले खूबसूरत ना हो, लड़की से भले प्यार ना हो, लेकिन लड़की के पास पैसा हो तो वो जो होते हैं वो किसी को छोड़कर दूसरे के पास जाते हैं. लेकिन असली गेम शुरू होता है शादी के बाद. शादी के बाद पता चलता है तो बहुत देर हो जाती है. इसीलिए शादी करो, सोच समझ के करो, किसके साथ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो. और शादी करने के लिए प्यार है तो ठीक है, और सिंसेरिटी है तो ठीक है, वरना पहले चेक तो कर लो, पहले बात तो कर लो. कभी कभी ये भी होता है ना, लड़कियां जब शादी करती हैं तो पूछती नहीं है पत्नी से, आपने उनको क्यों छोड़ा, आपने डिवोर्स क्यों लिया.
1: और जब से इम्पोर्टेंट, नो, डोंट एक्सेप्ट एनी डोमेस्टिक वायलेंस.
0: एग्जैक्टली,
1: ना कहना सीखिए. क्योंकि आपका शरीर एक मंदिर होता है, जैसे हम कहते हैं, तो आपको उसको प्रोटेक्ट करना होगा. अपने आप को, यू नो, अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो अपने बच्चे को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे.
0: बिल्कुल बिल्कुल. तो खुद को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है. और अभी हमारा जो कार्यक्रम है, आज की चर्चा, यहाँ पर हमारे पास तो भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन फिर भी इस कार्यक्रम में हमारी जो महिलाएं, उनके लिए मेन था अपने हक के बारे में जानना, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में जानना, शुरुआत कैसे होती है, आपको क्या करना है. मुझे लगता है ये सारी चीज़ें अब क्लियर हैं. तो हम अपनी आज की हमारी जो मेहमान हैं, वकील साहिबा, दूरदर्शनी रूप सदा बस्कीर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि
1: धन्यवाद मुझे निमंत्रित करने के लिए.
0: साथ आपने हमारे इस प्रोग्राम में सबको समझाया. हमारी महिलाएं जो हैं वो शायद धन्यवाद कहना चाहेंगी, तो उन सब की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद. तो प्रिय श्रोताओं, हमारा जो आज का कार्यक्रम है, आज की चर्चा यहाँ पर समाप्त होता है. अगले हफ्ते एक और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे. अभी के लिए आज्ञा दीजिए, शुभ दिन.

0: चिरी सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे अर्शिता नमस्कार।
1: नमस्कार नीलवानी, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी का स्वागत किया जाता है। मॉरिशस के अटॉर्नी जनरल गेविन ग्लोवर ने कल बजट पर जारी बहस में भाग लेते हुए अटॉर्नी जनरल कार्यालय की उपलब्धियों और वर्ष 2026-2027 के बजट में घोषित प्रमुख कानूनी उपायों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष के दौरान 20 से अधिक विधेयकों का मसौदा तय किया गया है। इनमें लॉ रिफॉर्म कमीशन एक्ट और सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर एक्ट प्रमुख हैं। गेविन ग्लोवर ने कहा कि सरकार ने संविधान के आधुनिकीकरण का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही संसद में पेश किए जाने वाले क्रिमिनल कोड बिल में वैवाहिक बलात्कार और महिलाओं की हत्या को भी कानूनी प्रावधानों में शामिल किया जाएगा। बजट पर बहस आज दोपहर 3 बजे फिर शुरू होगी। बहस पूरी होने के बाद कमिटी ऑफ सप्लाई की कार्यवाही आरंभ की जाएगी। मॉरिशस ने संपत्ति घोषणा और वित्तीय अपराधों की रोकथाम के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता अफ्रीकी देशों के साथ साझा की है। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने बुधवार 24 जून को अपने रिजवी के मुख्यालय में अफ्रीका के कई देशों के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के एक प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। इन प्रतिनिधिमंडल में बुर्किना फासो, माली, कोमोरो, मडागास्कर, केप वर्दी और कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य के प्रतिनिधि शामिल थे, जो अध्ययन दौरे के तहत मॉरिशस की प्रणाली का अनुभव प्राप्त करने पहुंचे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सहयोग से आयोजित इस पहल के माध्यम से प्रतिनिधियों को मॉरिशस में संपत्ति घोषणा से संबंधित कानूनी ढांचे तथा निगरानी और नियंत्रण तंत्र को बेहतर ढंग से समझने का अवसर मिला है। सिंथेटिक ड्रग्स का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी चपेट में आने वाले युवाओं तथा किशोरों की संख्या चिंताजनक रूप से बढ़ रही है। हर आंकड़े के पीछे एक परेशान किशोर, संघर्ष कर रहा एक परिवार और जोखिम में पड़ा एक भविष्य छिपा हुआ है। नशीले पदार्थों की लत न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है बल्कि उसके सामाजिक और पारिवारिक जीवन पर भी गंभीर असर डालती है। विशेषज्ञों का कहना है कि सिंथेटिक ड्रग्स के बढ़ते प्रचलन को रोकने के लिए जागरूकता, रोकथाम, समय पर उपचार और परिवार तथा समुदाय के सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने युवाओं को इस खतरे से बचाने के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेनेजुएला की राजधानी काराकास के निकट आए 2 शक्तिशाली भूकंपों के बाद राहत और बचाव दल मलबे में फंसे लोगों की तलाश में युद्ध स्तर पर जुटे हैं। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक कम से कम 235 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 4,300 से अधिक लोग घायल हुए हैं। राजधानी काराकास और तटीय शहर ला ग्लोइरा में ढही हुई इमारतों के मलबे के नीचे फंसे लोगों की मदद की पुकार सुनाई दे रही है। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार पहले 7.2 तीव्रता का भूकंप आया जिसके बाद कुछ ही सेकेंड बाद 7.5 तीव्रता का दूसरा और अधिक शक्तिशाली भूकंप आया। आशंका है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए हैं जबकि कई लोग क्षतिग्रस्त और असुरक्षित इमारतों में लौटने के बजाय सड़कों पर रात बिताने को मजबूर हैं। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। साथ रही सुन पाएंगे शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। मेलिश स्ट्रीट फॉरेस्ट साइड में 71 साल की 71 ईयर्स ओल्ड के श्री सतीश लाल बिहारी जिन्हें सीता रामदास के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके बेटे मनवीर सिंह लाल बिहारी के घर फॉरेस्ट साइड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बीघा शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति मानी गहरी संवेदना है।
2: NBC Play, NBC Radio.tv. NBC Radio.tv. 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस।

सभी सुनने वालों को हमारा सादर प्रणाम। 10:05 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। श्रोताओं, कार्यक्रम है भक्ति धारा। आप समस्त श्रोताओं का हम हार्दिक अभिवादन करते हैं इस कार्यक्रम में। तो चलिए, शुक्रवार का पावन दिन है और आज का दिन आपके लिए बेहद ही मंगलमय हो, हमारी यही कामना है। कार्यक्रम जो है आपके लिए लाए हैं शास्त्र नवनीतम डॉक्टर आचार्य सुनील जी की प्रस्तुति में इस कार्यक्रम के जरिए। साथ ही साथ शुक्रवार के इस पावन दिन में चैन भक्ति गीत माँ दुर्गा पर आधारित। तो चलिए श्रोताओं, ज़्यादा देर न करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रही है। और आपको पता है कि जब हमें भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होते हैं तो राह जो है कितनी भी कठिन क्यों हो, जितने भी रुकावट क्यों ना हो, ये सब कुछ जो है आसान हो जाती है। और मन में विश्वास का दीपक जो है हमें हमेशा जलाए रखना चाहिए। तो चलिए, इसे शुभ विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं।

0: श्रोताओ, भक्ति धारा कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और अब आप सुन सकेंगे शास्त्र नवनीतम। ये कार्यक्रम आप डॉक्टर आचार्य सुनील जी की प्रस्तुति में सुन पाएंगे।
1: वेद दर्शन पर आधारित कार्यक्रम शास्त्र

ओम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सभी श्रोताओं को सादर सप्रेम नमस्ते। महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार प्रकाश के आठवें समुलास में सृष्टि की रचना, सौर मंडल, पृथ्वी और सूर्य की गति के विषयों में वेदों के प्रमाणों के साथ चर्चा हुई है। प्रश्न रखा गया कि क्या पृथ्वी आदि लोक घूमते हैं या स्थिर हैं। उत्तर में कहा गया कि पृथ्वी आदि लोक घूमते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रह और पिंड गतिमान हैं, वे एक जगह स्थिर नहीं हैं। सूर्य और पृथ्वी की गति को लेकर क्या सत्य है, इस पर चर्चा की गई है कि कुछ लोग मानते हैं कि सूर्य घूमता है, केवल सूर्य ही घूमता है और पृथ्वी नहीं घूमती, जबकि अन्य लोग मानते हैं कि पृथ्वी घूमती है और सूर्य नहीं घूमता। इसमें क्या सत्य है? महर्षि जी ने उत्तर दिया कि वेदों के प्रमाण अनुसार दोनों ही अपनी अपनी जगह पर गति करते हैं। यजुर्वेद अध्याय 3 मंत्र 6, आयम गौ पृष्णीर अक्रमीद सदन मातरम पुरः पितरैंच प्रयंत स्वः। यह पृथ्वी जल के सहित सूर्य के चारों ओर आकाश में घूमती है, इसलिए पृथ्वी घूमती है। यह भूमि स्थिर नहीं रहती, यह गतिशील है। हमारे प्राचीन ऋषि महर्षि इस बात को भली भांति जानते थे कि पृथ्वी की दो गति होती हैं, एक घूर्णन गति और दूसरी वार्षिक गति। घूर्णन गति का परिणाम रात दिन का होना, घूर्णन गति का अर्थ है अपने अक्ष में घूमते रहना, और इसका परिणाम होता है रात और दिन। वार्षिक गति ये दूसरा परिणाम है। वार्षिक गति का दूसरा परिणाम है धरती का सूर्य की परिक्रमा पूरा कर लेना, और उसमें एक वर्ष लग जाते हैं। धरती के लिए सूर्य प्रकाश, ऊर्जा और आकर्षण शक्ति का केंद्र है। सविता यानी सूर्य जो प्रकाश स्वरूप और तेजोमय है, वह अपनी आकर्षण शक्ति के कारण सभी लोगों को बांधकर अपनी परिधि में घूमता रहता है। वह किसी

दूसरे लोक व ग्रह के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता, बल्कि ब्रह्मांड में अपनी धुरी पर गतिमान रहता है। सूर्य में तीव्र आकर्षण शक्ति है, जो सभी तत्वों और ग्रहों को अपने वश में कर लेता है। सत्यार प्रकाश के आठवें समुलास में ही दिन और रात होने के कारण एवं प्रक्रिया को बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया है। दिवि सोमो अधिश्रितः, ये अथर्ववेद का वचन है। जैसे चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, चमकता है, वैसे ही पृथ्वी आदि लोक भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। पृथ्वी घूमती है, घूमते समय पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने आता है वहाँ दिन होता है, जो भाग पीछे चला जाता है वह अंधेरे में चला जाता है वहाँ रात होती है। देश और समय का अंतर बताया गया है। जब भारत आर्यावर्त देश में सूर्योदय होता है तब पाताल देश अर्थात अमेरिका में सूर्यास्त होता है। जब भारत में दोपहर का समय होता है तब अमेरिका में मध्य रात्रि होती है। जो लोग यह सोचते हैं कि सूर्य घूमता है और पृथ्वी नहीं घूमती, वे अज्ञानी हैं। अगर पृथ्वी न घूमे तो कई हजार वर्षों के लंबे दिन और रात होने लगेंगे, जो कि प्रकृति के नियमों के विरुद्ध हैं। महर्षि दयानंद लिखते हैं कि पृथ्वी आदि लोक भी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, परंतु रात और दिन सर्वदा वर्तमान रहते हैं। रात और दिन चक्र के समान घूमते रहते हैं। पृथ्वी आदि लोक घूमकर जितना भाग सूर्य के सामने आता है उतने में दिन, और जितना भाग आड़ में होता है उतने में रात। अर्थात उदय, अस्त, संध्या, मध्यान्ह, मध्यरात्रि आदि जितने काल अवयव हैं वे देशांतरों में क्रम से सदा वर्तमान रहते हैं। अर्थात एक देश में जब सूर्योदय होता है तो विपरीत अन्य भूभागों में अंधकार होने लगता है। कुछ मत संप्रदाय पृथ्वी को चपटी मानती हैं। वेदों के अनुसार पृथ्वी आदि ग्रहों को गोलाकार बताया गया है। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो जीवन का आधार है। हमारी पृथ्वी जो ग्रह के रूप में है, यह एक मध्यम आकार का ग्रह है जो आठ अन्य ग्रहों के साथ सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य को अग्नि का गोला माना गया है। सूर्य एक विशाल तारा है। जो चीज़ हमारी पृथ्वी को अद्वितीय और विचित्र बनाती है वह है इसका वायुमंडल, एटमॉस्फियर, और जीवनदायी जल। जल जीवन का स्रोत है। वायुमंडल और जल दोनों मिलकर पेड़ पौधों तथा सभी प्राणियों के जीवन की एक समृद्ध विविधता को संभव बनाते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का अधिकांश भाग समुद्र से ढका हुआ और घुमावदार बादलों से घिरा हुआ दिखाई देता है, और अधिक दूर से देखने पर पृथ्वी का आकार गोल दिखाई देता है। वेदों के अनुसार पृथ्वी आदि ग्रह गोलाकार हैं। हमारी धरती पर जल तत्व की मात्रा अधिक है, अर्थात यह धरती जल से घिरी हुई है। जल से भी अधिक इस धरती पर वायु तत्व विद्यमान है। संपूर्ण जल राशि और धरती को वायु ने अपने घेरे में ले रखा है। जहाँ तक वायु है वहाँ के बाद अंतरिक्ष शुरू होता है, जिसे आकाश भी कह सकते हैं। तो यह वायु आकाश से घिरा हुआ है, उस अंतरिक्ष से परे द्यौ स्थान का वर्णन प्राप्त होता है जिसमें सूर्य आदि लोक विद्यमान है। कुछ मत संप्रदाय वाले का मानना है कि पृथ्वी शेष नाग पर टिकी हुई है। महर्षि दयानंद ने इस मिथ्या बात को सामने रखा। महर्षि दयानंद ने इसे मिथ्या घोषित किया। शेष के आधार पर पृथ्वी है। यहाँ शेष नाग व सांप का पर्याय नहीं है।

0: सत्यार प्रकाश के अष्टम समुल्लास में महर्षि दयानंद ने एक कवि के संस्कृत वाक्य का उदाहरण दिया है, शेषाधारा पृथ्वीत युक्तम, पृथ्वी शेष पर टिकी हुई है। इसका अभिप्राय है कि जो बाकी रहता है उसको शेष कहते हैं। शेष, इसी को अंग्रेजी में स्पेस कहते हैं। अंग्रेजी का स्पेस शब्द ही शेष कहलाता है, अर्थात सभी ग्रह नक्षत्र शेष पर टिकी हुई हैं। महर्षि जी आगे बताते हैं कि सत्येन उत्तभिता भूमि, यह ऋग्वेद का वचन है। सत्येन उत्तभिता भूमि का अर्थ है जो सत्य स्वरूप अविनाशी परमेश्वर है, जिसका कभी नाश नहीं होता है। उस परमेश्वर ने भूमि को धारण कर रखा है, भूमि को जीवन प्रदान करता है। केवल भूमि ही नहीं बल्कि आदित्य अर्थात सूर्य और सब लोकों को धारण कर रखा है। कुछ मत संप्रदायों का मानना है कि पृथ्वी बैल के सिंह पर धरी हुई है, एक स्थान में ही विद्यमान है और वह स्थिर है। सूर्य धरती की परिक्रमा करता है। महर्षि दयानंद ने सत्यार प्रकाश में इस बात का खंडन किया है। वे ऋग्वेद का प्रमाण उद्धृत करते हैं कि उक्षादाधार पृथ्विम उतद्याम, सूर्य पृथ्वी को अपने आकर्षण में धारण किया हुआ है। महर्षि जी इस वाक्य का सटीक अर्थ प्रस्तुत करते हुए बताते हैं कि इसी उक्षा शब्द को देखकर किसी ने बैल अर्थ का ग्रहण किया होगा, क्योंकि उक्षा बैल का भी नाम है। परंतु उसको यह विदित नहीं हुआ कि इतने बड़े भूगोल के धारण करने का सामर्थ्य बैल में कहां से आवेगा। इसलिए उक्षा वर्षा द्वारा भूगोल के सेचन करने से सूर्य का नाम है। उक्षा सूर्य को भी कहते हैं। उक्षा शब्द का अर्थ है सामान्य बैल नहीं, बल्कि वैदिक विज्ञान में उक्षा का तात्पर्य सूर्य से है, जो अपनी आकर्षण शक्ति के माध्यम से पृथ्वी और अन्य खगोलीय पिंडों को अपने कक्षा में थामे रखता है। उक्षा ब्रह्मांड की केंद्र शक्ति है। केंद्र शक्ति के साथ साथ उक्षा वर्षा आदि का कर्ता भी है। सूर्य को, जिसे वैदिक भाषा में उक्षा सविता रवि आदि नाम से जाना गया, वह प्रकाश स्वरूप तेजोमय रमणीय स्वरूप के साथ वर्तमान रहता है। सब प्राणियों में अमृत रूप वृष्टि व किरण के साथ आकर्षण के गुण से सह वर्तमान रहता है। सूर्य अपनी परिधि में घूमता रहता है, किंतु किसी लोक के चारों ओर नहीं घूमता। इसी प्रकार एक ब्रह्मांड में एक सूर्य प्रकाशक होता है तो दूसरे सब लोक लोकांतर प्रकाश्य हैं। दिवी सोमो अधिश्रितः, यह अथर्ववेद का वचन है। इसका तात्पर्य बताते हुए महर्षि जी कहते हैं कि यह चंद्रलोक सूर्य से ही प्रकाशित होता है, वैसे ही लोक भी जो अन्य लोक हैं सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। क्योंकि पृथ्वी आदि लोक घूमकर जितना भाग सूर्य के सामने आता है उतने में दिन, और जितना आड़ में होता है उतने में रात। परमात्मा की सृष्टि अत्यंत विचित्र है। महर्षि दयानंद ने धर्म समाज ज्ञान विज्ञान किसी भी पक्ष की उपेक्षा नहीं की। उन्होंने सभी विषयों को यथोचित ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया, और जो मिथ्या है जो ढोंग है उसको निकालने का प्रयास किया। अतएव महर्षि दयानंद ने सबको सत्य ज्ञान ग्रहण करने की प्रेरणा दी। आज का वक्तव्य यहाँ विराम लेता है। अब हमें अनुमति दीजिए। ओम शांति शांति शांति।
1: अभी आप सुन रहे थे वेद दर्शन पर आधारित कार्यक्रम शास्त्र नवनीतम, प्रस्तुत करता डॉक्टर आचार्य सुनील।

चलिए श्रोताओ, शक्ति की देवी माँ दुर्गा की महिमा का हम गुणगान करते हैं। आज का दिन 10:25 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में, तो चिन्ह भक्ति गीत आपकी सेवा में इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आपको पता ही है कि माँ दुर्गा हमें शक्ति प्रदान करती हैं और चालीसा का पाठ सुनकर हमें अपार शांति की अनुभूति हमें होती है। तो चलिए आपके लाए हैं इस कार्यक्रम में दुर्गा चालीसा।

चलिए श्रोताओ, भक्ति धारा कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं रेडियो मॉरिशस पे। वैसे श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं माँ दुर्गा के बारे में। जब माँ दुर्गा के महत्व को पहचानना होता है तो ये केवल उनके मंदिर तक जाना नहीं होता, बल्कि उनके बताए गुणों को अपने जीवन में अपनाना होता है। जब हम सत्य का साथ देते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करते हैं, तब हम माँ की शिक्षाओं का सम्मान करते हैं। तो चलिए श्रोताओ, भक्ति धारा कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। चंद प्यारे प्यारे भक्ति गान आप सभी सुनने वालों के लिए।

श्रोताओं, कहते हैं माँ दुर्गा की सच्ची आराधना तभी पूर्ण होती है जब उनके आदर्श हमारे विचारों और कर्मों में दिखाई देती है। तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही प्यारा सा भक्तिगान आज का दिन जो है हम माँ संतोषी को भी पूछते हैं। तो चलिए एक प्यारा सा गीत उनके नाम हम करेंगे।

ये श्रोताओ, आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। एनएचडीसी सुयाक विलाज डे ग्रीग्री और डोमेन ग्रीग्री के रहने वाले निवासों को सूचित किया जाता है कि शुक्रवार 26 जून 2026 को, वैसे इस समय से लेकर जो है 11 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। साथ में है मोटाइलों के रहने वाले निवासों को, जिनमें है वाल्टों, कोलाबू, देकुए, बुलेंग्रे के आसपास के रहने वाले निवासों को सूचित किया जाता है कि शनिवार 27 जून 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो चलिए अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुन रहे थे। तो चलिए एक और विज्ञप्ति हमें प्राप्त हुआ है। वैसे एनएचडीसी सुयाक विलाज डे ग्रीग्री डोमेन ग्रीग्री के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। तो शुक्रवार 26 जून 2026 को इस समय जो है बिजली की सप्लाई की कटौती हुई है। तो इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो चलिए श्रोताओ, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियाँ सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है। कुछ ही घड़ी में 11 बजने वाले हैं और आप समाचार सुनेंगे। समाचारों के उस पार उर्दू कार्यक्रम सायदा की पेशकश में।

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे अर्चिता। नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आपसे लोगों का स्वागत किया जाता है। स्थानीय स्तर पर मौसम के बारे में बात करते हैं। पूर्व से आने वाली बादलों का असर फिलहाल हमारे इलाके पर पड़ रहा है। इन पिछले 24 घंटों के दौरान विशेषकर सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच बगातेल में 45 मिलीमीटर वर्षा हुई, भोविदौंस में 50 मिलीमीटर, वाकुआ में 33, वूटन में 36 और विशेषकर सेंट्रल प्लेटू वाले इलाकों पर ज्यादा बारिश हुई और जहाँ पर पानी जमा होने का खतरा है वहाँ पर पानी जमा हो रहा है और सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, विशेषकर जब आप उन इलाकों से गुजरे

नर्सिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधि राम नौजादिक का कहना है कि नर्सों के प्रशिक्षण के लिए एक समर्पित कैंपस की स्थापना अब समय की आवश्यकता बन गई है। उनके अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र में भविष्य की जरूरतों को पूरा करने और प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने के लिए ये कदम बेहद महत्वपूर्ण है। ये मांग ऐसे समय में सामने आई है जब बजट में सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए 2,220 स्वास्थ्य पेशेवरों की भर्ती का प्रावधान किया गया है। सरकार ने ये भी घोषणा की है कि जिन क्षेत्रों में विशेषज्ञता की कमी है वहां विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाएंगी। इसके साथ ही चिकित्सा और नर्सिंग अफसरों के लिए अधिक विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। मॉरिशस के ऊर्जा मंत्री पत्रिका सियावादेन ने आरोप लगाया है कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में देश की पेंशन निधियों तथा सेंट्रल एलेक्सिटी बोर्ड के पेंशन कोषों का कुप्रबंधन किया गया। राष्ट्रसभा में कल बजट पर हुई बहस के दौरान उन्होंने कहा कि सीबी के दोनों पेंशन कोष घाटे में हैं। उन्होंने बताया कि सीबी स्टाफ पेंशन में 131 मिलियन मॉरिशन रुपए और सीबी मैनुअल वर्कर्स पेंशन फंड में 64 मिलियन रुपए की कमी दर्ज की गई है। पत्रिका सियावादेन ने वर्ष 2026-2027 के बजट में घोषित पेंशन सुधार का बचाव करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने देश के हित में पेंशन व्यवस्था की समीक्षा का साहसी निर्णय लिया है। उनके अनुसार भावी पीढ़ियों के लिए पेंशन प्रणाली की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस सुधार को लागू करना आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ओर जहां पर वेनेजुएला में मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है और 400 से अधिक हो चुकी है तथा घायलों की संख्या भी बढ़ रही है, वहीं पर यूरोप के कई देश इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में हैं। स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन में कई दिनों से जारी लू की स्थिति अब पूर्वी यूरोप की ओर बढ़ रही है, जिसके मद्देनजर जर्मनी और चेक गणराज्य के मौसम विभागों ने अत्यधिक गर्मी की चेतावनी जारी की है। पूर्वानुमान है कि जर्मनी के पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि आज देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। चेक गणराज्य के अधिकांश क्षेत्रों में भी अत्यधिक गर्मी को लेकर विशेष चेतावनी लागू की गई। फ्रांस में वहां के प्रधानमंत्री सेबास्टियन लेकोनी ने स्वास्थ्य चेतावनी स्तर को उच्चतम श्रेणी तक बढ़ाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अस्पतालों में अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करना और संवेदनशील वर्गों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करना है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। साथ रही सुन पाएंगे शोक समाचार।

शोक समाचार सुनिए। रॉय रोड प्रेंदिहोश में, रॉय रोड प्रेंदिहोश में 60 साल की 60 ईयर्स ओल्ड की श्री नंदराज सिंह दीनू, जिन्हें पोम्पे के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 3 बजे उनके घर प्लेंदिहोश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्रियुलिक शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। श्वाजी रोड पोस्ट दिफ्लाक में 81 साल की 81 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती निराधा रामा, पैदाश नाम सिमुची और जिन्हें दिलावती के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 2 बजे उनकी बेटी सनयू बंदीप के घर पोस्ट दिफ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशोंग शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमरो 2 PM। सैंक्वा रोड सैंक्वा में 51 साल के 51 ईयर्स ओल्ड के श्री रिशेन चिकोरी, जिन्हें चंग के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 3:30 बजे उनके भाई विशाल चिकोरी के घर सैंक्वा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भूले वाली दीपात की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:30 PM। कालीलेन बॉम्बू में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड के श्री हरिबस थूप सिंह जानकी, जिन्हें दुदो के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 12 बजे उनके घर बॉम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताय सैपिया बॉम्बू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट नून। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

0: 17 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: शम्मे फरोज़ा

0: जुम्मे का मुबारक दिन है आशूरे, और जुम्मे का दिन आप तमाम सुनने वालों को हमारी जानिब से मुहर्रम का दूसरा जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको ऐसे हज़ारों जुम्मे नसीब फरमाए। मौज़े समीन, आज की इस उर्दू मजलिस में आप समात फरमाएंगे तिलावते कुरान पाक, हम नातो सलाम और आपके पैगामात। तो आइए आगाज़ करते हैं कलामे इलाही से। आज आप समात फरमाएंगे हर जुम्मे की तरह सूरह अल-कहफ़ की तिलावत। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد

सदक़ल्लाहु अज़ीम। अभी आप समात फरमा रहे थे सूरह अल-कहफ की तिलावत। जुम्मे के दिन सूरह अल-कहफ की तिलावत इंसान के दिल को सुकून बख्शती है और उसे अल्लाह ताला की याद से करीब करती है। इस सूरत में असाबे कहफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम और ज़ुल्क़र्नैन के वाक़यात बयान हुए हैं, जो हमें सब्र, तवक्कल, इख़लास और अल्लाह ताला पर कामिल यकीन का दर्स देते हैं। ऐ पाक परवरदिगार, हमें कसरत से तिलावत क़ुरान पाक की तौफ़ीक अता फ़रमा, आमीन। मौज़ समीन 5251-7005 के ज़रिए आप अपने पैगामात हमें भेज सकते हैं।

मौज़ सामीन, योम आशूरा और जुम्मे का दिन एक साथ आए हैं। ए पाक परवरदिगार, आज जितने भी हाथ तेरे दरबार में, तेरी बारगाह में उठे हैं, उन सब की दुआओं को कबूल फरमा, आमीन। जुम्मे की नमाज बाजमात अदा करने की कोशिश करें, आज सदक़ा व खैरात करें, अपने वालदैन, अहले खाना और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक गुजारने का अज़म करें। अल्लाह ताला हमें इन बाबरकत लम्हात का भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।

मौजे सामीन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:44 हो चुके हैं। जुम्मे का बाबरकत दिन है, जून की 26 तारीख है और आज माह मुहर्रम की 10 तारीख है, यानी आशूरा का दिन है। यौम आशूरा हमें सब्र, शुक्र, हक़ पर कायम रहने और अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा करने का अंदर्ज़ देता है। इसी दिन हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन और उनके रफ़क़ा ने करबला में अजीम कुर्बानी पेश की, जिसने हक़, अदल और दीन की हिफाजत की एक रोशन मिसाल कायम की। ए पाक परवरदिगार, हमें यौम आशूरा के पैगाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन।

कौन से समीन, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आपके पैगामात की तरफ। शाहाना अंजुमन सभी मुसलमानों को योम आशूरा की मुबारकबाद भेज रही हैं और दुआ करती हैं कि अल्लाह ताला सब लोगों की दुआएं कबूल फरमाए। योम आशूरा के ऐसा दिन है जो हमें सिखाता है कि मुश्किलात के आगे हमें सर नहीं झुकाना चाहिए और हमारी अल्लाह ताला तमाम आजमाइशें पूरी फरमाता है। जी हाँ, शाहाना अंजुमन का कहना है। इसके अलावा जी हाँ, इसके अलावा ओजबिल से तंजीला सुमाली तमाम मुसलमानों को मुहर्रम और जुमे की मुबारकबाद पेश कर रही हैं और दुआगो हैं कि अल्लाह पाक हमारे तमाम गुनाह माफ़ फरमाए और हमें हिदायत दे। इसके अलावा कातुबोन से यास्मीन, जी हाँ कातुबोन से यास्मीन तमाम बहन भाइयों को जुम्मे की मुबारकबाद पेश कर रही हैं और हमारी पूरी उर्दू टीम के लिए भी दुआएं भेज रही हैं। जी हाँ, इसके अलावा न्यूगोफ की फातिमा भी जुम्मे की और योम आशूरा की मुबारकबाद पेश कर रही हैं। इसके अलावा सैपुल से रिहाज और रेहाना भी जुम्मे की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और आसिया, जी हाँ आसिया का कहना है कि जिस तरह हज़रत इमाम हुसैन ने क़ुरबान हुए हमारे हिफाजत के लिए, इंशाल्लाह अल्लाह हमारे हमें भी हमेशा ज़िंदा रखे और हम भी इसी तरह क़ुरबानियाँ देते रहें। और उन्होंने एक कलाम की फरमाइश भी की है। फरानाज जुमन क्यूपिप से सबको योम आशूरा और जुम्मे की मुबारकबाद पेश कर रही हैं और दुआगो हैं कि अल्लाह पाक तमाम बीमारों को शिफाए कामला अता फरमाए और तमाम मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन। इसके अलावा वाक़ा से नसरीन हमेशा की तरह हमारा प्रोग्राम सुनना बहुत पसंद करती हैं, वो हमारे लिए दुआएं भेज रही हैं। इसके अलावा जुम्मे और आशूरा की मुबारकबाद भी दे रही हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक सबका रोज़ा दुआ नमाज कबूल फरमाए और सबको सेहत के साथ ज़िंदगी और सुकून अता फरमाए। आमीन।

जी तौबा की तौफीक दे, हमारे दिलों को कुरान करीम की मोहब्बत से मुनव्वर फरमा। अल्लाह हमें दीन इस्लाम पर साबित कदम रख, हमें सब्र, शुक्र, इखलास और तक्वे की दौलत अता फरमा, और हमें हर किस्म के फितनों खुसूसन दज्जाल के फितने से महफूज फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामीन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

हर लोगो तेद मने नंद जिना लाला हर लोगो तेद मने नंद जिना लाला हर लम वाला मारो जीवड़ो समायो जाम्यो ए जाम्यो जाम्यो अरे बाई।

一首首经典落幕，故事仍在继续，怀旧旋律不停流转。接下来继续沉浸老歌氛围，再熟悉曲调里打捞温柔回忆。

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: आपकी पसंद। शुक्रवार 26 जून, घड़ी मिला लीजिए, दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। आपकी पसंद इस प्रोग्राम को लेकर आपकी सेवा में हम आ गए हैं और अभी से लेकर 4:45 तक हम आपका साथ देने वाले हैं। कैसे हैं आप सभी, ठीक तो है ना? तो चलिए, आज का दिन बहुत अच्छे से बीत रहा होगा और फ्राइडे का दिन जो होता है ना, शुक्रवार का दिन जो होता है, वो अच्छे से ही बीतता है क्योंकि हमें पता है बाद में सप्ताहांत होगा, सैटरडे होगा, संडे होगा, जहाँ पर छुट्टी होगी, फैमिली के साथ हमें टाइम बिताने का मौका मिलेगा। तो चलिए, यहाँ पर इन खुशियों के साथ साथ आपके पसंदीदा गाने भी यहाँ पर हम चलाएँगे। तो देर किस बात की है, जल्दी जल्दी हमें कॉल करें या मैसेज करें। 5251700005 ये है नंबर मैसेज के लिए, और फ़ोन कॉल्स के लिए 4028085।

0: आपकी पसंद।
1: यकीनन हमारे सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे श्रोता जब हमारे प्रोग्रामों से जुड़ते हैं तो प्रोग्राम में नूर तो आ ही जाता है, प्रोग्राम का रंग रूप बदल जाता है। बस आपका प्यार भरा साथ हमें यूं ही मिलता रहे और आपका साथ है तो हम हैं, है ना। तो चलिए अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। गर्लफ्रेंड फिल्म का ये जो तराना है किशोर कुमार और देसी ईरानी जी की आवाज़ में गाना जाता है शनाया की ओर से उनके नाना नंद के नाम जो इस समय वाकवा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं।

0: ना सीना लगता है ना पैसा लगता है। चलके देखो जी ये झूला कैसा लगता है, ये झूला कैसा लगता है।
1: आपकी पसंद यकीनन अपने पसंदीदा गाने अगर रेडियो पर सुनने का मौका मिले या अपना और अपनों का नाम सुनने का मौका मिले तो अच्छा तो लगेगा ही। चलिए देखते ही देखते 4:40 यहाँ पर हो चुके हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कहते हैं ना कि ज़िंदगी में जो भी हो मुस्कुराते रहना चाहिए। मुस्कुराने से जो है परेशानियाँ आपको देख कर दूर भागती हैं, और जब परेशानियाँ आपसे दूर रहती है तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है ना। चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। बदलते रिश्ते फिल्म का ये जो अगला गीत है, ये खास कर हम करेंगे यहाँ पर सभी बंधु फैमिली के नाम जो इस समय थ्रियोले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और यही गाना जो है जाता है सरिता जी आपके लिए भी, धन्यवाद साथ देने के लिए।

0: की पसंद।
1: अजय, वक्त के साथ सब कुछ बदलता है, क्योंकि वक्त खुद भी तो बदलता रहता है ना। जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। परिवर्तन ही जीवन का नियम है, और बदलते वक्त के साथ हमें भी जो है समय अनुसार अपने आप को ढालते रहना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पर इसी के साथ हम बढ़ते हैं इस अगले तराने की ओर। त्रियोले से अनीता जी हमारा साथ दे रही हैं, और आह फिल्म का ये जो तराना है जाता है उनकी बेटी अंजू, दामाद वेद के लिए। सचिन है, पूजा है, कियांश है, सिया है, पूरा परिवार जो इस समय हमारा साथ दे रहा है। तो लता जी और मुकेश जी की आवाज़ों में ये खूबसूरत सा तराना आप सभी के नाम।

0: आपकी पसंद।
1: और चलिए यहाँ पर देखते ही देखते 2:50 ऑलरेडी होने को है। गानों का सिलसिला जो है यहाँ पर जारी है। अगला तराना घायल फिल्म से लिया गया है। घायल फिल्म का ये जो गाना है जाता है बॉशरी के धनी जी आपके नाम, आपकी ओर से आपके पूरे परिवार के लिए जो इस समय हमारा साथ दे रहे हैं। यही गाना सुदेवी जी आपके नाम हम करते हैं, वाकवा से हमारा साथ दे रही है, कह रही है एंजॉइंग योर प्रोग्राम, थैंक यू। और ये गाना आपकी दीदी लालिता के नाम, सभी कुशल फैमिलीज़ के लिए, आत्माराम भैया के लिए। दीदी सुनीता है, शोभा है, देवीना है, मालिंगा से विकेश है, अक्षय है, स्नेहा है, कीर्ति है, कृषिका है, लक्षिका है, सभी राम रतन परिवार, सभी राम गुलाम परिवार और सभी कुवारू परिवारों के नाम ये तराना और आपकी ओर से ये गाना हमारी पूरी टीम के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जी हाँ, सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि कभी कभार ना जिंदगी में चीजें हमारे बस में नहीं होती है, तो बस हालात पर छोड़ देना चाहिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा, ये सोचकर लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए।
1: आपकी पसंद,
0: जैसे कि हम आगे बढ़ रहे हैं आपकी पसंद इस प्रोग्राम में, और चले यहाँ पर जितने भी सुनने वाले आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप सभी को हमारी पूरी टीम की ओर से जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए, यहाँ पर कमला का बर्थडे है, पोफिया से उनकी नहीं, कमल का बर्थडे है, ओके, कमल जी जो है अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, पोफिया से उनकी पत्नी जानिक, उनकी बेटी सेलेना, पापा रोहित, मामा गीता और दो भाई और भाभियों की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ में आदित्य है, आरव है, तनिष है, मौसी मीला है, निवग्रोव से सभी परिवार ने आपके नाम बधाई भेजी है। कमल जी, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। वीना वाकवा से आज जो है मेरे दोस्त प्रेम का जन्मदिन है, और राइट वीना जी, आपके दोस्त प्रेम को जन्मदिन के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं सभी दोस्तों की ओर से, सभी परिवारों की ओर से। और यह अगला खूबसूरत सा जन्मदिन का तराना उन सभी के नाम जो मना रहे हैं अपना जन्मदिन। और इसी गाने के साथ हम बढ़ेंगे 3 बजे के समाचार की ओर।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: टाइम चेक एग्जैक्टली 3 PM। देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अदिति, आपको नमस्कार।
2: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। डीपीपी दफ्तर ने इंटरमीडिएट अदालत के फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन के उस फैसले के खिलाफ आधिकारिक तौर पर अपील दायर की है, जिसमें डॉक्टर नवीन राम गुलाम के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द कर दी गई है। ये अपील 14 आधारों पर की गई है, जिसमें अदालत के कानूनी तर्क और उसके निष्कर्ष दोनों को चुनौती दी गई है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम के वकीलों को अपील के नोटिस की कॉपी मिल चुकी है। डीपीपी ने ये भी संकेत दिए हैं कि वे सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई तय करने का अनुरोध करेंगे, क्योंकि अपील की तेजी से समीक्षा करना न्याय के हित में है। फेडरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड अदर यूनियंस ने बेसिक रिटायरमेंट पेंशन यानी यूनिवर्सल पेंशन बनाए रखने का समर्थन किया है। आज सुबह पोर्ट लुइस में लगे एक प्रेस सम्मेलन के दौरान फेडरेशन के अध्यक्ष ने बजट 2026-2027 में प्रस्तावित कई कदमों पर बात की। विजय बंधन ने सार्वजनिक प्रदर्शनों से जुड़े पब्लिक गैदरिंग एक्ट में प्रस्तावित सुधारों की आलोचना की। मॉरिशस नेशनल फिनटेक स्ट्रेटजी 2026-2030 का मकसद लाइसेंस पाने में आसानी और डिजिटल एसेट्स विकसित करके अफ्रीका में मॉरिशस को एक प्रमुख फिनटेक हब के तौर पर मजबूत करना है। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका की तकनीकी मदद से तैयार की गई इस दस्तावेज को आधिकारिक तौर पर कल लॉन्च किया गया। ये रणनीति 6 स्तंभों पर आधारित है: रेगुलेशन, मूल ढांचा, प्रतिभा, निवेश, सहयोग और समावेश। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, कई अन्य यूरोपीय देशों की तरह यूके भीषण गर्मी का कहर झेल रहा है। कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच आज उत्तरी वेल्स और उत्तरी यूके में बारिश की चेतावनियां जारी की गई हैं। कई इलाकों में बिजली की आंधियों का अनुमान है। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार।

श्लोक समाचार सुनिए। रॉयल रोड द बेल्वेडेयर में, रॉयल रोड बेल्वेडेयर में 42 साल की 42 इयर्स ओल्ड श्रीमती ज्योति चतुआ पैदाशी नाम सुकन, जो करिश्मा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के सवा ग्यारह बजे इनके पिता श्री राजेंद्र सुकन के मकान रॉयल रोड बेल्वेडेयर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौन निवास की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट क्वार्टर पास्ट 11 AM। कालीमाई रोड रोशनो में 63 साल के 63 ईयर्स

0: older, Sri Kripacharya Thakur Singh, Sri Kripacharya Thakur Singh, जो मेहतानंद नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे, इनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे इनकी पत्नी श्रीमती देवयानी ठाकुर सिंह के मकान कालीमार रोड गुशनौर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गुशनौर की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। मामबहाल रोड बुआशेरी में, मामबहाल रोड बुआशेरी में 72 साल की 72 years old श्रीमती भानुमती माताओ, श्रीमती भानुमती माताओ, जो भानु नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे, इनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे इनके भाई श्री विजय माताओ के मकान मामबहाल रोड बुआशेरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गाँव बुआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: आपकी पसंद।
3: शुक्रवार 26 जून 3:05 समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हम करते हैं और अभी तक हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रवार को आपको तो पता ही है आपकी पसंद ये जो प्रोग्राम है चलता है 4:15 तक। तो अभी तक अपनी फरमाइश आप तक आपने हम तक नहीं पहुँचाई है तो आप जल्दी जल्दी हमें या तो कॉल करें या मैसेज करें। 4028085 है नंबर हमारा आपके फ़ोन कॉल्स के लिए, और साथ ही आपके मैसेजेस 5251700 पर। चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। आप आए बाहर आई फिल्म का ये जो गाना है जाता है माला जरी आपके नाम, सभी जरी परिवार के नाम जो पे चित्रित्रित से हमारा साथ दे रहे हैं, हमारी पूरी टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माला जी हमारी टीम के लिए इस गाने को डेडिकेट करने के लिए। और इस समय जो है हमारे साथ जुड़ी हुई है शिमला जी। ऑल राइट, शिमला जी कहती है कि अगला गाना हो जाए इनकी बहनों के नाम, रूमा है, आरती है, इंदिरा है, भाई है राकेश, साथ में है धीरज, बेटा है निमलेश, बेटी है कीर्तिना। यहाँ पर आपके पूरे परिवार के नाम ये गाना चल पड़ा।

0: की पसंद।
1: यकीनन हम सभी को ज़िंदगी में सहारे की आवश्यकता पड़ती है और एक दूसरे का सहारा बनना, एक दूसरे का साथ देना ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जब वाकई में हम किसी की मदद करते हैं और कभी हालातों के चलते वो जो है हमें धोखा दे जाते हैं तो दुख होता है ना। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब हमें मदद की आवश्यकता पड़ती है तो सामने से कोई मदद देने के लिए नहीं आता है। होता है, ज़िंदगी है, ज़िंदगी के सफ़र में हर एक तरह के लोगों से हमारा मिलना जुलना होता है और ये सब ज़िंदगी के अनुभव ही है जो हमें और भी जो है सशक्त बनाते हैं हर जो है हालातों का सामना करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। अगला तराना माया फिल्म का ये गीत है।

0: माया फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत तस्वीर तेरी दिल में जाता है। यहाँ पर रिहाना आपके नाम फिनिक्स से हमारा साथ दे रही हैं, आपकी ओर से हमारे तमाम सुनने वालों के लिए।
1: तस्वीर तेरी दिल में, जिस दिल

0: आपकी पसंद।
1: आपके भी दिल के कोने में किसी ना किसी अपने की तस्वीर ज़रूर होगी और इस गाने को सुनकर शायद उनकी याद आ गई होगी। होता है, गाने जो है कहीं ना कहीं हमारे यादों से जुड़े हुए होते हैं। कोई गाना इस तरह से तार छेड़ देता है कि हम एक अलग ही दौर में चले जाते हैं, है ना। चलिए, यही तो बात है, यही तो खूबसूरती है इन गानों की। अब अगला जो गाना चलने

वाला है वो भी बड़ा कमाल का है। शोर फिल्म का तराना है, एक प्यार का नगमा है, लता जी, मुकेश साहब और साथियों की आवाज़ों में गाना जाता है अनसुईया रामखिलावन जी की ओर से। उनकी बहनों के नाम प्रेमिला सी गुलाम है, रागिनी है, साधना है और सभी रामखिलावन परिवार जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं।

0: आपकी पसंद।
1: चलिए, ये प्यार ही है जो हम सबको एक दूसरे के साथ जोड़े रखता है, ये प्यार ही है जो रिश्तों की खूबसूरती को और भी बढ़ाता है ना, और ये प्यार ही है जो हमें अपनेपन का एहसास दिलाता है। और बड़े ही प्यार से आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अगले मैसेज की ओर हम बढ़ते हैं। राम राम सुमी जी, आशा करते हैं आप ठीक होंगे। कल मेरी बहन बबीता का जन्मदिन है जो पिचित जुली रहती है, सो आपको भी राम राम और आपकी बहन बबीता को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये अगला तराना उनके नाम सभी बहनों की तरफ से, आरती है, सचिता है, रेखा है, मानिता है, आपकी प्यारी मामा की ओर से भी उनको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद, और पूरे परिवार की ओर से बबीता जी आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। मानिता जी इस समय फ्रांस से हमारे साथ जुड़ी हुई है, और यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया इतने दूर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमें पता है आप रेडियो मॉरिशस हो या रेडियो मनोरंजन, दोनों ही हमारे चैनलों पर आप जुड़ती है, हमारा साथ देती है इसके लिए। तो चलिए, हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का जो तराना है आपकी प्यारी बहन के नाम।

0: आपकी पसंद।
1: लेकिन है ना, हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का ये जो तराना है इतना आइकॉनिक गाना है कि आज भी दशकों बाद भी इन्हें जब सुनते हैं तो मानो इतनी जो है खुशी महसूस होती है, इतना अच्छा लगता है कि क्या कहें, है ना। उम्मीद करते हैं ये गाना सुनकर आपको भी उतना ही अच्छा लगा होगा। और चलिए अब बढ़ते हैं इस अगले गाने की ओर, दुनिया झुकती है फिल्म का ये जो तराना है, पुरानी फिल्म दुनिया झुकती है, हेमंत कुमार और गीता दत्त जी की आवाज़ों में ये गाना जो है इसकी फरमाइश यहाँ पर आई है कविता जी की ओर से, जो इस समय मोचिदा से हमारे साथ जुड़ी हुई है। कह रही कि गाना हो जाए उनके पूरे परिवार के लिए, खासकर उनकी दो सहेलियों के नाम अनीता है, सुबीता है, जो इस समय हमें सुन रही हैं।

0: आपकी पसंद।
1: अजय, यहाँ पर गुमसुम होने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि सबके गाने जो है, सबकी फरमाइशें जो है आज पूरी की पूरी हो गई है। और बढ़ते हैं हम इस अगले तराने की ओर। जर्म फिल्म का ये जो गाना है जाता है अनीता जी आपके नाम, आपकी ओर से पति राज के लिए। अंतिश अंकुश बहुए है मानिशा आशीमा, पोता है हिमेश, साथ में है आद्या आंच, आपके पूरे परिवार के नाम जो इस समय फ्लिक ऑफ लक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यही गाना ग्रॉन्गप की सुनीता जी आपके लिए भी हम करते हैं। हमेशा आप हमारे साथ जुड़ती है और कहती बस किसी भी गाने में हमारा नाम जोड़ दीजिए। ज्योति जी हमेशा शातो बनारस से हमारा साथ देती हैं, तो आपके भी प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी। बस आप लोगों का प्यार हमें यूं ही मिलता रहे, ऐसी कामना हम करते हैं। आपको बता दें कि 4:15, जी हाँ 4:15 जो है आप गुलदस्ताए उर्दू इस प्रोग्राम को सुन पाएंगे निसार की पेशकश में, और 4 बजे आप उर्दू प्रोग्राम सुन पाएंगे अनवर जी की पेशकश में। तो आज के लिए हमारी आपकी मुलाकात बस यहीं तक थी। जब कोई बात बिगड़ जाए, ये जो गाना है जाते जाते आप सभी के नाम हम करते हैं। एक और मैसेज आ गया, चलिए जल्दी जल्दी इस मैसेज को भी पढ़ लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गाने बजाने के लिए, बहुत आनंद मिला, आप है मानिता। ओके चलिए, हमें भी यहाँ पर आकर बड़ी खुशी मिलती है और आपका साथ मिलता है, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए हमें भला। जल्द हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी। ये सप्ताहांत जो है आप सभी के लिए बहुत अच्छे से बीते। नमस्कार हमारी ओर से आप सभी को।

0: वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू जबां आए। मोहतशम सामईन, निसार अख्तर की तरफ से आदाब अर्ज हैं, ये रेडियो मॉरिशस हैं और आप इस वक्त महव समात हैं, ख़ास गुलदस्ते उर्दू प्रोग्राम अदब तहजीब मोहब्बत और खुशबुए उर्दू से मुअत्तर इस दिलनशीं बज़्म में हम आप तमाम लोगों का खैर मकदम करते हैं। याद रहे ये प्रोग्राम उर्दू स्पीकिंग यूनियन के ज़ेर एहतमाम नशर किया जाता है। सामईन, जब उर्दू के अल्फाज लबों पर आते हैं तो गोया मोहब्बत बोलती है, शाइस्तगी मुस्कुराती है और अदब अपना दामन फैलाता है। आज की बज़्म का पहला फूल एक ऐसी गज़ल है जिसकी खुशबू बरसों से उर्दू अदब के गुलशन को मुअत्तर कर रहा है। हसरत मोहानी के जज्बात से मुज़य्यन ये खूबसूरत गज़ल मुलायजा फरमाइए।
1: भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तरके उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। न छेड़ है हम नशी कैफियत सहबा के अफसाने, शराब बेखुदी के मुझको सागर याद आते हैं। रहा करते हैं कैद होश में एवाए नाकामी, वो दश्त खुद फरामोशी के चक्कर याद आते हैं। नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। हकीकत खुल गई हसरत तेरे तरके मोहब्बत की, तुझे तो अब वो पहले से भी बढ़कर याद आते हैं।
0: सामईन, क्या खूब कहा है हसरत मोहानी ने कि बाज यादें भुलाने से भी नहीं भूलती बल्कि और ज़्यादा करीब आ जाती हैं। उर्दू गज़ल की यही खूबी है कि चंद अशार में दिल की पूरी दास्तान सुना देती हैं और ये गज़ल इसी की एक खूबसूरत मिसाल है। सामईन, कभी कभी वफा की सबसे बड़ी मिसाल वो होती है जो खामोश रहकर भी सब कुछ कह जाती हैं। अब पेश खिदमत हैं एक ऐसी सबकामोज कहानी जिसमें दर्द भी है, मोहब्बत भी है और वफा की लाजवाल मिसाल भी। समात फरमाइए एक बेजुबान की अजीम कुर्बानी।
2: बहुत पुरानी बात है, जब दुनिया में अभी इतनी भाग दौड़ नहीं थी और लोग एक दूसरे के दुख दर्द

0: को अपने दिलों में जगा देते थे। एक दूर दराज गांव था जो पहाड़ों की गोद में किसी ख्वाब की तरह बसा हुआ था। इस गांव का नाम गुलशने जमीन था, जहां सुबह का आगाज परिंदों की उन मीठी आवाजों से होता था जो कानों में शहद घोलती थीं। सूरज की पहली किरण जब पहाड़ों की चोटियों से टकराकर नीचे उतरती तो मिट्टी की महक पूरे गांव में फैल जाती। इसी गांव की एक पुरपेच गली के आखिर में एक मिट्टी का घर था, जिसकी दीवारें पुरानी हो चुकी थीं और छत पर फूस डाला हुआ था। ये बरकत अली का घर था। बरकत अली एक ऐसा इंसान था जिसका दिल सोने का था, मगर उसकी जेब हमेशा खाली रहती थी। उसका बचपन दुखों और मेहनत की एक ऐसी दास्तान थी जो सुनने वालों की आंखों में आंसू ले आती थी। बरकत अली ने हमेशा अपने बाप को खेतों में सख्त धूप में काम करते देखा था। जब बरकत अली छोटा था तो उसने देखा कि कैसे उसके बाप ने अपनी जवानी मिट्टी में मिला दी ताकि बरकत अली को दो वक्त की रोटी मिल सके, मगर वक्त ने वफा न की। बरकत अली के बाप एक दिन खेतों में ही गिरे और फिर कभी ना उठ सके। बरकत अली अब अकेला था, उसका कोई सहाया ना था, सिर्फ एक बूढ़ी माँ थी जिसकी आंखें इंतजार में पथरा चुकी थीं। बरकत अली रोजाना सुबह सवेरे उठता और जंगल की तरफ निकल जाता ताकि लकड़ियां काटकर शहर में बेच सके। एक शाम जब आसमान पर सीहा बादल छा रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी, बरकत अली वापस आ रहा था कि उसने जंगल के दरमियान एक अजीब सी आवाज सुनी। वो रोने की आवाज थी। बरकत अली ने जब झाड़ियों के पीछे देखा तो देखा कि एक नन्हा सा गधे का बच्चा दलदल में फंसा हुआ है। वो बच्चा इतना कमजोर था कि उससे हिला भी नहीं जा रहा था। उसकी आंखों में मौत का खौफ था। बरकत अली का दिल मोम हो गया। उसने सोचा कि अगर मैं इसे यहाँ छोड़ गया तो जंगली जानवर इसे खा जाएंगे। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, वो दलदल खतरनाक थी, मगर बरकत अली ने हिम्मत की और उस बच्चे को बाहर निकाल लिया। उसने उसे अपनी पुरानी चादर में लपेटा और अपने सीने से लगा लिया। उस दिन से बरकत अली की तन्हाई खत्म हो गई। उसने उस बच्चे का नाम मोती रखा क्योंकि उसकी आंखें मोतियों जैसी चमकदार और साफ थीं। वक्त गुजरता गया। मोती अब बरकत अली के घर का रुकन बन चुका था। बरकत अली जब सुबह उठता तो सबसे पहले मोती के पास जाता, उसे प्यार से थपथपाता और उससे बातें करता। मोती कोई आम जानवर नहीं था, वो बरकत अली की हर बात समझता था। बरकत अली जब दुख में होता तो मोती अपना सर उसके कंधे पर रख देता। जब बरकत अली खुश होता तो मोती अजीब खुशी की आवाजें निकालता। गांव के लोग बरकत अली का मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे, बरकत अली तुमने इस बेकार जानवर पर इतनी मेहनत क्यों की है, इसे बेचो और कोई घोड़ा या बैल ले लो। मगर बरकत अली हमेशा मुस्कुराकर एक ही बात कहता, ये सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये मेरा बेटा है, मेरा दोस्त है। इसने मेरा साथ तब दिया जब मेरे पास कोई नहीं था, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। बरकत अली ने मोती को ट्रेनिंग दी थी। वो इतना समझदार था कि बिना कहे खेतों में हल चलाता और सही रास्ते पर चलता। एक दफा गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा। इस मेले में दूर दूर से अमीर जमींदार आए थे। हाशिम खान नाम का एक मगरूर जमींदार भी वहां आया था, जिसके पास कीमती अरबी घोड़े थे। हाशिम खान ने ऐलान किया कि जो जानवर मेरे सबसे तेज घोड़े को रेस में हराएगा उसे 1000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे, मगर जो हार गया उसे अपना जानवर मेरे नाम करना होगा। बरकत अली खामोश खड़ा था, मगर हाशिम खान ने उसे ललकारा, बरकत अली क्या तुम्हारा ये बदशक्ल मेधा मेरे घोड़े का मुकाबला करेगा? पूरा मेला हंसने लगा। बरकत अली ने इनकार करना चाहा, मगर मोती ने जमीन पर अपना पांव मारा और बरकत अली की कमीज को पकड़कर रेस की लाइन की तरफ ले गया। बरकत अली समझ गया कि मोती अपनी इज्जत और अपने मालिक का मान रखना चाहता है। रेस शुरू हुई। हाशिम खान का घोड़ा बिजली की तरह तेज दौड़ा और मोती काफी पीछे रह गया। लोग तालियां बजा रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे, मगर रास्ते में एक बड़ा नाला आया जिस पर सिर्फ एक पुराना और तंग लकड़ी का पुल था। घोड़ा डर गया और पुल पर चढ़ने से रुक गया। हाशिम खान ने उसे बहुत मारा, मगर घोड़ा खौफ के मारे पीछे हटने लगा। इतनी देर में मोती वहां पहुंचा। उसने बिना डरे उस तंग पुल पर अपने कदम रखे। उसने इतनी तवाजुन से पुल पार किया कि लोग दंग रह गए। मोती ने रास्ते की हर रुकावट को पार किया और जीत की लकीर तक पहुंच गया। हाशिम खान का चेहरा सियाह पड़ गया। बरकत अली ने सोने के सिक्के लेने से इनकार कर दिया और कहा, हाशिम खान मेरे लिए मेरे मोती की इज्जत ही सबसे बड़ा इनाम है। ये बात सुनकर गांव वालों के दिलों में बरकत अली और मोती के लिए इज्जत और बढ़ गई।
1: लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गांव पर कहत के स्याह बादल छा गए। 2 साल तक बारिश की एक बूंद न गिरी। खेत सूख कर पत्थर बन गए और जानवर प्यास से मरने लगे। बरकत अली के पास जो कुछ था वो खत्म हो गया। उसने मोती का चारा खरीदने के लिए अपने पुराने बर्तन तक बेच दिए। वो खुद दरख्तों के पत्ते चबाकर गुजारा करता, मगर मोती को कभी

भूखा नहीं सोने देता था। एक दिन बरकत अली ने देखा कि मोती की हड्डियां निकल आई हैं। उसने फैसला किया कि वो दूर पहाड़ों के ऊपर मौजूद उस पुराने कुएं तक जाएगा जहां कहते थे कि अब भी थोड़ा सा मीठा पानी बाकी है। रास्ते में गर्म हवाएं और झुलसा देने वाली धूप थी। बरकत अली थक कर गिर पड़ा, उसे चक्कर आने लगे और वो जमीन पर ढेर हो गया। मोती ने देखा कि उसका मालिक मौत के करीब है। उसने

0: मश्क दबाई और कुएं से पानी निकालने की कोशिश की। उस बेजुबान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और पानी लेकर अपने मालिक के पास पहुंचा। बरकत अली ने जब पानी पिया तो उसकी जान में जान आई। वापसी पर वही हौलनाक गढ़ा रास्ते में आया। बरकत अली का पांव फिसला और वो उस गहरी खाई में गिर गया जो मौत का कुआं थी। बरकत अली ने चिल्लाया, मोती तुम जाओ, अपनी जान बचाओ। मगर मोती ने वही किया जो तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। उसने किनारे से मिट्टी अपने पांव से खुरच कर अंदर फेंकनी शुरू की। वो घंटों तक मिट्टी फेंकता रहा। उसके पांव से खून निकलने लगा मगर वो नहीं रुका। मोती ने इतनी मिट्टी फेंकी कि मिट्टी का ढेर ऊपर तक आ गया और बरकत अली ने किनारा पकड़ लिया। जब बरकत अली बाहर आया तो मोती निहाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपने मालिक की जान बचाने के लिए अपनी सारी ताकत और खून निछावर कर दिया था। गांव पहुंचते ही मोती बीमार पड़ गया। मोती की हालत देखकर बरकत अली का दिल फटने लगा। वो दिन रात उसके पास बैठा रहता। वो उसे अपने हाथों से पानी पिलाता और उससे पुरानी बातें करता। वो उसे बताता कि कैसे वो दुनिया का सबसे बेहतरीन साथी है। मगर मोती का वक्त पहुंच चुका था। एक खामोश रात जब पूरा गांव सो रहा था, मोती ने आखिरी बार बरकत अली की तरफ देखा। उसकी आंखों में सुकून था, जैसे वो कह रहा हो कि मालिक, मैंने अपना वादा निभा दिया। मोती ने दम तोड़ दिया। बरकत अली की चीख पूरे गांव में गूंजी। बरकत अली ने मोती को उस खेत में दफन किया जहां वो दोनों मिलकर मेहनत करते थे। उस जगह पर एक पौधा उगाया जो कुछ ही सालों में एक अजीम दरख्त बन गया। लोग कहते हैं कि उस दरख्त की ठंडक ऐसी थी जो दिल के जख्मों को भर देती थी। बरकत अली ने अपनी बाकी जिंदगी उस दरख्त की हिफाजत में गुजार दी। वो हर आने वाले मुसाफिर को मोती की वफादारी की दास्तान सुनाता। बरकत अली अब बहुत बूढ़ा हो गया था। उसने अपने आखिरी वक्त में वसीयत की कि मुझे मोती के पास ही दफन करना। जब बरकत अली का इंतकाल हुआ तो गांव वालों ने देखा कि उस दरख्त पर सफेद फूल खिलाए हैं जो पहले कभी नहीं खिले थे। बरकत अली को मोती के पहलू में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। वक्त गुजरता गया और नए जमाने के लोग आए, मगर बरकत अली और मोती की दास्तान आज भी गुलशने जमीन की गलियों में जिंदा है। आज भी वो दरख्त वहां खड़ा है और उसकी सरसराहट में बरकत अली और मोती की बातें सुनाई देती हैं।
1: मुअज़्ज़ज़ सामईन, गुलदस्ते उर्दू प्रोग्राम में एक बार फिर आपका खैर मकदम करते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत किसी सूरत और शक्ल की मोहताज नहीं होती। अगर आप किसी को दिल से चाहते हैं तो वो बेजुबान भी आप पर अपनी जान निछावर कर देता है। वफादारी एक ऐसा जज्बा है जो मौत के बाद भी जिंदा रहता है। बरकत अली और मोती की दोस्ती ने ये साबित किया कि जिंदगी में असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि वो रिश्ते हैं जो मुश्किल वक्त में भी साथ निभाते हैं। वो बोलता है निगाहों से इस कदर उर्दू, वो बोलता है निगाहों से इस कदर उर्दू, खामोश रहकर भी अहले जबां सा लगता है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, इसी शेर के साथ हमारा आज का गुलदस्ते उर्दू प्रोग्राम अपने अख्तिताम की जानिब रवां दवा है। उम्मीद है आपने आज की बज़्म को पसंद फरमाया होगा। अगले हफ्ते किसी और मौजू को लेकर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान निसार अख्तर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।

0: सामीन, यौम आशुरा इस्लामी साल के उन मुबारक तरीन अय्याम दिनों में से एक है जिन्हें अल्लाह तबारक व ताला ने खुसूसी फजीलत अता फरमाई। अहादीस मुबारका में उस दिन के रोज़े की बड़ी अहमियत बयान की गई है। ये दिन अल्लाह ताला की नियामतों, रहमतों, रिफ़अतों और उन अजीम वाक़ियात की याद ताज़ा करता है जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों की नुसरत फरमाई। आशुरा हमें इबादत, शुक्रगुजारी और अल्लाह की इताअत की तरफ मुतवज्जेह करता है। आइए सामीन, जुम्मे के मुबारक मौके पर जुमा मस्जिद पोटली में वाज़ की सदाबंदी रिकॉर्डिंग हम आपको पेश करते हैं। बेशक मुकर्रर हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसहाक क़ादरी रज़वी, दामत बरकातु मालिया।
1: नहमदुल्लाह व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व हबीबिना محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأزكياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المثل الأعلى صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي مكين المجيد الرؤوف الرحيم ونحن

जिहाद इश्क में है वो शहीद दीन हुसैन। कतील इश्क हुवल्लाह जाने दीने हुदा, दियारे इश्क में अल्लाह के करीन हुसैन। दियारे इश्क में अल्लाह के करीन हुसैन। जहां को दर से वफा आज भी ये देते हैं, जहां को दर से वफा आज भी ये देते हैं, दिलों पर कब्जा है उनका, दिलों पर कब्जा है उन्हीं का दिल नशीन हुसैन। सरापा अक्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरापा अक्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये कुबाए रंगीन। सरापा अक्स मोहम्मद पर ये कुबाए रंगीन। निगाह इश्क में है किस कदर हसीन हुसैन। निगाह इश्क में है किस कदर हसीन हुसैन। कशाकश हक व बातिल में आहिना पेकर, जिहाद इश्क में है पेकरे यकीन हुसैन, पेकरे यकीन हुसैन। गुलाम हल्का बगोशे कुबाए गलगू हूँ, गदाए इश्क के ताबा हुए मुईने हुसैन। गदाए इश्क के ताबा हुए मुईने हुसैन। सरापा अक्स मोहम्मद पे ये कुबाए रंगीन। सरापा अक्स मोहम्मद पर ये कुबाए रंगीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरापा मेरे साथ पढ़े, सरापा, सरापा अक्स मोहम्मद पर ये कुबाए रंगीन। सरापा अक्स मोहम्मद पर ये कुबाए रंगीन। सरापा अक्स मोहम्मद पर ये कुबाए रंगीन। निगाह इश्क में है किस कदर हसीन हुसैन। निगाह इश्क में है किस कदर हसीन हुसैन। आज के लिए हमने जिस टॉपिक को सेलेक्ट किया वो है हुब्बे हसनैन और उसका नतीजा, लविंग हसनैन एंड इट्स आउटकम। अल्हम्दुलिल्लाह हमें आपको सबको पूरी उम्मा पूरी उम्मत मुस्लिमा ये एजाज और ये ऑनर हासिल है कि हमारे दिलों में मोहब्बत हसनैन, इश्क हसनैन, मोहब्बत हसनैन, इश्क हसनैन का आउटकम क्या है। इस मोहब्बत से हमें और आपको और तमाम अहले मोहब्बत को, तमाम अहले इश्क को मिलता क्या है, इसका आउटकम क्या है। सो ये एक ऐसा मौजू है कि इसके लिए सदियां चाहिए और ये बात मुबालगतन नहीं है, ये हकीकतन है। वाकिफान सिर इश्क, वाकिफान सिर मोहब्बत पर ये बात रोजे रोशन की तरह आया है, सब पर रोशन है कि मोहब्बत के समरात उसके नताइज़

मोहब्बत से इश्क से इंसान को मिलता क्या है। तारीख में दो मौजू ऐसे हुए जिनके लिए बिला मुबालगा सदियां चली। पहला मौजू इश्क है और दूसरा इश्क के समरात और इश्क के इनामात। सो आज हम स्पेशली नौजवान नस्ल नई नस्ल यंग जनरेशन न्यू जनरेशन को ये मैसेज दे रहे हैं कि खुदा के लिए इश्क फानी से निकल आए, खुदा के लिए उस इश्क से निकल आए जिसने आपकी जवानियों को बर्बाद किया, आपके शबाब को शिकारे जवान किया, जिससे आपकी दुनिया भी उजड़ गई और आखिरत भी तबाह हो गई। खुदा के लिए दुनिया के तारीख इश्क से, वो इश्क जिसमें अंधेरा ही अंधेरा है, उससे निकल आए उस इश्क की तरफ, उस मोहब्बत की तरफ जहां नूर ही है, जो कुरान की जुबान में नूर अला है। यहां नूर की वो मनाजिल मुसाफतें, नूर के वो मदारिज हैं, वो मनाजिल हैं जो कभी फिनिश नहीं हो सकते। मैं आज सोसाइटी को देखते हुए और इसमें खास तौर पे नई नस्ल नौजवान नस्ल की अखलाकी हालत को बिगड़ता देखकर उससे रिलेटेड आपको फकत चार बातें बता रहा हूं जो इश्क हसनैन का और मोहब्बत हसनैन का फल है, उसका आउटकम है। नंबर वन, स्पीक काइंडली। नौजवान फिर सुन लें, स्पीक काइंडली, गुफ्तगू करें तो बड़े नरमी से। इश्क सबसे पहले आपकी जुबान को साफ करता है, आपकी जुबान को क्लीन करता है। जब आशिक खिताब या आशिक आम गुफ्तगू करे तो फकत अंदाजे गुफ्तगू से मालूम होता है कि ये इश्क वाला है। इसके गुफ्तगू में, इसके लहजे में, इसके इसलूब में इश्क की खुशबू। नंबर टू, यूज काइंड वर्ड्स। जब भी आप किसी को मुखातब करें, किसी से बात करें, तो अल्फाज का इस्तेमाल ऐसा करें जिसमें काइंडनेस हो, जिसमें एहसान हो, जिसमें हुस्न का पहलू हो, जो सामने वाले को मुतासिर करे। आपकी गुफ्तगू अपनों से हो या गैरों से हो, दोस्तों से हो, दुश्मनों से, उसमें काइंडनेस हुस्न और एहसान का पहलू होना चाहिए। ऐसी गुफ्तगू हो कि आपका मुखालिफ भी आपकी बात तवज्जो से सुने, प्यार से सुने। नंबर थ्री, बी पोलाइट। पोलाइटनेस तहजीब शायद जो आज की नस्ल में ना रही। नौजवान तो क्या, बूढ़ों में भी आहिस्ता आहिस्ता अखलाक का इतना जवाल है, इतना जवाल है कि अल अमान वल हफीज, अल्लाह की पनाह। तो पोलाइटनेस तहजीब शाइस्ता एक आशिक में होती है। इश्क इंसान को मुहज्जब करता है, पोलाइट करता है, इश्क तहजीब सिखाता है।

इश्क का नतीजा तहजीब, शाइस्ता, और नंबर फोर बी रिस्पेक्टफुल, बादब हो जाओ। रिस्पेक्ट ये इश्क के वादियों में से एक वो वादी है, इश्क के समरात में से वो अजीम समरा है, इश्क के फलों में से वो अजीम फल है कि इसके बगैर इश्क हो ही नहीं सकता। इसलिए जो भी आशिक होगा, एक तो जुबान से इश्क है, जुबान से हम सब आशिक हैं, बल्कि एक से एक आशिक है, और फकत आशिक ही नहीं, सबको ये गुमान है कि वो जमाने का बड़ा आरिफ है, वली है, जाहिद है, आलिम है, महकमा है। बात इसकी नहीं है, फैसला गुफ्तगू से होता है, फैसला बातचीत से होता है कि गुफ्तगू में कितना अदब है। तो आशिक रिस्पेक्टफुल होता है, इसलिए कि इश्क के लिए तकाज़ा अव्वली, द फर्स्ट कंडीशन ऑफ लव इज रिस्पेक्ट। पहला बुनियादी लाजिमा इश्क का वो अदब है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो इमाम आली मकाम इफ्तिखारु शुहदा मुख्तारु शुहदा ज़ुब्दतु शुहदा अक्से जमाले मुस्तफा अक्से हुस्ने मुस्तफा अक्से एहसाने मुस्तफा अक्से मन्नो इम्तिनाने मुस्तफा सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का खुतबा जो उन्होंने आशूरा की शब दिया, जिसमें मुखातब यजीद और उसके मानने वाले थे, जिसमें मुखातब उनके दुश्मन और मुखालिफ थे, इससे उलमा सीखे, आइम्मा सीखे, अवाम और खवास सीखे। आजकल सोशल मीडिया पर जो तूफान बदतमीजी है, फेसबुक पर जो तूफान बदतमीजी है, तो उस लहजे से तो नहीं लगता कि हम अहले इश्क, जबकि अहले सुन्नत की पहचान यही है, अहले इश्क और अहले इश्क दो चीजें अता करता। उसमें पहली चीज सुन्नत की पाबंदी है, फिर अदब अल्लाह का अदब, अल्लाह के हबीब का अदब, सहाबा अहले बैत का अदब, माँ बाप का अदब, बहन भाइयों का अदब, बड़ों का अदब, छोटों पे शफ़क़त। अब इस सोसाइटी से हर चीज रुख्सत होती जा रही है, तो जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, वो खुदा के लिए इस मैसेज को सुने। फेसबुक पे इधर उधर की बातें बकने वालों, खुदा के लिए उसवे हुसैनी की तरफ। प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसमें जब आशिक का हवाला होता तो उसके गुफ्तगू से इश्क, इश्क की किरणें निकलती हैं, इश्क की खुशबू निकलती है, वो हर सू इश्क की खुशबू बिखेरता चला जाता। तो उस खुतबे में आपको ये चारों बातें मिली जो इमाम आली मुकाम ने उस मौके पे दिया। फकत वो नहीं, आपके बड़े खुतबात, आपकी अजीम बहन शहजादी बतूल, शहजादी इमाम अल मशारिक वल मगारिब सैयदना अली इब्ने अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदा तय्यबा ताहिरा आलिमा फाजिला खतीबा सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा का जो खुतबा उसने दरबारे यजीद में यजीदियों को मुखातब करते हुए दिया। उलमा खुतबा उस खुतबे को बार बार सुने कि अगर मुखालिफ दुश्मन को भी मुखातब करना हो तो उसका अंदाज क्या होना चाहिए, उसका उसलूब क्या होना चाहिए, उसमें अल्फाज और कलिमात का चुनाव कैसे होना चाहिए। सो ये चार बातें मैंने आपको बताई। आप में से, हम में से हर एक को चाहिए कि अपने आप को खुद चेक करें, खुद जज करें, हमें किसी और के जजमेंट की हाजत नहीं है। इसलिए कि किसी और की जो जजमेंट होगी या तो मोहब्बत में होगी या फिर अदावत में होगी, और दोनों में अक्सर इंसाफ नहीं होगा।

0: तो इंसान खुद अपने आप को जज करे कि वो अखलाक में कितना गिरता चला जाए। जामे तिर्मिजी में किताब मनाकिब में बाब मनाकिब हसन बिन हुसैन, इमाम तिर्मिजी ने ये हदीस बयान की जो टॉपिक से रिलेटेड है, और एंड पे फरमाया हाजा हदीस हसन गरीब, ये हदीस हसन गरीब है। मेरे साथ आप सब शामिल हो जाएं। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما। इसका तर्जमा ये है कि ए अल्लाह मैं इमाम हसन से इमाम हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, वो मेरे महबूब हैं, वो मेरे प्यारे हैं, वो मेरे चहीते हैं, वो मेरे लाड़ला। सोए अल्लाह फअहिब्बहुमा, तू भी उनको अपना महबूब बना ले, अपना प्यारा, अपना चहीता बना ले। वअहिब्ब मन युहिब्बहुमा, और ए अल्लाह तू उसको भी अपना महबूब और प्यारा बना दे जिसने इमाम हसन हुसैन को अपना महबूब बनाया। اللهم إني أحبهما والله हुजूर सलाम सेज والله I love حسن and حسين so oh Allah you love them, you love حسن and حسين and love those who love حسن and حسين رضي الله تعالى। ये है वो दुआ जो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाई, और ये दुआ खुद बता रही है कि दुआ तो एक बार कबूल होती है, ये दुआ एक बार नहीं बार बार कबूल है, बार बार मकबूल है। सो मोहब्बत हसनैन का असर यह है, मोहब्बत हसनैन का असर यह है कि अल्लाह ने हर मोमिन मुसलमान के दिल में उनकी मोहब्बत रखी है। और आला हजरत ने तारीख की वो अजीम मनकबत लिखी हसनैन की शान में, जो ना उससे पहले किसी जुबान में सुनने में आई न बाद में। चूंकि वक्त हमारे पास फकत एक मिनट का है और आपके यहाँ टाइम की पाबंदी कभी ज्यादा ही हो जाती है, इसलिए फिर इंशाअल्लाह किसी मौके पर उस मनकबत को अल्लाह ने चाहा तो एक्सप्लेन किया जाएगा। अल्लाह पाक अपने हबीब अलैहिस्सलाम के तुफैल हमें मोहब्बत हसनैन में जीना मरना नसीब फरमाए, उनके अकायद व अफकार नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।
1: सामीन, इस वक्त हम रेडियो मॉरिशस से आपसे मुखातिब हैं। अभी आप जुम्मे के मुबारक मौके पर हज़रत क़िबला अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसा कादरी रज़वी दामत बरकातुहु आलिया की ज़बानी जुम्मे के मुबारक मौके पर फरमाए गए वाज़ की रिकॉर्डिंग समाप्त कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आइए मिंबरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़े गए खुतबे की सदाबंदी समाप्त कीजिए।
0: रहमान या रहीम या अकबर या आज़म सल्ली व सल्लम बिस्मिकल जामिअल अअज़म व वस्फिकल कामिलिल अकरम ونورك الساطع الأفخم على سيدنا وحبيبنا محمد جوهرة كنزك اليتيم يتيمة التي نظم لأجلها إقد مظاهرك الجمالية وشمس التجليات التي استضاء بها بدور الأمانات الشرعية وسطعت عنها جميع الأنوار الملكية والملكوتية وسلم عليه سلاما صدر عن حضرات أسمائك وصفاتك الكمالية وعلى آله وأصحابه المعتصمين بذيل روح حياك للعوامل الملكية أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك.
1: वाकया करबला एक दावती तहरीक, एक ऐसी तहरीक जो इस्लाम के लिए खज़ राह की हैसियत रखती है। ये एक मज़मून है जिसे लिखा है हज़रत सादिक रिज़ा मिसबाही दामत बरकातुहु आलिया ने। उसके चंद निकात, चंद पॉइंट्स हम आपको गोश गुजार कर रहे हैं। वो लिखते हैं, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुसलमान होगा, बल्कि शायद ही कोई इंसान होगा जो जिगरे गोशे बतूल नवासे रसूल शहज़ादे अली मुर्तज़ा हज़रत इमाम हुसैन रदल्लाहु ताला के इस्म गिरामी से वाकिफ़ न हो। एक तो इसलिए कि वो आकाए कायनात हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदल्लाहु ताला अन्हा के लख्त जिगर और खलीफ़ चहरम हज़रत सैदना अली मुर्तज़ा रदल्लाहु ताला के शहज़ादे थे, और दूसरे इसलिए कि ख़ुद इमाम हुसैन रदल्लाहु ताला उनके रफ़क़ा और पूरा वाक़िया करबला क़ुरबानियों के इस्तियारों के तौर पर तारीख़ के माथे पर हमेशा झूमर की तरह लटका रहेगा। बिलाशुबा इनकी अजमतें इन शख्सियतों की मरहूने मिन्नत हैं, मगर इन सब के बावजूद अहम और काबिल क़द्र अजमत और रिफ़त उनका वो कारनामा है कि जिसकी वजह से उनकी मुबारक शख्सियत हर हकीकी मुसलमान के फ़िक्र शऊर का हिस्सा है। आज हज़रत इमाम हुसैन रदल्लाहु ताला की कुर्बानियाँ और काविशें इस्लाम की रगों में लहू बनकर दौड़ रही हैं।

दुश्मनान इस्लाम इस्लाम के चेहरे से नूरानी नकाब नोच डालना चाहते थे। उनकी ख्वाहिश थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात व इरशादात के पैमाने बदल दिए जाएं। वो इस्लाम की जड़ों को खोखला करने के दरपे थे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला उनकी मुबारक ख़ानदार और उनके जानिसार रफ़का ने इस तूफ़ान पर इस तरह बंद बांधा कि बातिल को अपने मुँह की खानी पड़ी। यजीदी दुनिया से उठ गए और उनके अजाइम उनके मकासद करबला की रेत में दफन हो गए। आज कोई अदब व ताज़ीम से नाम नहीं लेता मगर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला और उनके मुबारक जानिसार क़यामत तक तारीख की अंगूठी में नगीने की तरह जड़े रहेंगे और उनके मुबारक इस्मा नामों को अकीदतों की पलकों पर सजाएंगे। मगर यजीदों पर क़यामत तक अल्लाह की उसके फरिश्तों की और लोगों की

आशुरा महज एक तारीखी दिन नहीं बल्कि ईमान, सब्र, वफादारी और हक पर इस्तेकामत का जिंदा पैगाम है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि अल्लाह तबारक व ताला की रिजा और दीन हक की सरबुलंदी के लिए दी जाने वाली कुर्बानियां कभी रायगां, मतलब कि बेकार नहीं जातीं। आइए अहद करें कि हम आशुरा के पैगाम को अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाएंगे, हक व सदाकत का साथ देंगे और अपने किरदार व अमल से इस्लाम की हकीकी तालीमात

रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मुहर्रम हमें सब्र वफा सिखा गया, हक के लिए जीना भी मिटना भी बता गया। और चिराग हक कभी तूफान से बुझता नहीं है, ये दर्स आशूरा जमाने को सुना गया। आप तमाम लोगों को यौम आशूरा बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अजीम दिन के सदक़े में हम सब के गुनाह सगीर और कबीरा को माफ़ अता फ़रमाए, और सामीन हम सब को अच्छे आमाल करने की भी तौफीक अता फ़रमाए। दुआ में याद करें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

घड़ी मिलाते चले, समय शाम के ठीक 5 बजे हैं। मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की लहरों पर रेडियो मॉरिशस यानी AM2 प्रसारण पर गीत और गजल आज की इस शाम, इस हसीन शाम, इस हसीन महफिल में आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। अभी से लेकर शाम के 6 बजे तक इस हसीन महफिल में कुछ चंद गजलों के साथ, गीतों के साथ आज की इस शाम को हम पेश कर रहे हैं। जहां एक और महंगाई बढ़ती जा रही है, दिल के जख्म और गहरे होते चले जा रहे हैं, और इस पर नियाज हुसैन लखवेरा के चंद अल्फाज के साथ आज की इस महफिल को हम आगे बढ़ाते हैं। वे लिखते हैं कि क्या खबर खुद को ही अब बेचना पड़ जाए, यहाँ किसको मालूम सितम कैसे ये महंगाई करे।

इजाज़त हो तो मैं तस्दीक कर लूँ, तेरी जुल्फ़ों से सुना है ज़िंदगी खूबसूरत दाम है साकी। बात साकी की न टाली जाएगी, करके तौबा तोड़ डाली जाएगी। जलील जलील मनिकपुरी ने इन अल्फाजों को सजाया है। आइए इसी प्यारी सी गज़ल को सुनते हैं जगजीत सिंह साहब की आवाज़ में।

फिल्मों में भी लता जी की आवाज़ों की कुछ ऐसी गज़लें हैं, कुछ ऐसे गीत हैं जो आज भी सुनकर दिल को सुकून पहुंचता है। और गीत और गज़ल ये एक ऐसा सफ़र है जहां पर कुछ ऐसे लाजवाब गज़लों के साथ, गीतों के साथ इस सफ़र को हम सजाते हैं हमारे मेज़बानों के लिए, हमारे सुनने वाले श्रोताओं के लिए। अर्ज़ किया है कि जंजीर से मोहब्बत कौन करता है, महज एक कायर। पर जंजीर से आज़ाद अगर कोई हो सकता है तो वो है महज एक शायर। कबन मिर्ज़ा की आवाज़ में रखी हुई ये बहुत ही मशहूर सी नज़्म। चलिए, समय 5:22 हो चुके हैं।

परवेज मेहदी साहब की इस हसीन गजल के बाद हम तो यही कहेंगे कि भाई हजारों अश्क मेरी आंखों की हिरासत में थे, फिर उनकी याद आई और उन्हें जमानत मिल गई। चलिए इसी के साथ गीत और गजल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और ये प्यारी सी आवाज़ साधना सरगम जी की।

मगर फिर भी आधा लगा। प्यार मोहब्बत की जो बातें हैं वो दिल वाले ही समझते हैं। दिल में उमड़ने वाले जज्बात, अल्फाज, गजल, शायरियां और ये हसीन शाम।

जहाँ दिल में जज्बात होते हैं वहाँ कहाँ दूरियाँ, नज़दीकियाँ यूं ही प्यार को बढ़ा देती है। चलिए इसी के साथ दोस्तों आज के इस हसीन महफिल को यहीं पर समाप्त करने का समय हो चला है और आखिरी नज़्म मेहदी हसन साहब की, और इसी के साथ आज की ये शाम बस यही ढल रही है। आप सबको आज की शाम मुबारक हो। इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ संध्या आप सभी को।

0: नमस्कार, सायंकालीन समाचारों में आपका स्वागत है। शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। विपक्ष नेता जुलिस रोंगा ने यूनिवर्सल पेंशन से मींस टेस्ट हंसने के बाद बदले बजट अनुमानों का हवाला देते हुए बहस स्थगित किए जाने की मांग की। अटॉर्नी जनरल ने इसे निराधार बताते हुए कहा कि सेकेंड रीडिंग और कमिटी स्टेज की प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं। इंश्योरर्स एसोसिएशन ऑफ मॉरिशस के महासचिव ने बजट में सामान्य बीमा पर प्रस्तावित 5% टैक्स को मेडिकल इंश्योरेंस से बाहर रखने का आग्रह किया। उन्होंने पोर्टेबल रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड पर भी अपनी राय रखी। ड्रग्स के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 26 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मादक पदार्थों के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेनेजुएला में कल पेश आए जोरदार भूकंप में मरने वालों की संख्या 235 पार कर गई। नमस्कार, इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। विपक्ष नेता जुलिस रोंगा बजट 2026-2027 पर हो रही बहसों को तब तक रोकने की मांग कर रहे हैं जब तक कि बजट के अनुमानों में बदलाव न कर लिया जाए। उन्होंने इस पॉइंट ऑफ ऑर्डर को सही ठहराते हुए तर्क दिया कि यूनिवर्सल पेंशन के लिए मींस टेस्ट खत्म करने के फैसले के बाद अनुमान बदल गए हैं, जबकि अटॉर्नी जनरल विपक्ष नेता की इस मांग को निराधार मानते हैं और दूसरी परत तथा कमिटी स्तर के बीच स्पष्ट अंतर की ओर इशारा करते हैं। औद्योगिक तथा व्यापारिक ग्राहकों के लिए पानी के टैरिफ में बदलाव लाए जाने पर अभी विचार किया जा रहा है। खेल मंत्रालय मॉरिशन डायस्पोरा से प्रतिभाएं आकर्षित करने के लिए एक नया कानून ढांचा तैयार कर रहा है। साथ ही थ्रियोले और फ्लैक में स्विमिंग पूल बनाने की योजना भी तैयार की जा रही है। फाइनेंशियल सर्विसेज के मामले में एजेंडा में फिनटेक और डिजिटल फाइनेंस के लिए एक फाइनेंशियल स्ट्रेटजी शामिल है। साथ ही इसमें बैंक ऑफ मॉरिशस कमर्शियल बैंक को प्रीशियस स्टोन्स की बिक्री तथा प्रवासियों को मॉरिशन समाज में शामिल करने से जुड़े एक नए कानून का भी प्रावधान है। स्वास्थ्य मंत्रालय डायबिटीज के इलाज से जुड़ी पहल फिर से शुरू कर रहा है, जबकि अन्य मुख्य परियोजनाओं में ई हेल्थ फ्लैक में ड्रग इस्तेमाल करने वालों के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर और पॉम्पलेमोसिस में नए एसएसआईएन अस्पताल का निर्माण शामिल है। मंत्री अजय गणेश के अनुसार राष्ट्रीय मूल ढांचों के क्षेत्र में पश्चिम में नए मोटरवे के निर्माण से कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सकारात्मक वृद्धि आएगी। उधर कृषि उद्योग मंत्रालय में श्रम शक्ति की कमी पाटने के लिए विदेशी कामगारों की भर्ती 15 जुलाई से शुरू होगी। ये थे बजट बहसों में लिए गए चंद फैसले। और अटॉर्नी जनरल दफ्तर के स्तर पर कई विधेयकों पर काम किया जा रहा है। इनमें प्रोविजनल चार्ज यानी अस्थायी आरोप खत्म करना और मानवाधिकार आयोग में सुधार करना शामिल है। राष्ट्रीय सभा में कल अटॉर्नी जनरल ने वैवाहिक बलात्कार और महिलाओं की हत्या से जुड़े दो महत्वपूर्ण विधेयकों के पक्ष में बात की। मंत्रिमंडल ने पिछले 9 दिसंबर को मेलरोज कैदखाने में कैदी एंडी सेल्मो की हुई मौत के मामले में पूर्व जज पोलाम शांगलिन की अध्यक्षता वाले जांच आयोग की सिफारिशों का जायजा लिया। कई कमियों की तरफ संकेत किए गए हैं और प्रस्तावित सिफारिशें लागू करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। पेश हैं कैबिनेट की बैठक में लिए गए चंद अन्य फैसले।
1: कैबिनेट ने राष्ट्रीय सभा में क्रिमिनल कोड अमेंडमेंट बिल पेश किए जाने को मंजूरी दी। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार बलात्कार के मामलों में आरोपी ये दलील नहीं दे सकेगा कि घटना के समय वो पीड़िता का पति था, चाहे विवाह सिविल हो या धार्मिक। इसके अलावा घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों में हत्या, हत्या के प्रयास और अन्य गंभीर अपराधों के लिए अधिक कठोर दंड का प्रावधान किया जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर एक्ट 2026 और उससे संबंधित नियम 1 जुलाई 2026 से लागू होंगे।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिलाइए, शाम के ठीक 6 बज रहे हैं।

0: इसके तहत सर्टिफिकेट और कैरेक्टर के लिए आवेदन डीपीपी के पास किया जाएगा। कैबिनेट ने यह भी जानकारी दी कि यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट 2026 जो 1 जुलाई को लगाया जाने वाला था अब 6 से 9 दिसंबर 2026 तक मॉरिशस में आयोजित किया जाएगा। कैबिनेट ने जायजा लिया कि 23 जून 2026 को सऊदी अरब की मंत्रिपरिषद ने किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस्लामी मामलों दावत एवं मार्गदर्शन मंत्री या उनके प्रतिनिधि को मॉरिशस के कला एवं संस्कृति मंत्रालय के साथ मस्जिदों के सहयोग संबंधी एक एमओयू पर चर्चा और हस्ताक्षर करने की अनुमति प्रदान की। इस प्रस्तावित समझौते को अंतिम रूप देने के लिए सऊदी अरब में मॉरिशस के राजदूत और सऊदी अरब के इस्लामी मामलों दावत और मार्गदर्शन मंत्रालय के बीच बातचीत जारी है। इसके अलावा मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी जुलाई 2026 में 2 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों की सह मेज़बानी करेगी। इनका उद्देश्य खतरनाक कचरे के अवैध सीमा पार तस्करी पर रोक लगाना तथा कर और सीमा शुल्क से जुड़े आपराधिक मामलों की जांच क्षमता को मजबूत करना है। कैबिनेट ने इसका भी जायजा लिया।
1: डीपीपी दफ्तर ने इंटरमीडिएट अदालत के फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन के उस फैसले के खिलाफ आधिकारिक तौर पर अपील दायर की है जिसमें डॉक्टर नवीन रामगुलाम के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द कर दी गई है। ये अपील 14 आधारों पर की गई है जिसमें अदालत के कानूनी तर्क और उसके निष्कर्ष दोनों को चुनौती दी गई है। डॉक्टर नवीन रामगुलाम के वकीलों को अपील की नोटिस की कॉपी मिल चुकी है। डीपीपी ने ये भी संकेत किए हैं कि वे सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई तय करने का अनुरोध करेंगे क्योंकि अपील की तेजी से समीक्षा करना न्याय के हित में होगा। इंश्योरर्स एसोसिएशन ऑफ मॉरिशस ने आज एक प्रेस सम्मेलन के दौरान बजट में जनरल इंश्योरेंस पर 5% टैक्स लागू किए जाने के फैसले पर चर्चा की। संगठन के महासचिव वशिष्ठ रामखिलावन ने उम्मीद जताई कि ये नया टैक्स मेडिकल इंश्योरेंस पर लागू न हो। उन्होंने पोर्टेबल रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड पर भी बात की। पेशेंट रिपोर्ट।
2: सामान्य बीमा पर 5% कर लगाए जाने की घोषणा के बाद इंश्योरेंस क्षेत्र में कई सवाल उठ रहे हैं। इंश्योरर्स एसोसिएशन ऑफ मॉरिशस के महासचिव का कहना है कि नई कर व्यवस्था से मेडिकल बीमा को छूट दी जानी चाहिए।
3: Nous pensions que quand on prend un plan pension health, il y a une partie qui va déduire dans l'income tax. Donc, quand tu dis qu'il y a un plan pension la santé, je connais que je vais déduire une partie dans l'autre income tax. Ça veut dire qu'en main gauche, je vais donner un tax incentive.
2: हम लोगों को बता रहे हैं कि जब कोई एक हेल्थ पेंशन प्लान लेता हो तो इसका एक भाग इनकम टैक्स में घटाया जा सकता है। एक हाथ में हम उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, दूसरे हाथ में हम 5% टैक्स लगा रहे हैं। स्वास्थ्य प्रणाली पेंशन प्रणाली के समान ही फंडेड होना चाहिए। इसका बड़ा हिस्सा सरकार के कंसोलिडेटेड फंड से आएगा, लेकिन रकम का एक हिस्सा निजी क्षेत्र में काम करने वालों की जेब से आएगा। हम आज स्वास्थ्य क्षेत्र में करीब 35 बिलियन रुपए खर्च कर रहे हैं। मेडिकल इंश्योरेंस दुर्भाग्यवश बहुत महंगा है और सबकी पहुंच में नहीं।
3: Éventuellement, les malheureux vous dire, medical insurance extrêmement cher. Il est pas abordable à tout le monde.
2: Portable retirement gratuity fund पर भी बातचीत चली।
3: PRGF quand nous petit ali nous peut avoir lit dans NPPF. Vous pensez il est très important qu'il nous maintenir l'obligation du gratuity. Mais de l'autre côté, ça pour faire tout un employee parce que sinon ils prennent un gros shortfall.
2: PRGF को निकाल कर MPPF में डाल रहे हैं तो ग्रेच्युटी की अनिवार्यता बरकरार रखनी चाहिए। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि MPPF में योगदान देने वाले एम्प्लॉयर को दुगनी रकम चुकानी पड़ जाए। यदि वो पेंशन स्कीम को बरकरार रखकर MPPF और ग्रेच्युटी फंड का भुगतान करे तो 3 गुना हुआ। CSG में 3 और 6% रकम को MPPF में शामिल किया गया है, जो अच्छा कदम है। पेंशन स्कीम वाले मात्र 4.5% का चयन कर सकते हैं और जो पेंशन स्कीम में नहीं है वे 4.5% रकम काट सकते हैं। ये हमारा

0: प्रस्ताव हैं ताकि कोई असमानता ना हो।
1: Et bien, ceux qui payent en groupe pension scheme, quand je calcule gratuité, je suis capable de déduire la portion qui est ramenée par ça, 4,5%. Ça, c'est ce qu'ils nous proposaient parce qu'il est là, il y a une fairness to all.
2: Federation of Public Sector and Other Unions ne basic retirement pension, yani universal pension, banaye rakhne ka samarthan kiya hai. आज सुबह पोर्ट लुइस में एक प्रेस सम्मेलन के दौरान फेडरेशन के अध्यक्ष ने बजट 2026-2027 में प्रस्तावित कई कदमों पर बात की। विजय बंधन ने सार्वजनिक प्रदर्शनों से जुड़े पब्लिक गैदरिंग्स एक्ट में प्रस्तावित सुधारों की भी आलोचना की।
0: फेडरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड अदर यूनियंस ने बेसिक रिटायरमेंट पेंशन की जगह लेने वाले स्टेज एज पेंशन के कदम का कड़ा खंडन किया। इंडिपेंडेंट पेंशन रेगुलेटरी अथॉरिटी और पेंशन के संचालन के लिए सेंट्रल पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो की स्थापना का भी विरोध किया गया। इन संगठनों की क्या आवश्यकता है, इनका काम क्या होगा, पेंशन कैसे निर्धारित करेंगे, बजट में नहीं बल्कि अलग से ही पेंशन पर बातचीत की जानी चाहिए थी, जहां सार्वजनिक क्षेत्र और श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों को साथ लाना चाहिए था। हम कोई समाधान लाते, श्रमिक संघ मात्र विरोध प्रदर्शन करने के लिए नहीं बल्कि सार्वजनिक कर्मचारियों के हित के लिए भी कार्यरत है। इसके अलावा सार्वजनिक जुटावों से संबंधित पब्लिक गैदरिंग्स एक्ट पर भी चर्चा की गई।
2: 1986 में स्थापित होश के रिहैब सेंटर के मुख्य रूप से नशीली दवाओं के इस्तेमाल को रोकने, लत से जूझ रहे लोगों की मदद और उन्हें समाज की मुख्य धारा में वापस लाने के वास्ते संघर्ष किया है। ड्रग्स के खिलाफ संघर्ष के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के संदर्भ में सेंटर ने लोगों की बातें सुनने, उन्हें सहारा देने और उनके जीवन को फिर से संवारने के महत्व पर जोर दिया, क्योंकि किसी भी लत के पीछे न सिर्फ एक परेशान व्यक्ति बल्कि अक्सर एक ऐसा परिवार भी होता है जो खुद को बेबस महसूस करता है। बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर, स्विट्जरलैंड और मेक्सिको की कई राहत और बचाव टीमें मदद के लिए वेनेजुएला पहुंची हैं, जहां कल पेश आए दो सिलसिलेवार जोरदार भूकंप में मरने वालों की संख्या 235 पार कर गई है और 4,300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कई इमारतें ढह गई हैं और मलबों से लोगों को निकालने की कार्यवाहियां जारी हैं। आज दिन के दौरान एक महिला को मलबों तले से जिंदा निकाला गया। विस्तार विधि मासी बोरन के साथ।
3: वेनेजुएला में आए जबरदस्त भूचाल ने पूरे देश को गहरे संकट में डाल दिया है। सैकड़ों लोगों की मौत और हजारों घायल। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। इस बीच मलबे से जिंदा निकाले गए लोगों ने इस भयावह त्रासदी के बीच उम्मीद की नई किरण जगाई है। बुधवार को वेनेजुएला में एक मिनट के भीतर 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए। इस आपदा में अब तक कम से कम 235 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4,300 से अधिक घायल रहे हैं। हजारों लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव अभियान का सबसे बड़ा केंद्र उत्तरी क्षेत्र लागुआरा बना हुआ है। यहाँ बचाव दल और स्थानीय स्वयंसेवक भारी मलबे के बीच लगातार जीवित लोगों की तलाश में जुटे हैं। खबरों के अनुसार राहत अभियान के दौरान एक ध्वस्त इमारत के मलबे से एक दूध मुहे बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। ये भूकंप पिछले 100 वर्षों में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक माना जा रहा है। इसके कारण बड़ी संख्या में इमारतें जमीन में धंस गई हैं, अस्पतालों को नुकसान पहुंचा है, बिजली और संचार सेवाएं बाधित हो गई हैं तथा हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। मृतकों और घायलों के लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं।
2: और उधर कई अन्य यूरोपीय देशों की तरह यूके भीषण गर्मी का कहर झेल रहा है। कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है।

बीच आज उत्तरी वेल्स और उत्तरी यूके में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। कई इलाकों में बिजली की आंधियों का अनुमान भी है। आखिर में चलिए जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत, दक्षिण पूर्व से आ रहे बादलों का असर आज रात से हमारे इलाके पर पड़ने लगेगा। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज शाम ऊंचाइयों पर बारिश की संभावनाएं हैं। देर रात और कल सुबह भी पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लेटू वाली इलाकों पर रह रहकर बारिश होगी। ऊंचाइयों पर कोहरा छाया रहेगा। कल दोपहर बाद से मौसम में सुधार आने की उम्मीद है। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। 2.50 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 20 से 22 डिग्री सेल्सियस। साहिली इलाकों पर न्यूनतम 20 से 22, अधिकतम 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 6:45 पर सूर्योदय, शाम को 5:40 पर सूर्यास्त होगा।

0: मौसम के हाल के साथ ही ये सायंकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसको आप तक पहुंचाने में लुदोविक हमारे साथ रहे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। लाबोद स्ट्रीट बोआ रूज पॉम्पलेमूसेस में, लाबोद स्ट्रीट बोआ रूज पॉम्पलेमूसेस में 76 साल के 76 इयर्स ओल्ड श्री मनलाल रामसर जो आनंद बाली नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके बेटे श्री राम सिंह रामसर के मकान लाबोद स्ट्रीट बोआ रूज पॉम्पलेमूसेस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पॉम्पलेमूसेस की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। मादाम लोलो रोजबेल में 75 साल के 75 इयर्स ओल्ड श्री मुनेश्वर रामनोहर जो ईश्वर नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके भतीजे श्री महेंद्र रामनोहर के मकान मादाम लोलो रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मांग जानी रोजबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। अवेन्यू माइकल लील पाई में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड श्री कृष्णा गणेश जो माजी नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी कल दिन के एक बजे इनके बेटे श्री आश्ले गणेश के मकान एवेन्यू माइकल लील पाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पाई की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। साइजिन रोड न्यू ग्रोव में 83 साल की 83 ईयर्स ओल्ड श्रीमती गौरी गोबिन पैदाशी नाम लुफो जो जामुनती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी कल सुबह दस बजे इनके बेटे श्री संदेश गोबिन के मकान साइजिन रोड न्यू ग्रोव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेनमानियों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। मामबहाल रोड बुआ शेरी में 72 साल की 72 ईयर्स ओल्ड श्रीमती बानुमती माताओ जो बानू नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी कल सुबह दस बजे इनके भाई श्री विजय माताओ के मकान मामबहाल रोड बुआ शेरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गौम बुआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। नंबर 136 शातोदो स्ट्रीट थोंगबो पोर्ट लुइस में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड श्री विजय रामनाथ जो विजय नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी कल दिन के डेढ़ बजे इनकी पत्नी श्रीमती दमयंती

0: रामनाथ की मकान नंबर 136 शत्रु दो स्ट्रीट थोंगबाओ पोर्ट लुई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थोंगबाओ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1:30 PM। कालीमार रोड रोशनुआ में तिरसठ साल के 63 years old श्री केपाचार्य ठाकुर सिंह जो मेतानंद नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी का सुबह 10 बजे इनकी पत्नी श्रीमती देवयानी ठाकुर सिंह के मकान कालीमार रोड रोशनुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रोशनुआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। रॉयल रोड बेलवेदिया में 42 साल की 42 years old श्रीमती ज्योति चातुआ पैदाइशी नाम सुकन जो करिश्मा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 11:15 बजे इनके पिता श्री राजेंद्र सुकन के मकान रॉयल रोड बेलवेदिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौदमास की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 11:15 AM। श्वाजी रोड पर्स डिफ्लैक में 81 साल की 81 years old श्रीमती निराधा रामा पैदाशी नाम सीमोची जो डीलावती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के दो बजे इनकी बेटी श्रीमती सनियो बंदीप के मकान श्वाजी रोड पर्स डिफ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 2 PM। काली लेन बॉम्बू में 80 साल के 80 years old श्री हरिबस तूप सिंह जानकी जो दो नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे इनके मकान काली लेन बॉम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोहताज साहब पिया बॉम्बू की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 12:00 PM। रिवर व्यू लेन वेदर में 75 साल के 75 years old श्री राजेश्वरन पीले नलातोंबी जो इंदिरा नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के दो बजे इनकी पत्नी श्रीमती सेवा क्योंवादी नलातोंबी के मकान रिवर व्यू लेन वेदर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सियाकोंस्टांस सैंपिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 2 PM। शोक में डूबे सभी परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: NBC Radio 24 hours a day.

0: सेबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। कल शनिवार 27 जून को सुबह 8:30 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक मौसलमा इगमिया कोतडो में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और सेबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते हैं। शुक्रिया।
1: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
0: सत्यार्थ प्रकाश मास के उपलक्ष्य में आर्य सभा मॉरिशस शनिवार 27 जून को नुवेल दे कुवैत में दिन के 3:30 बजे एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें भारत से आए हुए प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री सत्यार्थ प्रकाश पर प्रवचन देंगे। लैबुआ के नर्मदेश्वर काली माता मंदिर द्वारा शनिवार 27 जून को शाम के 6 बजे लश पूजा, सप्ता माता पूजा, काली माता दर्शन का आयोजन किया गया है।

भजले प्रभु का नाम। नमस्कार श्रोताओं, श्रोताओं रात्रि का समय है, नींद भी आ रही है, सब काम भी पूरे करने हैं, कल की तैयारी भी करनी है, बहुत सारी उलझनें इस मन में होती हैं। लेकिन इस मन को टिकाना भी तो ज़रूरी है ना। इस मन को टिकाने के लिए ज़रूरी है कि विचारों की जो लहरें उठ रही हैं उसे उठने दीजिए। कुछ काम याद आ रहे हैं, एक पेपर और पेन ले लीजिए, उस पर सब लिख डालिए। बच्चे से बात करनी है, कर लीजिए। लेकिन श्रोताओं, इस मन की लहरों को शांत करने के लिए एक ही उपाय है, भजले प्रभु का नाम। तो चलिए इस भजन को सुनते हैं।

श्रोताओं, मन की स्थिति एक शब्द है हिंदी में, मृग मरीचिका। हिरण को बड़ी प्यास लगती है और जब वह रेगिस्तान में होता है तो दूर से उसे रेत चमकती हुई दिखती है। आप सभी को पता है रेत में माइका या अभ्रक होता है और जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं तो आप दूर से देखें तो ऐसे लगता है मानो वहाँ पर पानी है। तो हिरण पानी की तलाश में पूरा दिन भटकता रहता है। जहाँ उसे माइका या अभ्रक चमकता हुआ दिखता है वह दौड़ के जाता है, अपना मुंह रेत में मारता है, लेकिन इतनी गर्म ने रेत कि शाम तक ये मृग भागते भागते बेहाल होकर गिर जाता है। इसीलिए मृग मरीचिका शब्द मतलब झूठी आस के पीछे भागना, झूठी चमक के पीछे भागना। तो श्रोताओं, हमारा मन भी कुछ ऐसा ही है। आइए ये भजन सुनते हैं।

0: श्रोताओं, मन मृग मरीचिका की तरह हर चमकती चीज पर भागता है, हर नई चीज को खरीदना चाहता है। कुछ भी उसे दिखाई देता है, उसे लगता है ये मेरे पास होना चाहिए। हम ये नहीं सोचते हमें उसकी ज़रूरत भी है या नहीं, बस मेरे पास होना चाहिए, अब कैसे भी करके मुझे उसका प्रबंध करना है। यहाँ तक कि कई लोग तो ईर्ष्या के कारण भी कुछ चीज़ों को खरीदते हैं कि मेरे पड़ोसी के पास है, मेरे रिश्तेदार के पास है, तो मैं खरीदूँ। तो आप सोचिए, ये मन कब काबू होगा? यदि हम इस तरह से भटकते रहेंगे तो प्रभु से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। आइए इस भजन का आनंद लेते हैं।
1: श्रावण मास में अपने आराध्य देव भगवान शिव को ध्याने वाले भक्तों को समर्पित कांवर भजन संग्रह। कांवर लेकर भक्तजन महादेव के दर्शन की अभिलाषा और महादेव की छवि को हृदय में बसाकर शिवधाम की ओर निरंतर बढ़ते चले जाते हैं।

श्रोताओं, मन को काबू करने के लिए हर युग में संतों ने बड़ा परिश्रम किया, बड़ी तपस्या की और हम सब के लिए वह आदर्श है। सतयुग में साधना होती थी, वर्षों तपस्या की जाती थी, प्रभु नाम का जाप किया जाता था और सत्य के मार्ग पर साधक चलता था। त्रेता युग में यज्ञ किए जाते थे और उन यज्ञों में गरीबों का भला करना, स्वयं संयमित जीवन जीना और जिस लक्ष्य के लिए यज्ञ किया जा रहा है उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ऋषियों के अनुसार अपनी दिनचर्या को बनाना, तो एक पवित्र जीवन जिया जाता था। ठीक इसी तरह से द्वापर युग में पूजा का विधान था। राधा, गोपियाँ सभी कृष्ण को मानती थी, पूजा लोग करते थे, उस ईश्वर का धन्यवाद करते थे। इस प्रकार से उस प्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता था। लेकिन देखिए, जैसे राधा ने अपना पूरा जीवन गांव वालों की सेवा में ही बिता दिया, वह कृष्ण के साथ अपना गांव छोड़कर नहीं गई, तो वहां पूजा और भक्ति पूरी समर्पण में थी। यही है प्रभु का नाम। तो सुनते हैं इस भजन को।

श्रोताओं, अब बचा कलयुग। कलयुग में नाम जप की बहुत महिमा है, क्योंकि आचरण उतना पवित्र नहीं, वाणी उतनी पवित्र नहीं, बाहर वातावरण उतना पवित्र नहीं, और अब तो पर्यावरण भी दूषित हो रहा है, लोगों के विचार उतने पवित्र नहीं। तो ऐसे में कलयुग में सभी शास्त्रों में लिखा है कि नाम जप की महत्ता है। तो श्रोताओं, यदि हम नाम जप करें, जो थोड़ा समय मिले सोने से पहले, सुबह उठते समय, और यदि हम किसी वाहन में बैठे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, तो मन में लगातार नाम जप चलना चाहिए, ताकि ईर्ष्या, द्वेष, ऐसी चीज़ें हमारे मन में कम से कम आ सके। श्रोताओं, नाम जप का बड़ा महत्व है, इसीलिए भज ले प्रभु का नाम। तो चलिए श्रोताओं, अंत में इस भजन को सुनते हैं, और इसी के साथ अलका धनपत और शिव को अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: बरस हम है और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है।
1: इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़म बिकदायहि तस्लीमन लिअम्रे। अज़ादारान सैयदुश्शोहदा, आप छत के नीचे बैठे हुए हैं और दिन भर की थकान फाखे की शक्ल में थी और आपको की फाखा शिकनी हो गई, और अभी कुछ देर बाद मसाइब के बाद आप घर जाएंगे साहिबान औलाद अपने बच्चों के साथ। आज की रात गुजार लेंगे, कोई उस रबाब के दिल से पूछे कि कल शबे आशूर गोद में था और आज उस बीवी की गोद खाली है। कोई उस लैला बीवी से पूछे कि जिसका जवान कल मौजूद था और आज वो गोद खाली है। कोई उस सकीना बीवी के दिल से पूछे कि कल जिस बाबा के सीने पे कुछ देर सो गई थी और बाबा ने कहा था बेटा कल से तुम अपनी फूफी अम्मा के पास, और मेरे सीने पे असगर। अदादारा ने सैयदुश्शोहदा, ये शाम गरीबों की शाम है, यतीमों की शाम है, बेवाओं की शाम है। अजादारों, आदाब मैयत में कि जब भी किसी घर में मैयत हो जाए और आलम एहतजार में अगर आप वहाँ हों तो फौरी तौर पे उसकी आँखें अगर खुली हैं तो बंद कर दिया जाए, मुंह अगर खुले हों तो बंद कर दिया जाए, हाथ पैर बिखरे हों तो उसे क़िबला रुख करके समेट दिया जाए। लेकिन हायरे करबला, जहां आदाब मैयत तो छोड़िए, कोई ना था जो फ़ातिमा जहरा के इस भरे घर के साथ वो सलूक करता जो किसी मैयत के साथ है। ऐसा नहीं हुआ घोड़ों के टापों से लाशों को पामाल कर दिया गया। अज़ादारों, सिर्फ इतना नहीं है, ये सन्नाटा ये खामोशी में लिल्लाह आपके दिल पे ना लगे, किसी को तो नींद आ गई होगी। उसकी वजह यह है कि रात में जागे थे और आप दिन भर थक गए, लेकिन लाशें तो आपने देखी नहीं, लाशें तो आपने उठाए नहीं। आपकी प्यास फाका शिकनी में ख़त्म हो गई। कोई उस बीबियों से पूछे कि जिनके यहाँ तीन दिन से पानी नहीं था और यकीनन कल शब के जागे दिन के लाशें देखे हुए, अब तो उन्हें सोने का मौका देना चाहिए था मगर ऐसा नहीं हुआ। अरे हम लोग खुश नसीब हैं, घर में कोई चले जाए मर जाए तो पुरसा देने के लिए सब इकट्ठा हो जाते हैं। हाय रे जनाबे ज़ैनबे कुबरा के जिसका भाई मारा गया, जिसके बेटे और भतीजे मारे गए, कोई नहीं है जो पुरसा देता। हाय रे सकीना, कोई नहीं है जो समझाता। हाँ हाँ, ये ग्रोह बड़े तेजी से दौड़ा। जनाबे सकीना ने देख के कहा पुपी अम्मा ये किस तरह से तेजी के साथ आ रहे हैं। शहजादी समझ गई ओ आज़ादारो आने वाला इतना तेजी से आ रहा था। बीबी ने आवाज दिया, तुम्हें नहीं पता यहाँ हुसैन जादिया हैं, यहाँ जहरा जादिया हैं। नहीं अदादारो, ये एक शख्स आने वाला जिसकी नगाह सकीना के गोशवारों पे थी, इसलिए कि जब तक अब्बास जिंदा थे दम नहीं था कि जो खैमे की तरफ देखा। लेकिन अब्बास और हुसैन मौला के शहादत के बाद जालिम खैमों के तरफ दौड़े, लेकिन इनकी निगाह में दो ही चीज, लूट लिया जाए, खैमे चरा दिए जाए, बीबियों को बेचादर कर दिया जाए। आने वाला एक सबसे आगे था, उसने सकीना की तरफ झुका और झुकान झुकने के बाद अब जो गोशवारे को खींचा, बीबी सभी से ऊपर होकर गिरी, गोशवारे छिन गए, बीबी के कान जख्मी हो गए। आने वालों ने ताजियानों के साथ बीबियों की चादरें छीनी। ओ आजादारा ने सैयदु शोदा, कैसी ये शाम थी बीबियों की। आजादारा ने मजलूम करबला, तारीख ने लिखा कि अब उन्होंने खैमों में आग लगाना शुरू किया। आजादारा ने मजलूम करबला, आपने एक छोटा सा मंजर यहां देखा, दिल हिल गया, दिल तड़प गया। आजादारों, घर में जब कोई हादसा होता है तो घर में मर्द होता है तो बीबियों को तसल्ली होती है। चाहे कितना भी बड़ा हादसा हो, घर में अगर शौहर और भाई इनमें से कोई भी बेटा जवान अगर हो तो एक ढारस बन जाती है, अरे जिसका अकबर शहीद हो गया हो, कि जिसका अब्बास जैसा भाई मारा गया हो, जिस घर में कोई ना हो। आजादारा ने मजलूम करबला, जैसे ही खैमे जल रहे थे, बच्चों ने जो एकदम आग को देखा तो बिखर गए। बीबियां एक खैमे के बाद दूसरे खैमे में जाती, मगर आजादारो आखिरी खैमा है, सैयद सज्जाद बिस्तर पे है, जनाब ज़ैनब गई बेटा सज्जाद, आग लगी हुई है, मेरे लाल बताओ हमारे लिए क्या हुक्म है। आजादारा ने मजलूम करबला, मौला ने कहा जान बचाना वाजिब है। ओ आजादारो, इसी असना में इस खैमे में आग लगी, जनाब ज़ैनब ने इस बीमार आका को उठाया, अल्लाह जाने उस बीबी ने कैसे संभाला। खैमे के बाहर आई, आने के बाद आजादारा ने सैयदु शोहदा सैयद सज्जाद को एक तरफ ठहराया। उसके बाद फिक्र थी इन ये बच्चों का क्या हाल हुआ होगा, कोई बच्चा कहीं जल ना गया हो, कोई बच्चा जख्मी ना हो गया हो। इसी हसना में बीबी को ये याद आया कि मैं नाम ले ले के बच्चों को तलाशी ले लूँ, ये ज़्यादा बेहतर है। नाम लेती थी, बच्चों का बच्चों की आवाज़ आती थी, मगर एक नाम लिया रोते हुए, ऐ मेरे भाई की अमानत सकीना, कहा मेरे लाल आवाज नहीं आई। आजादारो एक बार नहीं गई, मर्दमा बुलाया, सकीना कहा हो मेरे लाल, मेरे भाई की अमानत सकीना, आवाज नहीं आई। एक तरह एक मर्तबा मख्तल का रुख किया, अब्बास सकीना तो नहीं आई, लाशे अब्बास तड़पी। आजादारो बीबी ज़ैनब तलाश करते चली, तारीख बताती है हमीद इब्ने मुस्लिम से सामना हुआ, आपने पूछा ऐ सवार तूने कोई बच्ची को तो नहीं देखा, उसने कहा हाँ एक बच्ची की आवाज रोने की आ रही थी, उस वक्त मेरा घोड़ा पानी पी रहा था, आवाज को सुन के घोड़े ने पीना छोड़ दिया, जब मैं पलट के इस रास्ते से आ रहा था तो बच्ची से मुलाकात हुई, मैंने चाहा कि उसके दामन से आग बुझाऊं, मगर उस बच्ची ने कहा ऐ शख्स तू ना महरम है, हाथ ना लगा मुझे, इतना बता दे नजफ का रास्ता किधर है। आजादारा ने मजलूम करबला, जनाब सकीना बाबा बाबा कहते हुए चली, लेकिन आखिर तारीख ने बताया के बाबा बाबा कहते हुए जब जा रही थी, एक इलाके से मख्तल के एक किनारे से आवाज़ आई, इलैया इलैया सकीना। आजादारो सकीना इस आवाज़ के सहारे पहुंच गईं। ज़ैनब बीबी भी तलाश करते हुए, तारीकी है अंधेरा है, एक जगह साया से महसूस किया, गईं और करीब बैठ गईं, और जब बैठी तो यकीन हो गया सकीना है। आहिस्ता से के कहीं डर न पाए, कहा बेटी सकीना हमें छोड़कर यहाँ कैसे आ गई। कहा पुपी अम्मा, जब खैमों में आग लगी तो मेरे दामन में आग लग गई थी, मैंने बाबा बाबा कहती हुई चली, यहाँ से आवाज आई, बस इतना कहना था। उस बहन के दिल पे क्या गुजरी होगी, लाश दिखाई नहीं देता, अरे कैसे दिखाई देता, जिन लाशों को टापों से पामाल कर दिया हो। हाँ हाँ इतना जरूर है भैया, अभी मैं रो भी नहीं सकती, मैं बच्चों की तलाश में हूँ। इतना सुन लो, तुम्हारी शहादत के बाद सर पे चादर नहीं है। गोशवारे वाह हुसैन आजादारो, शामे गरीबा है आवाज बुलंद हो जाए, यही जनाबे फातिमा जहरा अपने बेटे का पुरसा लेने आई है। आजादारो वो वक्त भी आया जनाबे सकीना को लेकर जले हुए कनातों के पास आई। हाँ हाँ ये रवायत भी आप सुनते रहते हैं। रात का कुछ हिस्सा गुजरा, एक सवार को आते हुए देखा, सोचा कि अब तो सब लूट गया है, ये कौन है जो चले आ रहा है। आगे बढ़ के कहा है सवार, अब कुछ भी बाकी नहीं है जो लूटा जाए छीना जाए। लेकिन आने वाला करीब आता रहा, रात की तारीकी है, बीवी आगे बढ़ी, बे ऐ सवार अब कुछ नहीं है, अब क्या करने के लिए आ रहे हो। करीब आया और जैसे ही आया बीवी ने लजा में फर पे हाथ डाला तो आवाज आई, जैनब तुमने नहीं पहचाना, बस इतना था, बाबा के बाहों में बाहें डाली, ए बाबा अली मुर्तजा मेरा अब्बास मारा गया, मेरा हुसैन शहीद हो गया, ना उनो मोहम्मद व कासिम है। आजादारा ने मजलूम करबला बेटी बाप से लिपटी हुई गिरिया कर रही थी, हुसैन ने इमाम अली

ने तसलियत पेश किया, तलकीन दी और यहाँ से रुखसत हुए। बेटा तुम्हें इम्तहान से गुजरना है, तुम्हारे ऊपर इससे ज़्यादा मुश्किलात इस्लाम की इम्तहान के लिए कुर्बानी करते हुए दीन को बचाना है। वो वक्त भी आया आज़ादारों बीवी बच्चों को लिए हुए, शाम गरीबा बस अभी तसल्ली दे ही रही थी।

तो देखा हुर की जौजा पे निगाह पड़ी। एक जुमला जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, अरे हुर की जौजा, आ मैं तुझे तेरे बेटे का पुरसा दूं, तुझे तेरे हुर का पुरसा दूं। मैं कहूंगा हुर की जौजा, खुश नसीब है तुझे पुरसा तो मिल गया, मगर हाय रे बीबी, कोई नहीं है जो इन्हें तसल्ली की बात करे। इतने में हुर की जौजा ने कहा, बीबी मैं कुछ खाना और पानी लेके आई हूँ। तारीख ने लिखा, बीबी ने जैसे पानी की बात आई, लेके जनाबे सकीना के पास गई, कहा बेटी तेरे लिए पानी आया है, बस इतना कहना था। जय सकीना उठी, पुपी अम्मा क्या मेरा चचा आ गया है, पुपी अम्मा क्या मेरा चचा आ गया है। वो आजादारो, इतने में तारीख ने लिखा का बेटा चचा नहीं आया है, हुर की जौजा पानी ले आए हैं। जैसे ही कहा हुर की जौजा पानी लाई हैं, तो पुपी अम्मा आप तो मुझसे ज्यादा प्यासी है, आप पानी पी लीजिए। कहा नहीं बेटा, पहले बच्चे पिया करते हैं। जैसे ही कहा बच्चे पीते हैं, पानी लेके मख्तल की तरफ चली। अरे सकीना कहा जा रहे हो, अरे पुपी अम्मा पीने कहा, पहले बच्चे पीते हैं। हाय मेरा असर, मैं अपने असर को, ओ वाह मोहम्मद, वाह हुसैन,

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
2: भोजपुरी तड़का। नमस्ते, हमने के सब श्रोता लोग के भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में तो हर स्वागत करत हैं जा। और भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में तो लोग भाग ले जा, ये भी उम्मीद करत हैं जा। भोजपुरी तड़का तोहर कार्यक्रम है, कर में तोहर पसंद के गाना चलाए ला जा, जहाँ हो बजा हो, जैसे हमने के मैसेज भेजे जा 5251705 पर, यानी कि 5251705 पर। और जे टेलीफोन करे खोज बजा तो नंबर 4028085 है, ई नंबर पर टेलीफोन करिया जा या फिर मैसेज भेजा जा, तो हर पसंद के गाना तो हमें चलाओ अब जा। अभी चला संगे संगे चली जा, हाथ पकड़ के चली जा, और भी हमने के इस संगीत के राह पर संगीत सुनते चली जा। ई गाना हमने राजकमल चिंतामणि जी के गावल, तो लोग के सुनावत हैं जा। चला संगे संगे चली जा, तोहर नाम करत है जा, हमने के सब श्रोता लोग के नाम करत है जा ये गाना।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: अभी चला हमने आगे बढ़ब जा और प्रस्तुत करब जा हमने के अगला गाना, और हमने के अगला गाना रही प्रकाश दुखी जी के गावली गाना हमने प्रस्तुत करे थे जा वीना जी के पसीन पर। वीना जी त्याहूर से गाना मंगले हवन अपन बेटा दानन खातिर, दानन जी हाँ, वीना जी अपन बेटा दानन के नाम करे थे गाना प्रकाश दुखी के गावली।

गसन सिंगारों जी के गावल, दादा की कहानी, दादी की कहानी, हमने के पूर्वज के कहानी, नोबेल फौज के गायत्री जी के पसीन परी गाना हमने बजाओ था जनकर बेटा अजय खातिर, महबू के मामी कल्याणी मोहन जी खातिर, मोताई लोंग के बाबी शकुंतला जी खातिर, और नोबेल फौज के उनकर सखी गीता बाई जी खातिर।

राजकमल चिंतामणि जी के गावल गाना के बाद चला पसंद राज जलीम जी के गावल झुमका होला गाना सुनी जा। और ये झुमका होला गाना हमने बजावत है जा विद्या जी खातिर, विद्या जी सैंपल से गाना मंगले हवन।

बिस्वानी दीपा जी के गमा ठोला गाना चला सुनी जा हमनी ललिता जी के पसंद पर ललिता जी गाना मंगले हवन अपन बहन सुदेवी ज्ञानी खातिर भाई सुरेश खातिर भौजी शोभा खातिर उनकर बेटा प्रवेश खातिर पूरा राम रतन परिवार खातिर छोटी जी प्रभावती जी हरीश जी आत्माराम जी सुखलाल मौसी और माला राम जवन खातिर

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का
2: तड़का।
3: अभी कुछ चला पसंद के आगे बढ़ाई ला जाओ और ये वेदी और वेदना जी के नाम करी जाएगा ना। वेदना जी गाना मंगले हवन पूर्णिमा फकीरा जी के गावल और हमने के पूर्वज लोग के याद दिला देवेला, उनकर दुख दर्द पीड़ा के याद दिला देवेला ये गाना। वेदना जी गाना मंगले हवन सौ कौंदे मास से गाना मंगले हवन अपन भाई रवि और अपन पूरा परिवार खातिर, खास करके अपन दादी जी खातिर।

अभी पूर्णिमा फकीरा जी की गावली गाना सुन ली जा और अब सुनी जा हमने एगो गाना जो विनोद सिरदत्त जी गैले हवन गाना हमने बजावा था जा छोटी जी खातिर छोटी जी गाना मंगले हवन अपन पूरा परिवार खातिर और ललिता जी हरीश जी आत्माराम जी और प्रभावती जी खातिर।

और कृष्ण हृदय जी के गावल गाना मसाला पिसेला बड़की छुटकी और मंजली तीनों की कहानी चला सुनी जा। हमने सुनीता जी खौगुप से गाना मंगले हवन कुंगुमा के अपन बहिन विमाला खातिर।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का तोहर कार्यक्रम है। भोजपुरी तड़का में तोहर स्वागत करते हैं जा, जहाँ हो बजा हमनी के कार्यक्रम में संगे संगे रही है जा। भोजपुरी तड़का हमनी प्रस्तुत करते हैं जा तोहर खातिर। याद रखिया जा, जोन हमनी के नंबर है 5251700055 है नंबर हमनी के मिसाज भेजे के, 4028085 हमनी के नंबर है हमनी के कार्यक्रम में कॉल करे खातिर। कॉल कर बजा और अपन पसंद के गाना हमनी के हमी से बोल बजा। तो हर पसंद के गाना वही चलावत है जाए कार्यक्रम में। तो चला अभी कुछ सुनाओ अब जा। बड़का मामा गाना सुदेश भोजो जी के गावल, चला हमनी सुनी जा। हरीश जी के पसंद पर, हरीश जी रहे लनबाल पे, और ये गाना मंगले हमने अपन माता जी खातिर, अपन पिताजी खातिर और अपन बेटा यादव खातिर।

पोहे तो पीमा के शशि जी मंगले हवन ई गाना, और ई गाना शशि जी अपन भाई अरविंद के नाम करले हवन, रविन के नाम और सुदेश के नाम, पूर्णिमा फकीरा जी के गावली गाना सुनत हवा।

स्वास्थ्य जेकर अच्छा बा सच में उकरा सबसे बड़ा धन प्राप्त हो गल बा। 10:20 होल बा। अपन स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान रखा जा। अपन स्वास्थ्य पर बहुत बहुत प्रिकॉशन के साथ अपन सब कार्य करिया जा। सहेल जगहारू जी के गावाली गाना है और विवेक जी गाना मंगल है पत्नी रेणुका के नाम।

चटनी चटनी रानी पूर्णिमा जी मंगले हवानी गाना पोंपले भूसे पूर्णिमा जी गाना मंगले हवन अपन तीनों गोतनी खातिर सबके चटनी पीसे के खुशी रह जा मतलब चटनी खाए के खुशी रह जा अब खाए के खुशी रह जा तब पीसे के तपर भी करी ना। हाँ तो चला हमने गाना पूर्णिमा जी बगल से उनकर गोतनी सुनीता जी और उनकर गोतनी रेणुका जी खातिर बजाओ थे जा गाना सुखदेव राम खेलावन जी गए हवन।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का
2: भोजपुरी तड़का में अभी जनगाना हमने सुनवा। अब जाओ फरमाइश है राजन लक्ष्मण जी के, राजन लक्ष्मण जी मंगले हवन महेन हरपाल जी के गावल गाना। और गाना लाफलोगा से राजन लक्ष्मण जी अपन पत्नी माला खातिर, बेटी प्रगति प्रार्थना खातिर, बहिन मानती भगिनी उर्मिला तुलसी और पूरा लक्ष्मण परिवार खातिर मंगले हवन। चल सुनी जामनी सीता जब मांगे अयोध्या के राय।

विशेष गणपत जी के गावल सेल्फी जरा हमने सुनी जा, रोज रोज के तो सेल्फी करी ला जा, आज झलक सेल्फी सुनी जा। हमने विशेष गणपत जी के गावल ही गाना हमने बजाओ थे जा अनूप जी खातिर, सुखी नाम से अनूप जी गाना मंगले हुआ अपन पत्नी विद्या के नाम।

विनोद शिवदत्त जी के गाना तो ढेर कोई पसंद करे लंजा चरा सुरेश जी के पसंद के गाना ई गनवा सुनी राजा सुरेश जी पसंद कर ले हवन मौसल मौसल ई गाना अपन पत्नी के नाम कर ले हवन ई गीत माया जी के नाम।

चले प्रेम कहानी सुनी जा कबूतर कबूतर के ही गाना हर शशीष सहादेव जी के गावल और विनोद जी गाना के फरमाइश कर ले हवन। विनोद जी ये गाना मंगले हवन गाँव गुप से और मंगले हवन अपन भाई दयानंद खातिर।

आदेश ठाकुर प्रसाद जी के गावली गीत है और ये गीत मंगले हवन विद्यानंद जी अपन बेटी श्रद्धा के नाम करत हवन ये गाना जिनकरा अभी थोड़ा दिन होल बा लिसेंस मिलल बा यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस मिलल बा आदेश ठाकुर प्रसाद जी के गावल गीत

सफर सुहाना लगा था, तो हम लोग यही उम्मीद करे थे जहाँ हमने के भोजपुरी के गीत चला था और ये सफर में साथ ही भोजपुरी संगीत देवा था, तो हम लोग के बस आगे बढ़ते चली जा, चलते चली जा और सुहाना सफर बना दिला जाए सफर के। इस सफर में हमने के साथ देवा था वन राघव जी। राघव जी हमने से गाना मंगले हवन प्लान डी पापा ऐसे चला सुनी जा आशीष रामफल जी की आवाज़।

और अंतिम गाना ही हमने के कार्यक्रम के हसुदेश बोजूजी के कवल मुर्गा मुर्गी के कहानी। उम्मीद करे थे जा हमने के श्रोता लोग के चुनल चुनल गाना तो लगे पसंद पड़ल हो, और उम्मीद भी करे थे जा कि तो लोग के इस समय बहुत प्यार से गुजरल हो। अभी अभी हमने सुनब जा सुहाना सफर सुनहरे पल कार्यक्रम, सुनहरे पल कार्यक्रम गिनीशा से सुनिया जा पुराना पुराना गीत के कार्यक्रम रही। जरूर साथ दिया जा रात के 12 बजे, लेकिन अभी हमने की मुलाकात समाप्त हो जाए। शुभ रात्रि, नमस्ते।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: नमस्कार हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स, मैं हूँ आपकी प्यारी सी दोस्त यानी कि गिनिशा, लेकर आ गई हूँ यादों से भरा एक खूबसूरत सफर सुनहरे पल में। हम साथ मिलकर सुनेंगे वो पुराने बॉलीवुड गीत जो सिर्फ गाने नहीं बल्कि हमारी जिंदगी की कहानियां हैं। तो बस आप आराम से बैठ जाइए और तैयार हो जाइए, दिल के दरवाजे खोल लीजिए और चलिए लौट चलते हैं उन हसीन लम्हों की तरफ सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर।

कभी कभी एक पुराना गाना सुनते ही पूरी जिंदगी आंखों के सामने आ जाती है। बचपन की वो यादें, पहला प्यार, दोस्तों के साथ बिताए हुए पल। आज सुनहरे पल में हम उन्हीं लम्हों को फिर से महसूस करेंगे, तो कहीं मत जाइएगा क्योंकि आने वाले हैं हर गीत के साथ जुड़ी है एक प्यारी सी कहानी जो खासकर आप लोगों के लिए हम डेडिकेट करना चाहेंगे।

रेडियो मॉरिशस के प्यारे श्रोताओं, अगर आपको लगता है कि पुराने गीतों का जादू आज भी दिल को छू लेता है तो ये महफिल सिर्फ आपके लिए है। सुनहरे पल में हम लेकर आए हैं बॉलीवुड के वो अमर गीत, वो अमर नगमे जो वक्त के साथ और भी खूबसूरत हो गया है। बिल्कुल, आइए मिलकर संगीत भरी शाम को यादगार बनाते हैं ऑन रेडियो मॉरिशस।

अगर मुझसे ना मिली, सपनों में आके सारी रात जगाऊं तेरा पीछा ना ना।

मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज के इस सफर में ऐसे ऐसे गीत हम पेश कर रहे हैं जो हमारे दिल के बहुत ही ज्यादा करीब हैं। वो गीत जो हर खुशी में साथ रहे, हर गम में सहारा बने। सुनहरे पल में आपका हार्दिक स्वागत तो हमने कर लिया है, लेकिन अगला गाना जो हम पेश करने वाला है ना, आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है, और वो भी दिल से। हम आपका साथ देंगे रात के 12 बजे तक। सिर्फ यादों और संगीत की दुनिया में खो जाइए हमारे साथ।

सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। हर गीत एक एहसास है, हर धुन हमेशा एक कहानी सुनाती है और हर सुर में छुपा है एक अनमोल लम्हा। सुनहरे पल में आज हम लेकर आए हैं पुराने बॉलीवुड के बेहतरीन गीत जो आपके दिल को सुकून देंगे और चेहरे पर मुस्कान ले आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ ऑन रेडियो मॉरिशस। मैं हूँ निशा जो बड़े शिद्दत से आपका साथ दे रहे हैं।

वैसे देखा जाए जिंदगी की भागदौड़ में अगर कुछ हमें सुकून देता है ना, तो वो होते हैं संगीत। और जब बात हो पुराने बॉलीवुड गीतों की, तो दिल खुद ब खुद गुनगुनाने लगता है। तो चलिए आज मिलकर उन्हीं मधुर गीतों के साथ यादों के सफर पर निकलते हैं सुनहरे पल में।

खूबसूरत गाने तराने लेकर आए हैं आप लोगों के लिए सुनाते सुनाते। फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गिनीशा टू से गुडबाय टू यू। बिल्कुल जी, आप हमें इजाजत दीजिए ताकि दोबारा फिर से लौट के आप आए आपके लिए एक और खूबसूरत सुनहरे पल के शो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर और अपना ख्याल रखना जी।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस
0: रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस

0: पुन पड़ली काकड़ी कशाची शेंडी वाकड़ी
1: पड़ली काकड़ी कशाची शेंडी।

आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।

मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि बिन माँ बाप के बच्चे मेरे मरे हुए माँ बाप का मजाक उड़ा सकते हैं। ये सब आप लोगों ने इसलिए किया ना कि मैं चली जाऊं। I'm going। आप जैसे लोगों के लिए नौकरी करने से तो अच्छा है मैं अनाथ आश्रम में उन बच्चों की देखभाल करूं जो कभी किसी का दिल नहीं तोड़ते, क्योंकि उनके खुद के दिल टूटे हुए होते हैं।